मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56:43 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली

0: में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। संकटों के समय जब मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है, तब विश्वास और भक्ति ही उसे नई शक्ति प्रदान करती है। हनुमान जी ऐसे आराध्य हैं जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी अटूट भक्ति, सेवा भाव और पराक्रम हमें यह संदेश देता है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है।

श्री रामचरितमानस का प्रत्येक प्रसंग जीवन के किसी न किसी आदर्श से हमारा परिचय कराता है। जब अयोध्या के धर्मनिष्ठ त्याग मूर्ति भरत श्री हनुमान जी के निष्काम सेवा, अद्वितीय समर्पण और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति से अभिभूत होकर वे नम्रता पूर्वक कहते हैं कि भरत भाई कपि से उरिन हम नाहीं, ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि सच्ची सेवा, निस्वार्थ समर्पण और कृतज्ञता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। ये संदेश देता है कि जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीता है उसका ऋण शब्दों से नहीं चुकाया जा सकता।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। जीवन में जब हम केवल अपने सुख की नहीं बल्कि समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हैं, तभी हमारी प्रार्थना सच्चे अर्थों में ईश्वर तक पहुंचती है। संतों और भक्त कवियों ने हमेशा यही संदेश दिया है कि परोपकार, करुणा और सबके मंगल की भावना ही सच्ची भक्ति का आधार है। जो ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखता है और सबके सुख की कामना करता है, उसके जीवन में आशा का दीपक सदैव जलता रहता है।

भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा, धर्म और कर्म योग का अनुपम संदेश है। उन्होंने अपने आचरण और उपदेशों से ये सिखाया है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि मन में विश्वास और जीवन में सत्कर्म हो तो हर कठिनाई का समाधान संभव है। श्री कृष्ण केवल आराध्य नहीं बल्कि मानवता के पथ प्रदर्शक भी हैं।

0: इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। विचार बिंदु, आज सुनिए स्वामी कारपात्री जी के विचार।
1: यहाँ ये भाव बन जाता है कि हम सब अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा के पुत्र, इसलिए हम सबका समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृता स्वाभाविक। हमारा आपस का जो भाईचारा का भाव और स्वतंत्रता का भाव और के समानता का भाव, ये हमारे यहाँ मूल आधार है। तो मूल तो आदि अंत शून्य अनादि भेद है। हमारे यहाँ भेद अनादि है। भेदा अपौरुषेया संप्रदाय विच्छेदे सति असमर्जमान कर्तृकत्वात् जन्ना एवं तन्ना एवं यथा महाभारत आदि। वेद अपौरुषेय है, उनकी संप्रदाय परंपरा टूटी नहीं और उनका उत्पत्ति हुई नहीं। कहा जाता है वेद भगवान के निश्वास है। निश्वास जो होता है वो प्राणी के साथ है, रहता है। तो ईश्वर अगर अनाद्यनंत है तो उसका निश्वास भी अनाद्यनंत है, इसलिए वेद अनाद्यनंत है और ये ईश्वर के श्वास है। श्वास का अर्थ ये है, श्वास अकृत्रिम होता है, माने श्वास अपने आप होता है, उसका कोई कोई कोई उसका कर्ता नहीं होता। जब से प्राणी तब से उसके प्राण, जब से श्वास वाला तब से उसके श्वास। तो अगर श्वास वाला अनाद्यनंत परमात्मा है तो उसका श्वास भी अनाद्यनंत परमात्मा स्वरूप ही है। तो इस दृष्टि से वो वेद शास्त्र हमारे यहाँ का मूल मंत्र है और उसमें अनादि काल से स्रौत स्मार्त धर्म कर्म का प्रतिपादन है, कर्म कांड का, उपासना कांड का और आत्म साक्षात्कार का। तीन चीज माने क्या, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। अर्थात

0: कहीं आवश्यक है कि तभी सफलता होती है जब जैसे हमारे विचार हो वैसे हमारे आचार हो। आचार विचार सामंजस्य होता है, किसी के विचार बड़े ऊंचे हैं लेकिन आचार गंदे तो कोई फायदा नहीं। आचार किसी के बहुत अच्छे हैं लेकिन विचार कमजोर हैं तो काम नहीं चलता। इसलिए आचार और विचार का सामंजस्य होना चाहिए। तो भारत में आचार विचार का सामंजस्य, विचार हमारे अनाद्य अनंत वेद ही, और वेदों के आधार पर हमारे यहाँ कर्मकांड अनादि काल से चल रहा है। उस कर्मकांड में प्रत्येक प्राणी को अमृत का पुत्र जान करके उसके साथ उसी प्रकार के सद्भावना रखना, सद्भावना के साथ व्यवहार करना, ये हमारे यहाँ का विचार। तो हम विचार और आचार, और उसी के अनुसार हमारे यहाँ कर्मकांड होता है, अग्निहोत्र होता है, दर्श पूर्णमास होता है, ज्योतिष्टोम होता है, दोपहर में एक होता है क्या नाम है बलवैष्णदेव, बलवैष्णदेव जिसमें थोड़ा अन्न लेकर के हम सब कीटा पतंगा पशु बयांसी रक्षांसी यक्षासुर सिद्ध संगा, कीट है पतंग है कीड़े मकोड़े हैं इतने प्राणी हैं सब प्राणियों के को उसमें से दिया जाता है। और इतना ही नहीं ये होता है कि श्वानौ द्वौ श्यावश बलौ वैवश्वत कुलोद्भव ताभ्याम अन्नम प्रदक्षामि स्याताम एतौ अहिंसकौ। श्वान दो श्वान श्याव शबल दो श्वान यमराज के दो श्वान कुत्ता, उनको हम प्रतिदिन अन्न देते हैं जैसे देवताओं को बलि देते हैं अन्न देते हैं तैसे कुत्तों को भी। कीट पतंग आदि जितने प्राणी हैं सब प्राणियों को हम देते हैं। हमारे यहाँ का भाव ये है मनुष्य खाली अपने लिए नहीं पैदा हुआ, मनुष्य खाली अपने लिए नहीं पैदा हुआ किंतु मनुष्य का उपयोग देवताओं के हित में, इतरों के हित में और सभी प्राणियों के हित में, अंत में कीट पतंग आदि भूत प्रेत और श्वान सबके कल्याण के लिए मनुष्य प्राणी का जीवन है। इसलिए ऐसा जीवन अपना जान करके और उसमें हम सबका उपकार करें, सबका हित शासन करें, इसी से हमारा कल्याण होगा। ये भावना भारत में बद्ध मूल है और इसी भावना के आधार पर भारत का महत्व है।
1: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे श्री स्वामी करपात्री जी के विचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत

0: कृषिगत कार्यक्रम में किसान भाई सुने हेमलता पंत से घनश्याम सिंह की बातचीत, मशरूम की खेती और सावधानियां।
1: किसान भाई, देखा आप लोग अपने खेत से तमाम तरह का फसल का उत्पादन लेके दो पैसा का आमदनी करते हैं। हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई हैं जो पशुओं के माध्यम से भी आमदनी करते हैं, लेकिन बात आवत है किसान भाई की, कुछ ऐसा भी तौर तरीका होना चाहिए जैसे कि किसान, कुछ हमारे ऐसा भैया लोग हैं जिनके पास पर्याप्त खेत ना हो खेती बदे, तो ऐसे स्थिति में हम दो पैसा का आमदनी कैसे कर सकें। एकरे बदे मशरूम का खेती भी करते हैं ना, उससे अच्छी आमदनी। मशरूम का हो, एकर हम कैसे शुरुआत करें, कैसे अपन तैयारी करें, आज हम मशरूम के खेती के बारे में बात करें बदे। अपने स्टूडियो में हेमलता पंत बहनी के बुलोले हैं, आप प्रोफेसर हैं और आप अच्छी जानकारी भी रखते हैं। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हो अपने कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मशरूम हो।
2: हाँ, देखिए मशरूम जो है वो एक प्रकार का फफूंद है। छतरी नुमा खाने योग्य फफूंद

0: मशरूम कहलाते हैं।
1: जी
0: देखिए मशरूम के बहुत सारे नाम हैं, जैसे इस नाम है कुकुरमुत्ता, ठीक है, इसको इसके अलावा इसको खुम्बी अलम्बी चौ कहते हैं, इसको सब्जी मांस भी कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग अभी मशरूम की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो इसको नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो इसको शाकाहार नहीं समझते हैं, इसको मांसाहार समझते हैं। तो हमें बताना है कि फफूंद जो है वो वनस्पति जगत से संबंधित होता है, तो जब कोई वनस्पति जगत से संबंधित है तो कैसे मांसाहार हुआ, तो हमें ये बताना है ये शाकाहार है। जब लोग इसको जानेंगे कि ये शाकाहार है तभी वो खाएंगे और तभी वो उसका उत्पादन करेंगे।
1: अच्छा, जैसे कि आप बतौनी कि एक एक गांव गिराव में कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानल जाला, तो सबसे पहले आप ये बतावें कि अगर मशरूम की खेती करे चाहत हैं हमार किसान भाई लोग, तो इमन आवश्यक रूप से कौन कौन चीज की जरूरत पड़ी?
0: हाँ देखिए आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। अन्य कृषि उत्पादों की तरह मशरूम के उत्पादन में देखिए खेत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राकृतिक तरीके से तो ये आप देखते हैं कि नमी में ये ज़मीन पे उग जाता है, ये दीवारों पर हो जाता है, लकड़ी पर हो जाता है, क्योंकि उसको वहाँ से भोजन मिलता है। ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाता क्योंकि मशरूम कई रंगों के होते हैं, लेकिन आप देखेंगे हरे रंग के नहीं होते क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो अगर आपको इसका उत्पादन करना है कृत्रिम रूप से, तो आपके घर में या कहीं भी आपके पास कोई खाली जगह हो, कोई कमरा हो जिसके ऊपर एक छत हो, छत चाहे कच्ची हो चाहे पक्की हो, और वहाँ पे हवा आने जाने की अगर उचित व्यवस्था हो, वहाँ आप प्लास्टिक के थैलों में और लकड़ी की पेटियों में या प्लास्टिक के डब्बों में आप अलमारियाँ बना सकते हैं, इन सब जगहों पर आप मशरूम उगा सकते हैं। अब इसको क्या क्या चाहिए आपने कहा, तो देखिए इसके उत्पादन के लिए हमको चाहिए कृषि अवशेष। तो किसान भाइयों के पास तो देखिए गेहूं का भूसा होता है, धान का पुआल होता है, तो जो उनकी आवश्यकता है या उनके पशुओं की आवश्यकता है, उसके बाद जो बच जाता है वो उसका प्रयोग करें। दूसरी चीज यहाँ पर उसमें चाहिए बीज, बीज को यहाँ वैज्ञानिक भाषा में हम लोग स्पॉन कहते हैं।
1: अच्छा,
0: अब बीज देखिए बीज भंडार में नहीं मिलता मशरूम का, यहाँ पे मैं ये चीज बता दे रही हूँ, तो कहाँ से मिलेगा बात आएगी। तो अगर आपको स्पॉन लेना है तो जो हमारा राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान सोलन हिमाचल प्रदेश में है
1: जी,
0: आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं उनका जो पादप रोग विज्ञान विभाग है वहां से बीज मिलते हैं, जो क्रेविकेज हैं कृषि विज्ञान केंद्र आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, बहुत सारे एनजीओज भी अब मशरूम का बीज बनाते हैं, और आजकल जो ऑनलाइन व्यवस्था है उसमें जो भी जैसे सामान आते हैं वहां से आपको उन ऑनलाइन सिस्टम से आपको बीज भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप बीज लीजिए, तीसरी चीज इसमें पानी चाहिए, और फिर आपको कुछ दवाओं की जरूरत पड़ती है।
1: पंत बहनी बात आवत है ऑनलाइन, ऑनलाइन में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास और अविश्वास की भी बात आवत है। किसान भाई जैसन की बहनी बतौनी है कि तमाम ऐसा सरकारी स्तर पर भी व्यवस्था हो और भरोसे का केंद्र हो, तो उपलब्धता अगर आपके वहां से हो जाए तो बेहतर हो। हेमलता जी, जैसे आप बताएं कि एकर शुरुआत करें किसान भाई, तो मन बहुत सारा चीज उनके घरे से, उनके आंगन से, उनके खेत से ही उपलब्ध हो जाए।
0: जी।
1: जैसे लकड़ी का आप बताएं कि बक्सा हो जाए, बैग हो जाए, तो इका इनके बनवावे के पड़ी या ये बनल बनावल भी उपलब्ध हो सकेला?
0: देखिए जो प्लास्टिक की पन्नियां होती हैं वो पारदर्शी तो आपको बाजार से मिल जाएंगी।
1: जी।
0: अब आप अगर केवल सीखने के लिए कर रहे हैं तब तो 1 किलोग्राम वाली आप पन्नी लीजिए, अगर आप व्यापारिक स्तर पर करेंगे तो आप ऐसी पन्नी लीजिए जिसमें 4 किलोग्राम भूसा आ जाए, या फिर आप 8 किलोग्राम भूसा आ जाए, वो पन्नियां आराम से बाजार में मिल जाती हैं।
1: अच्छा,
0: प्लास्टिक
1: अच्छा,
0: के डिब्बे जो आपके पास ट्रांसपेरेंट हो, मतलब पारदर्शी हो और वो आपके उपयोग के नहीं रह गए हों, पुराने होते हैं तो हम बेच देते हैं, तो आप उनमें मशरूम उगा सकते हैं।
1: अच्छा, तो ये तरह का तो तमाम तरह से डिब्बा भी बाजार में उपलब्ध हैं जो उन पारदर्शी भी हैं और साइज में भी हर तरह का मिल जाइए जैसे किसान भाई चाहें।
0: जी जी।
1: मशरूम के खेती का करे का लाभ दो पक्ष में आओ, एक तो मशरूम का अच्छी खपत हो, अच्छी खपत तब हो जब सब्जी के रूप में या मशरूम खाए वालों की संख्या ज्यादा हो।
0: जी।
1: तो थोड़ा सा हम आपसे पर प्रकाश डाले का आग्रह करब कि मशरूम हमारे स्वास्थ्य बदे कितना बेहतर हो?
0: देखिए मशरूम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ये पोषकीय गुणों से भरपूर है, इसके साथ साथ ये औषधीय गुणों से भी भरपूर है, ठीक है। इसमें हमारे शरीर को चलाने के लिए जिन 6 तत्वों की जरूरत पड़ती है वो मशरूम में पाए जाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो।

0: चाहे वसा हो, चाहे खनिज लवण हो, चाहे विटामिन हो, और पानी। तो मशरूम में सबसे ज्यादा तो मिलता है देखिए पानी, 80 से 90% तो इसमें पानी ही मिलता है।
1: जी जी
0: अब इसके बाद बात करें तो ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें 3.5 से लेके 4.7% तक प्रोटीन मिलता है जब
1: बहुत
0: ये
1: बढ़िया,
0: ताजा
1: बहुत
0: होता
1: बढ़िया
0: है,
1: जी
0: ठीक है ना।
1: जी
0: हाँ, इसमें वसा कम है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, बहुत सारे विटामिन्स हैं, बहुत सारे खनिज हैं। तो जो आजकल की जीवन शैली है जिसमें हम शारीरिक मेहनत बहुत कम कर रहे हैं, तो देखिए हम चीनी नहीं खा रहे हैं, हम घी बहुत कम कर दिया, हमने तेल बहुत कम कर दिया, ठीक है ना, हम गेहूं कम कर रहे हैं, हम मिला जुला अनाज खा रहे हैं ना। तो आप इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप मशरूम को करिए, क्योंकि इसमें आजकल की जीवन शैली के हिसाब से वो सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए।
1: बेहतर बेहतर की स्वाद भी है और पौष्टिकता भी है।
0: जी
1: जैसे मशरूम का जो शुरुआत करे चाहत बा, ओके प्रशिक्षण की जरूरत पड़ी, ओके और जानकारी की जरूरत पड़ी
0: जी
1: कि भाई कितना नमी रखब जरूरी है, कितना तापमान जरूरी है, तो एकर वो समुचित जानकारी कैसे ले सकना।
0: हाँ, देखिए मशरूम उत्पादन के लिए बहुत सारे विटामिन्स हैं, बहुत सारे खनिज हैं। तो जो आजकल की जीवन शैली है जिसमें हम शारीरिक मेहनत बहुत कम कर रहे हैं, तो देखिए हम चीनी नहीं खा रहे हैं, हम घी बहुत कम कर दिया, हमने तेल बहुत कम कर दिया, ठीक है ना, हम गेहूं कम कर रहे हैं, हम मिला जुला अनाज खा रहे हैं ना। तो आप इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप मशरूम को करिए, क्योंकि इसमें आजकल की जीवन शैली के हिसाब से वो सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए।
1: बेहतर बेहतर की स्वाद भी है और पौष्टिकता भी है। जैसे मशरूम का जो शुरुआत करे चाहत बा, ओके प्रशिक्षण की जरूरत पड़ी, ओके और जानकारी की जरूरत पड़ी कि भाई कितना नमी रखब जरूरी है, कितना तापमान जरूरी है, तो एकर वो समुचित जानकारी कैसे ले सकना।
0: हाँ, देखिए मशरूम उत्पादन के लिए, देखिए मशरूम बहुत तरह के हैं, पूरे संसार में 14,000 तरह के मशरूम हैं, ठीक
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: अब उसमें से यहीं पे बता दूं कि कुछ खाद्य होते हैं, कुछ अखाद्य होते हैं, हर मशरूमों को हम खा नहीं
1: जी
0: सकते।
1: बिल्कुल
0: तो जब तक आप मत पहचानिए कि कौन सा मशरूम है, तो उसे आप बिल्कुल मत खाइए। अब जो मशरूम व्यापार में इस समय चल रहे हैं, माने जिनको हम व्यापारिक स्तर पर उगा रहे हैं, जो बाजार में मिल रहे हैं, वो सब
1: बिल्कुल
0: खाद्य मशरूम है,
1: जी
0: आप उसको आसानी से खा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे देश में इस समय 4 तरह के मशरूम है, जैसे बटन मशरूम, ओइस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम और धान के पराल का मशरूम,
1: जी
0: ये व्यापारिक स्तर पर हम उगा रहे हैं। अब आप एक वर्ष में देखिए, अगर बटन मशरूम है तो ये जाड़े का मौसम जब आता है तब इसको हम उगाते हैं, तो मध्य नवंबर से मध्य फरवरी के बीच आप इसको उगाते हैं। इसकी फफूंद वृद्धि के लिए 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान और फलन काय के लिए 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए और नमी इसमें 70 से 80% चाहिए।
1: जी जी
0: अब मैं दूसरे मशरूम की बात करती हूँ, अगर ओइस्टर की, तो आप इसको सितंबर से मार्च तक ले जाइए, फिर इसको 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए और 75 से 80% नमी चाहिए। अब
1: बिल्कुल
0: मैं तीसरे की बात करती हूँ, मिल्की या दूधिया की, तो ये आपका जुलाई से सितंबर, तो आप 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 80% नमी इसमें रख सकते हैं। अब जो पैडी स्ट्रॉ मशरूम है, इसको 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए, 85 से 90% नमी चाहिए। तो ये गर्मी का मशरूम है, आप इसको अप्रैल से सितंबर तक इसकी खेती कर सकते हैं।
1: बिल्कुल चलत चलत हम आपसे जानना चाहब कि बहुत संक्षेप में कि विशेष रूप से कौन बात का सावधानी रखें हमारे जो किसान भाई हैं, जैसे कि उनके उपज अच्छा मिले।
0: देखिए जिस कक्ष में या जिस स्थान पर आप मशरूम उत्पादित कर रहे हैं,
1: जी
0: वह अच्छी तरह से साफ हो, ठीक है ना। मशरूम उत्पादन जो व्यक्ति कर रहा है, उसका हाथ पैर भी बहुत अच्छे से साफ होना चाहिए। आप चाहें तो कोई कीटनाशी वहां पर छिड़क दें जिससे कीड़े नहीं लगे,
1: जी
0: ठीक
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल
0: अगर बटन मशरूम आप उगा रहे हैं, तो देखिए खाद आपको बहुत ज्यादा मात्रा में बनानी पड़ती है, तो बड़ा चबूतरा चाहिए, तो उसमें ज्यादा शेड चाहिए। और जब कंपोस्ट आपकी तैयार हो जाए, तो कंपोस्ट और यहाँ पर एक केजिंग सॉइल की जरूरत पड़ती
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो उसको भी आप निर्जमीकृत कर लें, और तभी आप मशरूम में देखेंगे कि बटन मशरूम में कोई बीमारी नहीं लग रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल हेमलता पंतबेनी आप हमारे स्टूडियो में आईन और मशरूम का खेती किसान भाई करके बढ़िया लाभ लें, अच्छी जानकारी दें। आपकी जानकारी देव खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुन रहे थे प्रोफेसर हेमलता पंत से घनश्याम सिंह की बातचीत, मशरूम की खेती और सावधानियां।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर अजीत चौरसिया की वार्ता, प्रमुख वायरस जनित रोग और उनका उपचार।
1: श्रोताओ नमस्कार, बारिश का मौसम है और आज सेहत की बात के अंतर्गत हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही आम है बारिश के मौसम में। जी हाँ, हम बात करेंगे वायरल बीमारियों। बहुत आम सा एक टर्म है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद भी कह देते हैं कि अरे वायरल हो गया। वायरल होना क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या उपचार हो सकते हैं, सभी इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है प्रयागराज के प्रख्यात फिजिशियन डॉक्टर अजीत चौरसिया को। हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर अजीत चौरसिया, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन।
1: सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि जो हम इतनी आसानी से बोल देते हैं कि वायरल हो गया, ये क्या होता है वायरल होना संक्षेप?
2: एक्चुअली वायरल शब्द अगर हम देखें तो शब्द के हिसाब से ये है कि जो भी बीमारियां हमको वायरस जो कि सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं
1: जी,
2: जिसमें बैक्टीरिया हम जानते हैं उसी तरह वायरस होते हैं
1: जी।
2: तो वायरस से कोई भी बीमारी अगर हो रही है तो अगर

0: आम भाषा में देखें तो वायरस से होने वाली बीमारियों को हम वायरल बोल देते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि भाई कौन सी बीमारियां हैं जो वायरल के अंतर्गत आती हैं, तो उसमें मेनली डेंगू है, चिकनगुनिया है, इन्फ्लुएंजा या जिसको फ्लू बोलते हैं,
1: सामान्य जुकाम,
0: हेपेटाइटिस है
1: जी,
0: मम्स, मीजिल्स, चिकन पॉक्स, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये तो हुआ कि मेरे लिए एज ए डॉक्टर वायरल में ये सब आ जाती हैं, लेकिन जो आम जनमानस और आम भाषा में लोग बोलते हैं वायरल हो गया, वो ये मान के चलिए कि सर्दी जुकाम और बुखार होने को हर व्यक्ति आम तौर पे वायरल बोल देता है।
1: क्या ये संक्रामक भी हो सकती हैं या माध्यम क्या होता है इनके फैलने का?
0: बिल्कुल, ये जितनी भी वायरल बीमारियां हैं ये संक्रामक रोगों की ही श्रेणी में आती हैं।
1: डेंगू भी
0: संक्रामक है। डेंगू इसलिए संक्रामक है कि ये मच्छर के थ्रू फैल रहा है, लेकिन जो फ्लू वाली बीमारी है, जो सर्दी जुकाम बुखार वाली बीमारियां हैं जिसमें इन्फ्लुएंजा है जो कॉमन है, ये सांस के जरिए जो हमारे शरीर से निकलने वाले छींक है, खांसी है, इससे निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं इनके थ्रू ट्रांसफर होता है, इसलिए ये संक्रामक रोग की श्रेणी में है।
1: शुरुआती लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब वायरल बीमारियों के या वायरस जनित बीमारियों के? और इसमें एक मैं प्रश्न और जोड़ना चाहूँगा कि सामान्य बुखार और गंभीर वायरल बुखार में अंतर कैसे करे कोई?
0: बेसिकली जब हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे पास बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ में आया है, तो हम आमतौर पर ये बोल दिए कि ये वायरल है। अब अगर ये कोई भी वायरल फीवर हुआ और इसमें अगर बुखार की इंटेंसिटी ज़्यादा है, हाई ग्रेड फीवर के साथ अगर है, जैसे कि 102 तक के फीवर को हम मॉडरेट फीवर बोलते हैं, लेकिन उससे ऊपर अगर जा रहा है 103, 104, 105 डिग्री बुखार आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह चिंताजनक विषय हो जाता है। और अगर ये वाले बुखार हाई ग्रेड टेम्परेचर में 3 से 5 दिन रह जाएं और इनके साथ और लक्षण आने लग जाएं, मतलब बुखार आना कोई बात नहीं, बुखार तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है शरीर का, लेकिन अगर बुखार के साथ में किसी की सांस फूलने की दिक्कत आ रही है, किसी के आंखों में कुछ लाल हो रहा है, या कहीं से कोई ब्लीडिंग के संकेत आ रहे हैं, चकत्ते पड़ रहे हैं, तो ये चीजें अगर साथ में आ रही हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें सही तरीके से इसका उपचार करना चाहिए, अदरवाइज ये गंभीर रूप ले सकती हैं।
1: हर वायरल बीमारी का इलाज दवाओं से संभव है?
0: वैसे तो बोलें तो वायरल बीमारियां सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, ज़्यादातर वायरल बीमारियां जो हैं वो सेल्फ लिमिटिंग हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि 5 से 7 दिन में लक्षण सबसाइड कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा दवाओं की आवश्यकता नहीं होती। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन कोई भी वायरस जनित बीमारी है अगर वो एक्सटेंडेड रूप ले रही है, लंबा समय ले रही है, तो वो जांच का विषय हो जाता है। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें एंटीवायरल दवाएं भी हैं, जिनमें हम स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाएं देते हैं, जैसे किसी को चिकन पॉक्स हो गया है या और इस तरह के, तो एसाइक्लोवीर जैसी दवाएं हैं, तो कुछ एंटीवायरल दवाएं हैं, लेकिन ज्यादातर बाकी में लक्षणों के हिसाब से उपचार करना है।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजीत चौरसिया से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत, प्रमुख वायरस जनित रोग और उनका उपचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। सुबह 7:30 पर सुनिएगा राष्ट्रमंडल खेल 2026 की दैनिक रिपोर्ट, और रात 8 बजे इस सप्ताह संसद में, और 9:30 पर पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती, और 10 बजे संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम। ये सारे ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ 7 बजे से, फिल्मों से भजन 7:10 से आप सुन सकते हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:45 पर उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन, और 12:15 पर उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का ख्याल गायन। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज 8:45 पर, फिल्म संगीत 9 बजे और 11:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर प्रीति मिश्रा से, और शाम 7:45 पर कौशिकी राय से भजन और गीत सुनिएगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमादरी में 10:05 पर कलाकार होंगे भरत लाल और रीता देवी, और दोपहर

दोपहर 2:30 पर कलाकार होंगे राम प्रसाद, श्याम बाबू यादव और बाबूलाल दिवाकर। 10:30 पर सुनिएगा हमारे संग्रहालय से आकाशवाणी प्रयागराज के पूर्व प्रोड्यूसर केशव चंद्र वर्मा से डॉक्टर जीवनलाल गुप्ता की भेंट वार्ता। कार्यक्रम एक ही कलाकार 11:00। दोपहर 12:30 पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनिएगा हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 10:00 पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल की बहनें सुनेंगी बीना सिंह से की गई बातचीत, बचत समूह और आर्थिक आजादी, साथ ही सुषमा मौर्य से लोकगीत। शाम 5:00 कार्यक्रम धरती के गीत में बरमदीन यादव और साथियों से लोकगीत सुनिएगा। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी होगा 5:15 पर। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे सुशील चौरसिया से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत, तैरना एक जरूरत, एक कला और एक नया आयाम, साथ ही रघुराज सिंह यादव से लोकगीत सुनेंगे। हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर चितरंजन सिंह की वार्ता, डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि और 8:15 पर सेहत की बात में सुनिएगा स्वर्ण प्राशन एक जानकारी, डॉक्टर जीएस तोमर से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत होगी और रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम सुनिएगा। तो ये थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: सार्थक चर्चायै सज्जमस्ति। तथापि विपक्षेण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः त्यागपत्रस्य आग्रहं कुर्वन् स्वविरोधं निरन्तरं प्रदर्शितम्। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या कर्णाटकान्ध्रप्रदेशयोः बल्लारी गुण्टकल रेलखण्डस्य तृतीय चतुर्थ रेलमार्गयोः निर्माणाय आहत्य चतुष्षष्ट्यधिकद्वादशशतकोटि रूप्यकाणाम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्रप्रदेश कर्णाटकयोः मध्ये रेल सम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रोमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षा क्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रोमानिया देशयोः संबंध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वती राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननं भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत, असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवनपुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मां अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, स्वर था शोभा जोशी का, संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन। पहला भजन हमने लिया है फिल्म परिणय से, आवाजें हैं शर्मा बंधुओं की।

अभी आप सुन रहे थे सचेत टंडन को फिल्म आदि पुरुष में। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। 7:20 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: जयपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, अफवाह फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध की जाए कठोर कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं इस मामले पर संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इससे पहले गुरुवार रात प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। इस बीच सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में अहम कदम है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि वह परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम में बदलने के लिए क्या कदम उठा रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग दो घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से। मैं और मेरे साथ मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। दोनों केंद्रीय मंत्री कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक बार फिर चर्चा करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा युवाओं के हितों को ध्यान में रखा है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में समय रहते कार्रवाई के साथ दोबारा परीक्षा भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने के बजाय सदन में चर्चा करनी चाहिए।
4: युवा हमारा देश का भविष्य और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट और प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं पे फोकस किया है और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद सरकार उस पर सख्त सख्त कार्रवाई भी की। हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो कि युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत रहा है वैसा जो आपके पास सुझाव हो दें ताकि उसमें कानून बनावे नया ताकि आगे से पेपर लीक आओ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा और अन्य पर्वों को लेकर कल देर शाम उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा में प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने, मिलावट, ओवररेटिंग, अव्यवस्था या अराजकता करने का प्रयास करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रखी जाएं। इसके साथ ही प्रत्येक दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा अब प्रदेश के किसी एक हिस्से तक सीमित आयोजन नहीं रह गई है। ऐसे में हर जनपद में व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा से पहले यात्रा मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर लेने के भी निर्देश दिए। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई विभागों और जनता के बीच समन्वय बनाया जा रहा है।
5: कांवड़ यात्रा को लेके जो भी से जुड़े हुए, चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर आम जन हो या जो भी समितियां, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया है। मुख्य जो घाट हैं जहां से गंगा जल लेके लोग शिवालयों में जाते हैं, वहां का निरीक्षण किया गया, रूट का निरीक्षण किया गया। घाटों पर जहां जहां पे जल पुलिस की सहयोग लेनी है, जल पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस तरह से श्रद्धालुओं को कहीं कठिनाई न हो, इसके लिए हमारे पूरे अधिकारी पूरे अलर्ट मोड में हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर रहेंगे। वह फतेहाबाद रोड स्थित टाटा मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान 342 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुरसराय नगर पालिका परिषद और गरौठा नगर पंचायत संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और

0: आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। सहारनपुर के गंगो थाना अंतर्गत ग्राम नयाकुंडा में एक पटाखा फैक्ट्री में कल शाम विस्फोट हो जाने से दो मजदूरों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या और बलिया में घाघरा, लखीमपुर खीरी में शारदा, बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत सभी संवेदनशील जिलों में वहां का प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। मौसम विभाग ने आगामी पांच दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, अफवाह फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध की जाए कठोर कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
2: गेम्स की अपडेट्स ओनली ऑन रेनबो स्टेशन 102.6। द कॉमनवेल्थ गेम्स।
3: स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में इन दिनों एक अलग गर्मी है, मुकाबलों की, उम्मीदों की और उन सपनों की जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर आकर सांस ले रहे हैं। एक वक्त था जब हिंदुस्तान की पहचान किसी और के शासन के साए में डूब गई थी, लेकिन उस दौर ने हमें एक चीज जरूर सिखाई, अपने हक के लिए खड़ा होना, अपने हिस्से की जगह मांगना और उसे अपने दम पर हासिल करना।
4: आज वही भारत उसी दुनिया के सामने अपने खिलाड़ियों के दम पर खड़ा है, बराबरी से आंखों में आंखें डालकर। और जब कोई भारतीय खिलाड़ी यहाँ पोडियम पर चढ़ता है तो सिर्फ एक पदक नहीं जीतता, उस छोटे से गांव, उस कस्बे, उस घर तक भी एक भरोसा पहुंचाता है, जहाँ बैठा कोई आम इंसान शायद पहली बार सोचता है हम भी किसी से कम नहीं।
3: और इस बार शायद इस भरोसे को नए चेहरे मिले हैं। As you know, popular sports like badminton, hockey, cricket, table tennis and wrestling are not a part of Commonwealth Games of the 22nd Commonwealth Games in Glasgow. But the absence of these sports have been a blessing in disguise for some of the lesser known sports. Para powerlifting, artistic gymnastics, swimming and lawn bowls are now making headlines, and our athletes representing India in these sports are showing what they are capable of.
4: ये वो खेल और खिलाड़ी हैं जिन्हें अक्सर बड़ी सुर्खियों के पीछे जगह बनानी पड़ती थी। इस बार मंच उनके सामने है। अब देखना ये है कि कौन इस मौके को दोनों हाथों से थामकर सुर्खियां अपने नाम कर लेता है। तो आइए जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 के दूसरे दिन कौन कौन से खिलाड़ियों ने सुर्खियां बटोर ली हैं।
3: सबसे पहले बात पैरा पावर लिफ्टिंग की। पैरा पावर लिफ्टिंग में खिलाड़ी सिर्फ वजन नहीं उठाते, वो उन सीमाओं को उठाकर एक तरफ रख देते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर उनके सामने खड़ा कर देती है। भारत में पैरा खेलों ने पिछले कुछ सालों में अपनी अलग पहचान बनाई है और शायद इस मंच पर एक और जीत किसी को ये यकीन दिला दे कि उसकी ताकत उसकी कमजोरी से कहीं बड़ी है। इसका उदाहरण स्थापित किया भारत के झंडू कुमार ने। पुरुषों की पैरा पावर लिफ्टिंग में 72 किलोग्राम के भार वर्ग वाले झंडू कुमार ने 190 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके चलते 130.9 अंक हासिल किए। इसके साथ ही झंडू कुमार को कांस्य पदक हाथ लगा और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत का खाता खुला।

0: night for Chandu Kumar.
1: ग्लासगो जाने से पहले ही आकाशवाणी से हुई खास बातचीत में झंडू कुमार ने बताया था कि उनके हौसले बुलंद है और वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार।
2: पिछली बार भी हमने कोशिश किए थे, दिल से कोशिश किए थे कि अच्छा ही करेंगे। एशिया चैंपियन भी अच्छा किए और वर्ल्ड कप में भी अच्छा किए, इस बार कॉमनवेल्थ में भी अच्छा करेंगे।
3: इतना वजन उठाने के टारगेट रखा, वजन उठाने
2: से देखिए अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ वार्म अप एरिया में जो पता लगता है कि हम कितना, मतलब यहाँ तो 210 220 कर रहे हैं मगर वहाँ मौसम के हिसाब से थोड़ा देखा जाता है वहाँ पे।
1: और झंडू कुमार ने कर दिखाया भी, पैरा पावर लिफ्टर से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद हम सभी को थी। नई दिल्ली में हुई सेंड ऑफ सेरेमनी के दौरान ही कोच राजेंद्र सिंह रेहलू ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी।
4: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है, हम कोशिश है हमारी कि इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे। और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
1: ये पदक पुरुषों की हैवी वेट कैटेगरी में आया। इसी कैटेगरी में भारत के सुधीर ने भी हिस्सा लिया और 91 किलो के सुधीर ने 183 किलो का भार उठाया और 114.1 अंक हासिल किए। सुधीर को पदक भले ही ना मिला हो लेकिन जब जब एक पैरा एथलीट शारीरिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े मंच पर पहुंच भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वो समाज में सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है।
5: A quintessential example of this was given on Friday by Ashok in men's para power lifting. Ashok registered his personal best by lifting an impressive 200 kgs and earning 143.8 points. Alas, he finished fourth and missed out on a podium finish.
6: In the same event, Paramjit Kumar lifted 176 kgs and finished seventh.
5: वहीं महिलाओं में उम्मीदें जसप्रीत कौर और सुमन देवी से थी।
7: मैं जसप्रीत हूँ, पैरा पावर लिफ्टर। अभी मैंने रिसेंट हमारा एशियन चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ मेरे ब्रॉन्ज मेडल लिया और उसके बाद अभी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ी है, ऐसे मुझे उम्मीद है कि मैं मेडल लेके आऊँ।
6: हाउएवर इट वाज अगेन अ स्टोरी ऑफ सो नियर येट सो फार। जसप्रीत कौर ने 100 किलो वजन उठाया लेकिन उसके बावजूद वो चौथे स्थान पर रही और पदक से चूक गई। उनके बाद सुमन देवी ने 103 किलोग्राम भार उठाने के दो प्रयास किए और मेडल पर निशाना लगाना चाहा लेकिन उनके दोनों ही प्रयास असफल रहे और उन्हें छठे पायदान से संतोष करना पड़ा।
5: ऐसी ही कहानी रही कस्तूरी राजमनी की भी, जिन्हें 3 असफल प्रयासों के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो जाना पड़ा।
1: अब बात करते हैं बॉक्सिंग रिंग की, जहां पर हर एक पंच भारतीय मुक्केबाजों के हौसले, उनकी तैयारी और उनके जोश को बयां करता है। भारत के जादूमणि सिंह ने इसी का परिचय देते हुए पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में मेजबान टीम के एरन कलन को सर्वसम्मति से मात दी, यानी पांचों के पांचों जज का फैसला जादूमणि सिंह के हक में रहा। इसके साथ ही जादूमणि ने राउंड ऑफ 16 में प्रवेश पा लिया है। अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे जादूमणि क्या इस बार इतिहास रचेंगे?
5: अब बात करते हैं लॉन बॉल की, जहां पिछले संस्करण में भारत ने एक गोल्ड एक सिल्वर जीता था। इस बार मानो हमारे एथलीट स्थान कर आए हैं कि लॉन बॉल्स की गूंज भारत की हर गली में सुनाई देनी चाहिए। पिछली बार की सफलता को देखकर लॉन बॉल्स के खेल में शुरुआत करने वाले पुतुल सोनेवाल ने शुरुआत ही इस प्रकार की है।
8: नमस्कार, मैं पुतुल सोनेवाल असम से हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है।
6: ऑन डे वन पुतुल सोनोवाल डिफीटेड आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन रायन बेस्टर ऑफ कनाडा। ही कंटिन्यूड द विनिंग वेज ऑन डे टू एज वेल। इन फ्रंट ऑफ हिम वाज द चैलेंज ऑफ सेलिक अलेक्जेंडर ऑफ फॉकलैंड आइलैंड्स। इन द फर्स्ट सेट सोनोवाल वाज ट्रेलिंग बट ही केम बैक फ्रॉम बिहाइंड टू टाई दैट सेट एंड देन रजिस्टर्ड एन एम्फैटिक विक्ट्री इन द सेकेंड सेट।
5: जैसा आप जानते हैं कि 2022 में भारत की महिलाएं लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक लेकर आई थी। उस टीम का हिस्सा रही रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी ने विमेंस पेयर में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। पहले दिन माल्टा को टाई ब्रेकर में हराने के बाद दूसरे दिन इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को 2 सीधे सेटों में मात दी। इनका अगला मुकाबला टोंगा से आने वाली मिलिका नेथेन और पेरिस बेकर की जोड़ी से है।
1: पिंकी ने तो ग्लासगो जाने से पहले ही बता दिया था कि भले ही इस बार ये प्रतियोगिता पिछली बार

0: की तरह नेचुरल ग्रास के बजाय कारपेट वाली घास पर हो रही हो, लेकिन उनका इरादा पोडियम फिनिश से कम का नहीं है।
1: हमने जो हिस्ट्री बनाई थी, क्रिएट की थी, हम इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे, किसी न किसी तरह किसी भी मेडल पे पोडियम के लिए जरूर आएंगे कि हम अपना देश को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी लोगों ने हमारे से एक्सपेक्टेशन रखी है, उस एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल कर पाए।
2: मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल पैरा स्विमिंग के फाइनल में क्वालिफाई होकर पहुंचे रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक टॉप थ्री की रेस से कुछ पीछे रह गए। उन्होंने मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में चौथे स्थान पर और वहीं उसी प्रतिस्पर्धा में अली इमाम ने सातवें स्थान पर खत्म किया और इसी के साथ दोनों खिलाड़ी पदक की रेस से बाहर हो गए।
3: दूसरी तरफ पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्री हरि नटराज सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंचे, लेकिन अपनी सेमीफाइनल की रेस में उन्होंने 25.29 सेकंड का समय लिया, जिसके चलते वो 8 स्विमर्स में सातवें पायदान पर रहे। इसी प्रतिस्पर्धा में दक्षिण अफ्रीका के पीटर कुजिया ने 24.29 सेकंड का समय लेकर नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया।
0: जिम्नास्टिक्स में तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह पुरुषों के टीम फाइनल और इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन राउंड में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने उतरे। प्रदर्शन सराहनीय रहा, लेकिन मेडल तक का सफर तय नहीं कर पाए।
2: आज तीसरे दिन यानी शनिवार 25 जुलाई को मंच दोबारा सजेगा। आइए जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।
0: 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उतरेगी भारतीय महिला टीम। 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल यानी तीन खिलाड़ी एक बास्केट और व्हीलचेयर पर दौड़ता पूरा मुकाबला। यहाँ रफ्तार भी है, टक्कर भी है और हर शॉट के साथ जीत की उम्मीद भी। भारतीय टीम में शामिल हैं मीनाक्षी हरिचंद्र जाधव।
4: कॉमनवेल्थ गेम ये बहुत बड़ी गेम है। जब से मैं स्पोर्ट्स में आई थी, मेरा जो भी हेल्थ इश्यू था वो 99% रिड्यूस हुआ है। मेरे भाई को लगता है कि गेम में क्या मिलता है तुमको, उससे अच्छा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेगी। बट कहीं पे भी जाती हूँ, कुछ जीत के आ जाती हूँ तो वो थोड़ा गर्व से बोलता है कि ये मेरे बहन है।
0: लक्ष्मी रायप्पा रायनवर।
5: मैं इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर, मेरा फैमिली बहुत खुश हो, फैमिली बहुत सपोर्ट किया था।
0: रीना रमेश चंद्र गुप्ता।
6: मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलना शुरू किया 2019 में। इसकी जानकारी मुझे मेरे एक एक्स कलीग से पता चली थी। इट वाज लाइक कि हम एक टीम स्टार्ट कर रहे हैं पुणे में, क्या आप ज्वाइन करना पसंद करोगे। आई नेवर इमेजिन कि जो मैंने एज अ फन ज्वाइन किया था, इट विल टेक मी टू द कॉमनवेल्थ गेम्स।
0: इरेंगबम रितु चानू।
7: इरेंगबम रितु चानू, मैं मणिपुर से हूँ।
0: हर खिलाड़ी अपने साथ एक कहानी लेकर आया है, दर्द की, संघर्ष की और उन सीमाओं को पीछे छोड़ने की जिन्हें दुनिया ने कभी उसकी किस्मत मान लिया था।
2: इंडिया विल प्ले देयर फर्स्ट ग्रुप स्टेज मैच अगेंस्ट वेल्स एट द SEC सेंटर।
0: बॉक्सिंग में पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उतरेंगे सचिन। राउंड ऑफ 32 में उनके सामने होने वाले हैं कनाडा के कियोमा अल अहमदिया। रिंग में हर पंच के साथ सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत भी परखी जाएगी, क्योंकि यहाँ एक बार कहानी बदल सकता है और सचिन इस बात को बखूबी जानते हैं और इसीलिए डटकर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां की है।
8: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारी उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। सभी के गोल्ड आने हैं।
0: एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी लॉन बॉल्स पर, एक ऐसा खेल जहां शोर कम है, रफ्तार कम है, लेकिन हर गेंद के साथ जीत की उम्मीद धीरे धीरे अपने निशाने की ओर बढ़ती है। पहले दो मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पुतुल सोनुवाल मलेशिया के इज्जत जुल केपले से भिड़ेंगे और जैसा हमने बताया वुमेन पेयर्स में रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी का सामना टोंगा से आने वाली टीम से होगा।
2: स्विमिंग पूल में भारत के लिए उतरने वाले हैं आर्यन नेहरा और धक्षण शशि कुमार। टॉल क्रॉस स्विमिंग सेंटर में ये दोनों तैराक पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल प्रतिस्पर्धा में शिरकत करते नजर आएंगे। धक्षण हीट 3 में और आर्यन हीट 4 में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर फाइनल में प्रवेश पाने की कोशिश होगी।
3: फाइनल मुकाबला भी आज ही खेला जाएगा।
0: उसके बाद नजरें होंगी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में महिलाओं पर। हवा में उड़

0: शरीर जमीन पर टिकता संतुलन और इन चंद पलों में ताकत और लचक का ऐसा खेल जिसे देखकर आंखें ठहर जाएं।
1: आज इस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने उतरेंगी प्रणति नायक, निशका अग्रवाल, प्रोशिता समानता और इशिता रिवाले।
0: चलते चलते रुख करते हैं मेडल्स टैली का। आखिरी समाचार मिलने तक भारत एकमात्र पदक के साथ 9वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में इस वक्त शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जिनके पास 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 10 पदक हो चुके हैं। दूसरे पायदान पर नाइजीरिया है, जिनके 3 स्वर्ण पदक और 3 रजत मिलाकर कुल 6 पदक है। ऑन द थर्ड स्पॉट इज होस्ट स्कॉटलैंड विद 2 गोल्ड मेडल्स एंड 2 सिल्वर मेडल्स, टोटल मेडल्स 4। इंग्लैंड हैज 1 मोर, दे हैव 5 मेडल्स इन टोटल। हाउएवर दे आर प्लेस्ड एट नंबर 4 बिकॉज दे हैव 1 लेस गोल्ड मेडल दैन स्कॉटलैंड। Apart from these 4 nations, South Africa is the only one to also win a gold.

0: third spot is host Scotland with 2 gold medals and 2 silver medals. Total medals, 4. England has one more. They have 5 medals in total. However, they are placed at number 4 because they have one less gold medal than Scotland. Apart from these 4 nations, South Africa is the only one to also win a gold medal. Will India be able to climb up the tally and get off the mark in the gold medal and the silver medal column? We will know soon.
1: हर दिन कोशिश जारी है भारत के एथलीट्स 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में जज्बे और जुनून की कहानी लिख रहे हैं हो सकता है स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में भारत को अपना नया सितारा मिल जाए
0: आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे तो सुनते रहिए आकाशवाणी
1: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आज इसमें सुनिए उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन राग है नट भैरव तबले पर संगत की है उस्ताद जाकिर हुसैन ने विलंबित रचना रूपक ताल में और द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन, राग था नट भैरव। तबले पर संगत की थी उस्ताद जाकिर हुसैन ने। विलंबित रचना रूपक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
5: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
6: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
4: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
7: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 इच्छा के लिए सुझाव हुए।
4: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
8: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
9: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
10: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड

0: scientific advances, universities like this has even greater responsibility to ensure that knowledge is guided by wisdom, ethics and compass. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
2: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है।

0: कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है, केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है, सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex, approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the video message, Modi said that the new bill incorporating provisions for strong action against paper leaks will be introduced in the ongoing session of Parliament next week. The draft bill, as announced by the Prime Minister in the Instagram video shared by him, was approved by the Union Cabinet yesterday. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
3: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
2: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now. The earlier record was 300 million views.

0: his saxophone and the incompleteness will reveal what he brought to them. In his aching solo on Shine On You Crazy Diamond, written in memory of Syd Barrett, one can feel the instrument channeling the collective grief of the band. Vishwanathan Anand becomes FIDE interim president, reports a pioneer. Jurgen Klopp named new Germany football coach, informs Hindustan Times. And finally, spectacular cultural mix gives Commonwealth Games a fresh start, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves anti-paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Doctor Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in the Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. And with that, we are in the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुताल्लिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा असलाहत से मुताल्लिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। भारत ने बहरे असद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय मल्लाह की मौत हो गई थी। गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और दौलत मुश्तरका खेलों में झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग मुकाबले में भारत की तरफ से कांसे का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मसौदे को मंजूर किया गया। जराए ने हमारे नामनिगार को बताया कि उम्मीद है कि यह मुजवजा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इसी दौरान इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली एजेंसी NTA ने 47 अफसरान को बर्खास्त कर दिया। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये इकदाम NTA में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाने का एक हिस्सा है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने जनरल मैनेजर की सतह पर सीनियर पेशावर अफराद के तकरूर के लिए इश्तहारात जारी किए हैं। उसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल प्रतिभू सेतु के जरिए 16 नौजवान पेशावर अफराद की खिदमात हासिल करने के लिए भी दरख्वास्त तलब की है। NTA ने एक बयान में कहा है कि इन इकदाम से एजेंसी की इदारा जाती तश्कील 9 के पहले इकदाम की अक्कासी होती है। NTA ने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 4 जनरल मैनेजर के ओहदों को नोटिफाई किया है, जिनमें से हर एक की इब्तदाई मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। उसने बताया कि नौजवान पेशावर अफराद की पहली मरतबा खिदमात हासिल की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के वाकयात और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जराइम की तहकीकात के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स STF तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स सरकारी इम्तिहानात में नाजायज तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के कानून के तहत तश्कील दी गई है। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि ये टास्क फोर्स मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के ज़रिए मुनक़िद कराए जाने वाले सरकारी इम्तिहानात से मुतालिक जराइम की फौरी पेशावराना और जामे तहकीकात

0: जाएगी। इन इम्तहानात में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड्स, बैंकिंग अमले के इंतखाब का इदारा, इम्तहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी और मरकजी हुकूमत की इदारतें व महकमे नीज अमले की भर्ती के लिए इनसे मुंसलिक और ज़ेरी दफातर शामिल हैं। तहकीकात के अलावा ये खसूसी टास्क फोर्स मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ मौसर तालमेल रखेगी ताकि इस तरह के मुकदमात में तेज़ी लाने के लिए रोज़ाना समात को यकीनी बनाया जा सके। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के वाकयात और इम्तहान से मुतालिक दीगर जराइम की तहकीकात के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स STF तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स सरकारी इम्तहानात में नाजायज तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के कानून के तहत तश्कील दी गई है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये टास्क फोर्स मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के जरिए मुनक़िद कराए जाने वाले सरकारी इम्तहानात से मुतालिक जराइम की फौरी, पेशावराना और जामे तहकीकात कराएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो से मुतालिक मौसूला मुस्बत रद्दअमल और तजावीज़ पर हर एक का शुक्रिया अदा किया है, जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद को सज़ा देने का एक सख्त कानून तश्कील देने की हुकूमत के फैसले का ऐलान किया था। एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामलात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई से मुतालिक शकों को शामिल करते हुए एक नया बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट के इस इजलास में पेश किया जाएगा। बिल के इस मुसवदे को कल मरकजी काबीना ने मंजूरी दी। इस मुसवदे का ऐलान वज़ीर आज़म ने अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो में किया था। जनाब मोदी ने एक ताज़ा वीडियो पैगाम में, जो उनके इंस्टाग्राम हैंडल से कल जारी किया गया है, कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: हुकूमत इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदाम के CJP के मुतालबात पर आज इसके वफद के साथ एक बार फिर बातचीत करेगी। इससे पहले मरकजी वजरा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP वफद से मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात के बारे में CJP के मुतालबात को पूरे सब्र तहमुल के साथ सुना। जनाब नड्डा ने कहा कि CJP ने 3 असल मुतालबात सामने रखे और इम्तिहान पेपर लीक पर काबू पाने के लिए इस्लाहात की कुछ तजावीज पेश की।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल थी।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी मुमताज अवामी खिदमत, तालीम और समाजी शमूलियत के लिए उनकी अहदबस्तगी और भारत रोमानिया ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके ताउन के एतराफ़ में रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ की जानिब से डॉक्टर ऑनरिस कोज़ा के एजाजी खिताब से नवाजा गया है। इस एजाज़ को कबूल करते हुए सदर जमहूरिया ने यह अवार्ड भारत के 140 करोड़ लोगों के नाम वक्फ किया और कहा कि ये दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान दीरीना दोस्ती की अक्कासी है। भारत और रोमानिया के दरमियान गहरे सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने एक सदी कबल रविंद्रनाथ टैगोर के दौरे बुखारेस्ट को याद किया। उन्होंने मुश्तरका तहकीकी फैकल्टी और तलबा के तबादलों के जरिए मजीद तालीमी तआवुन की हौसला अफजाई की और ऐलान किया कि भारत ने रोमानिया के लिए ITEC ट्रेनिंग स्लॉट्स को दोगुना कर दिया है।
4: For decades, Romanian universities have welcomed Indian students, particularly in medicine, engineering, and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
1: मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ में माहौल गर्मजोशी, वक़ार और मसरत से भरपूर था, क्योंकि वहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को यूनिवर्सिटी का अहम एजाजी डॉक्टरेट का खिताब पेश किया गया। अजीमुशान ऑडिटोरियम में एकेडमिक रोप में मलबूस फैकल्टी मेम्बरान, तलबा, सफारतकारों और मुमताज़ मेहमानों से भरा हुआ था, जिन्होंने खड़े होकर सदर जमहूरिया का पुरजोश इस्तकबाल किया। ये तकरीब सिर्फ एक तालीमी तकरीब नहीं थी, बल्कि भारत और रोमानिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती का जश्न भी थी, जिसमें बाहमी एहतराम और उम्मीद का जज्बा पूरा

0: माहौल महसूस कर रहा था। रोमानिया से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल एमवी ओमोर्फी जहाज पर हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय शहरी की मौत हो गई थी। भारत ने तिजारती जहाजों पर किए जाने वाले हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया और सभी मुतालिका फरीकों से कहा है कि वो समंदर में आबदोरफ्त और बैन अलाक्वामी तिजारत की हिफाजत को यकीनी बनाएं। वजारत खारजा के तर्जुमान इस जहाज पर 18 जुलाई को हमला किया था। वजारत खारजा के मुताबिक इस जहाज पर 18 जुलाई को हमला किया गया था, जब यह जहाज बहरे अस्वद से गुजर रहा था। इस जहाज में अमले के 10 अफराद सवार थे, जिनमें 3 भारतीय शहरी भी थे। वजारत खारजा ने बताया कि इस हमले में एक भारतीय मल्लाह की जान चली गई और 2 भारतीय बाशिंदे जहाज में महफूज हैं। वजारत ने एक बयान में मुतासरा कुनबों से ताज़ियत का इजहार किया है और कहा है कि भारत तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाकर किए गए इस तरह के हमलों और अमले के बेकसूर अरकान की ज़िंदगियों को जोखम में डालने की वाज़ेह तौर पर सख्त मजम्मत करता है। ईरान की हदूद में मोजम्बिक के परचम बरदार LPG टैंकर दिशा पर हुए हमले के बाद इसमें सवार अमले के तमाम 28 भारतीय महफूज हैं। तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने इसकी तस्दीक की है और LPG टैंकर दिशा के साथ पेश आने वाले वाकये की बात तस्लीम की है। एक सरकारी बयान में सिफारतखाने ने कहा है कि वो अमले की खैर वाफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी अफसरान के साथ रबते में है। हुकूमत ने कहा है कि वादी सिंध का समझौता उस वक्त तक इल्तवा में रहेगा जब तक पाकिस्तान सरहद पार की जाने वाली दहशतगर्दी की हिमायत से बाज नहीं आ जाता। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी मीडिया की इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि भारत पड़ोसी मुल्क में जानबूझकर सैलाब की सूरत हल पैदा कर रहा है। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि समारोह में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
0: द्रास में वाकई कारगिल वॉर मेमोरियल 27वीं कारगिल विजय दिवस की तकरीबात की तैयारियों की तकमील के बाद पुरवकार और पुरजोश मंजर पेश कर रहा है। 2 रोज़ा यादगारी तकरीबात का आगाज आज से हो रहा है, जबकि कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह ऑपरेशन विजय के शोधा को खिराज अकीदत पेश करने में कौम की क़्यादत करेंगे। हज़ारों विजिटर साबिक फौजियों शोधा के अहलखाना और फौजी एहलकारों की इन यादगारी तकरीबात में शिरकत की तवक्को है। ये तकरीबात 1999 की कारगिल जंग के दौरान भारतीय मुसल्ला फौज की गैर मामूली शुजात हिम्मत और अजीम कुर्बानी को एक अजीम शान खिराज अकीदत हैं। कारगिल से इनायत अली रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ग्लासगो में 2026 के दौलत मुश्तरक खेलों में भारत ने मेडल जीतने का आगाज कर दिया है। झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांसे का तमगा हासिल किया। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरी कोशिश में 190 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने 130.9 पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा हासिल किया। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैच की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेज़बान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम को सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल है। उसने जुमेरात को पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने आज सुबह कनाडा के ओंटारियो में मिस्र की बार्ब समय को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। भारत की 18 साला अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुत्तला किया है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के सबब 18 स्टेशनों को सुबह 7:30 बजे से दूसरी हिदायत जारी होने तक कल बंद कर दिया गया है। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक, नई दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दीगर स्टेशन शामिल हैं। अलबत्ता DMRC ने वाजे किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरीट पर ट्रेन तब्दीली की सहूलियात बरकरार रहेंगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने पेपर लीक मामले में कसूरवार को सख्त सजा दिए जाने वाले तरमीम बिल के मसौदे को काबीना की तरफ से मंजूरी मिलने की खबर को शह सुर्खी बनाया है, जिसमें कसूरवारों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का इल्तिजाम रखा गया है। रोजामा प्रताप ने पेपर लीक मामले में NTA

के 47 अफसरों को बर्खास्त किए जाने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए इंतजामिया में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात एक वीडियो पैगाम में नौजवानों और आम लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत पेपर लीक के मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। इस खबर को रनावा इनकलाब ने पहले सफ़े पर जगह दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम से खिताब के दौरान रोमानियाई कंपनियों से भारत की तरक्की के सफ़र में शामिल होने की अपील की। इस खबर को रोनामा प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है।

0: में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम से खिताब के दौरान रोमानियाई कंपनियों से भारत की तरक्की के सफर में शामिल होने की अपील की। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
1: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसवदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा असलाहत से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, जीवन प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। इस जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और जहां जीवन निराशा के अंधेरे में घिर जाए, वहां विज्ञान आशा की एक नई किरण बनकर सामने आता है। आज 25 जुलाई है और आज हम दो महत्वपूर्ण दिन मना रहे हैं, विश्व डूबने से बचाव दिवस, वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे, और दूसरा भ्रूण विज्ञानी दिवस, वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे यानी वर्ल्ड आईवीएफ डे। एक दिवस हमें जीवन बचाने की प्रेरणा देता है तो दूसरा जीवन की नई शुरुआत संभव बनाने वाले विज्ञान का सम्मान करता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना। यही संदेश इन दोनों दिवसों का सार भी है। श्रोताओं, हर 25 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर विश्व डूबने से बचाव दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2021 में इस दिवस की घोषणा की थी ताकि डूबने जैसी रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष लगभग 3 लाख से अधिक लोग डूबने के कारण अपनी जान गंवाते हैं। अधिकांश बच्चे और युवा होते हैं। ये एक त्रासदी है जिसे जागरूकता, प्रशिक्षण और थोड़ी सी सावधानी से काफी हद तक रोका जा सकता है। हमारा प्रयागराज तो गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम की धरती है। यहाँ आस्था का अथाह सागर उमड़ता है, लेकिन मानसून के दिनों में नदियों का बढ़ता जल स्तर हमें अतिरिक्त सतर्क रहने का संदेश भी देता है। यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कभी भी तेज बहाव वाले पानी में ना उतरें। बच्चों को नदी, तालाब या स्विमिंग पूल के पास अकेला न छोड़ें। नाव में यात्रा करते समय लाइफ जैकेट अवश्य पहनें। तैराकी सीखें और दूसरों को भी प्रेरित करें। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहें। किसी को डूबता देखकर बिना प्रशिक्षण के पानी में न कूदें। तुरंत पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय बचाव दल को सूचना दें। याद रखिए, एक क्षण की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, बात करेंगे उस विज्ञान की जिसने लाखों परिवारों के जीवन में मुस्कान लौटाई। श्रोताओं, घर की सबसे प्यारी आवाज कौन सी होती है? शायद किसी नन्हे बच्चे की खिलखिलाहट, लेकिन हर परिवार को ये खुशी आसानी से नहीं मिल पाती। कुछ लोग तो वर्षों तक इस पल का इंतजार करते हैं। ऐसे ही लाखों परिवारों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई आधुनिक चिकित्सा तकनीक IVF, और इस तकनीक को सफल बनाने वाले विशेषज्ञ होते हैं भ्रूण विज्ञानी।

25 जुलाई को विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस, जिसे विश्व IVF दिवस भी कहा जाता है, आज इसको मनाते हैं। इसी दिन 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में दुनिया की पहली IVF शिशु लुईस ब्राउन का जन्म हुआ।

चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी। इस सफलता के पीछे वैज्ञानिक सर एडवर्ड्स और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो का अथक परिश्रम था। बाद में रॉबर्ट एडवर्ड्स को वर्ष 2010 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आज आईवीएफ तकनीक उन लाखों दंपतियों के लिए आशा का किरण है जो प्राकृतिक रूप से संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भ्रूण वैज्ञानिक का कार्य केवल विज्ञान नहीं बल्कि किसी के घर में खुशियां लाने का माध्यम भी है। कहा जाता है कि जहां आशा समाप्त होती है वहीं से विज्ञान नई संभावना का द्वार खोलता है।

श्रोताओं, विज्ञान तभी सार्थक है जब उसका लाभ मानवता तक पहुंचे। जिस प्रकार डॉक्टर, नर्स, वैज्ञानिक मानव जीवन की रक्षा में दिन रात जुटे हुए हैं, इसी प्रकार हम सबका भी ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के लोगों के जीवन की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखें। यदि हम इन दोनों दिवसों के सूत्र को पिरोएं तो संदेश बहुत ही स्पष्ट है, जीवन अनमोल है। एक ओर हमें जीवन को सुरक्षित रखना है, दूसरी ओर विज्ञान के माध्यम से जीवन को नई आशा भी देनी है। हम स्वयं जागरूक बने, दूसरों को भी जागरूक करें और एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान दें जहां सुरक्षा, संवेदनशीलता और विज्ञान तीनों साथ साथ आगे बढ़ें। आइए हम ऐसा भारत बनाएं जहां हर जीवन सुरक्षित हो, हर परिवार आशा से भरा हो और हर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
4: सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म अलग अलग से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है RD बर्मन ने।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म द डर्टी पिक्चर में कमाल खान को। गीत लिखा है रजत अरोड़ा ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में

0: अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
2: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मेरठ मंडल के पर्यटन और सांस्कृतिक विकास से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में पर्यटन विभाग की कुल 27 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें मेरठ के 2, गाजियाबाद के 4, गौतम बुद्ध नगर के 3, बुलंदशहर के 7 और हापुड़ के 8 प्रस्ताव शामिल हैं। ब्रजघाट क्षेत्र के पर्यटन विकास और गंगा तट से जुड़े स्थलों को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में विरासत स्थलों को पर्यटन परिपथ से जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को स्थानीय आस्था, सांस्कृतिक विरासत और जन भागीदारी से जोड़ते हुए नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में 199 मेधावियों को पदक प्रदान किए। राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह जी का व्यक्तित्व भारतीय लोकतंत्र में सादगी, ईमानदारी, संघर्ष और जनसेवा के अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गाँव, गरीब और किसान के उत्थान के लिए समर्पित किया। राज्यपाल ने कहा कि आज समाज में बिना विचार किए किसी भी विचारधारा या झंडे के पीछे चल पड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। युवाओं को पहले यह समझना चाहिए कि वे जो कार्य कर रहे हैं वह देश हित में है या नहीं। विश्वविद्यालय का दायित्व केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों से सही सोच और राष्ट्रहित की भावना को विकसित करना भी है। अमर यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु शासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन SP गोयल एवं DGP राजीव कृष्ण की संयुक्त अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा को लेकर मंडलायुक्त सभागार में मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद मंडल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान राज्यों के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। वर्चुअल माध्यम से संबंधित समस्त अधिकारी भी जुड़े। पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा कार्यवाही से अवगत कराया गया। बैठक कांवड़ यात्रा के संबंध में आने वाली चुनौतियां एवं उनसे निमटने के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव SP गोयल ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे सफलता पूर्वक संपन्न कराना हम सभी का साझा दायित्व है। इसके लिए सभी विभाग अपने अपने दायित्वों एवं दिए गए निर्देशों का 100% सुनिश्चित पालन करें। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान संपूर्ण कांवड़ मार्ग एवं उससे जुड़े सभी प्रमुख स्थलों पर नियमित साफ सफाई, स्वच्छता एवं सैनिटेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कांवड़ शिविरों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए। शिविर के लिए आवश्यक अनुमति, विद्युत कनेक्शन, अग्नि सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं अन्य सभी सुरक्षा मानकों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3: कांवड़ यात्रा सकुशल बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो सके, किसी भी कांवड़िया को कहीं कोई कष्ट न हो, चार रूप से ये कार्यक्रम संपन्न हो, उनका सम्मान के साथ सारे लोग योगदान करें।
2: केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त हुई हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया में हुनरमंद महिलाओं ने रोजगार शुरू किया और कामयाबी के कदम चूमे। मेरठ की ममता गर्ग ने घर से ही हैंडीक्राफ्ट का कार्य शुरू किया। उन्हें स्टैंड अप इंडिया योजना में 10 लाख का लोन मिला, जिससे ममता गर्ग ने काम को आगे बढ़ाया। आज वह भगवान की पोशाक, लड्डू गोपाल के सिंहासन, पालने, बंदरवार, विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बना रही हैं। खुद सशक्त बनने के साथ ही उन्होंने अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया। आज उनका हैंडीक्राफ्ट भारत ही नहीं अन्य देशों में भी पसंद किया जा रहा है।
4: मेरी काफी सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम की मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें कि मैं भगवान के पालने, सिंहासन ये सब बनाते हैं, बंदनवार बनाते हैं और पूजा के लक्ष्मी गणेश और होली से रिलेटेड सामान सभी कुछ हमारे यहाँ बनता है।
2: मेरठ में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना के शुभारंभ अवसर पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, सांसद अरुण गोविल मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन भी सुना गया। कार्यक्रम में शिक्षकों को मुख्यमंत्री कौशल कैशलेस योजना का कार्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को DBT के माध्यम से योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं और शिक्षकों को अच्छा शिक्षा का माहौल और शिक्षा का स्तर मिल रहा है।
1: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीराम राय का।
5: पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने स्वामी विवेकानंद के गुरु पौहारी बाबा के आश्रम में दर्शन पूजन के बाद केंद्र में NDA सरकार के 12 साल पूरे होने पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। पद मिलने के बाद गाजीपुर में प्रथम आगमन पर कृष्ण बिहारी राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं, महिलाओं, गरीबों एवं जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी एवं कार्यक्रमों में जितना जनता उत्साह से भाग ले रही है, उससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के नगर विकास राज्य मंत्री उमेश राय का भी आगमन गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के पैतृक गांव पलिया में हुआ। पलिया पहुंचने पर उमेश राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय से पूरे भारत में उत्साह का माहौल है। गाजीपुर में किसान कल्याण के लिए जगह जगह कैंप लगाकर किसानों को वैज्ञानिक खेती तथा KCC के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि निदेशक विजय कुमार ने कहा कि धान के मौसम में किसान नर्सरी के बजाय सीधे खेतों में नमी के बीच बीज बोकर खेती कर सकते हैं, इससे उपज अच्छी होती है। उन्होंने सूखे को ध्यान में रखते हुए किसानों से बाजरा, ज्वार, मक्का आदि की खेती करने की भी अपील की। वहीं अग्रणी जिला प्रबंधक यूनियन बैंक राजदेव ने कहा कि मात्र 4% ब्याज दर पर सभी किसानों का KCC कार्ड बनाया जा रहा है एवं KCC बन जाने पर सभी किसान फसल बीमा का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने गाजीपुर के सभी किसानों से अपने निकटतम बैंक से KCC बनवाने की अपील की। आगामी कांवड़ यात्रा एवं श्रावण माह में भगवान शिव के जलाभिषेक के मद्देनजर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने गाजीपुर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा, स्नान, जल लेने या जलाभिषेक के समय न हो, इसके लिए पूरे जनपद में प्रसिद्ध देवालयों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा गंगा घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।
6: श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए, ये हम लोग की व्यवस्था है। आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, कि उनके रहने के लिए, बैठने के लिए, स्नान करने के लिए प्लस जल लेने के लिए कोई दिक्कत ना हो, भीड़ का नियंत्रण ठीक से हो, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, यही सब देखा जा रहा है।
5: गाजीपुर के विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की अध्यक्षता में निपुण भारत मिशन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि अभी प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने वाले निपुण भारत मिशन के तहत जनपद के 30% स्कूल ही आच्छादित हो पाए हैं। ऐसे में जिले के सभी विद्यालयों को निपुण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के तहत विद्यालयों में कक्षा

0: तक के बच्चों को पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणित की जानकारी देने का लक्ष्य निर्धारित है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: उर्दू कार्यक्रम
1: आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान फरीदुल्ला खान हाजिर है सलाम अदब के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज से। सामीन, आज 25 जुलाई है और आज ही के दिन यानी 25 जुलाई को होता है आकाशवाणी रामपुर का यौम तासीस। तो हमारी जानिब से इस यौम तासीस के मौके पर आप सबको बहुत मुबारकबाद कबूल हो। जब से इसका आगाज़ हुआ तब से आज तक आकाशवाणी रामपुर ने अपने प्रोग्राम के ज़रिए खूब तरक्की की है और दुआ भी यही है ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। एक बार फिर आप सबको बहुत मुबारकबाद कबूल हो। और आइए, आज हमने अपने स्टूडियो में एक शेरी नशिस्त का इनेकाद किया है। इसमें जो शोरा इकराम शामिल हैं उनके अस्माए ग्रामी कुछ इस तरह हैं: जनाब अकील मियां अकील नुमानी साहब, मोहतरमा आमना बेगम खुशबू रामपुरी साहिबा और डॉक्टर इसरार अहमद असरार नसीमी साहब। तो समात करते हैं ये शेरी नशिस्त।
2: मोहतरम सामईन इकराम, आज की शेरी नशिस्त आकाशवाणी रामपुर पर मनक़द की गई है, तो आइए बिला किसी ताखीर के आज की इस शेरी नशिस्त का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने गज़ल का मतला पेश करता हूँ समात कर। कोई साथी कोई हमदम नहीं है, कोई साथी कोई हमदम नहीं है, खुदा का शुक्र फिर भी गम नहीं है, खुदा का शुक्र फिर भी गम नहीं है। सानी मतला इस तरह है कि मोहब्बत के लिए ये कम नहीं है, मोहब्बत के लिए ये कम नहीं है, किसी से कोई भी बरहम नहीं है, किसी से कोई भी बरहम नहीं है। और शेर इस तरह है कि हमारी कौम के जो जख्म भर दे, हमारी कौम के जो जख्म भर दे, किसी के पास वो मरहम नहीं है, किसी के पास वो मरहम नहीं है। ये ख़ास तौर से शेर के ज़रूरी तो नहीं वो शादमा हो, ज़रूरी तो नहीं वो शादमा हो, बज़ाहिर जिसको कोई गम नहीं है, बज़ाहिर जिसको कोई गम नहीं है। सरासर झूठ पर मबनी है किस्सा, फसाने में तेरे कुछ दम नहीं है, फसाने में तेरे कुछ दम नहीं है। मक्ता इस तरह है कि वही असरार है दुनिया की हर शय, वही असरार है दुनिया की हर शय, मगर पहले सा वो आलम नहीं है। कोई साथी कोई हमदम नहीं है, खुदा का शुक्र फिर भी गम नहीं है। लबो लहजे को बाजारी न करना, लबो लहजे को

0: गजल के साथ
1: गद्दारी
0: न करना, कि मोहब्बत भी इबादत की तरह है।
1: मोहब्बत भी इबादत की तरह है।
0: महब

0: सदा तहरीर में मोहतात
1: सदा तहरीर में
0: रहना,
1: मोहतात रहना।
0: सदा तहरीर में मोहतात रहना, कलम को अपने
1: बाजारी
0: बाजारी न
1: बहुत अच्छा, वाह
0: करना।

0: इसी को कहते हैं सब्रो
1: इसी को
0: कनात।
1: कहते हैं सब्रो कनात।
0: इस

0: क्या कहने क्या कहने
1: के हमको रही का सिर जुबान कहने से जिनको
2: रही का सिर जुबान कहने

0: अच्छा रुख है, वाह वाह वाह।
1: सितम से वो करम तक आ गए हैं। बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर, मकामे दिल है क्या उनको बता दो,

अब हरम तक आ गए हैं। मक्ता पेश करती हूँ। तेरे आंसू तेरी आँखों से खुशबू।

0: चाहे वो अदब से ताल्लुक़ हो या शायरी से मुताल्लिक हो, लेकिन इस वक्त मैं ये शख्सियत को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ, उनके साथ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गज़ल का ताज तो सर पे ज़रूर रखा है मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। इस शेर को पढ़ने का मेरा तारुफ़ है हजरत अकील मियाँ साहब, जिनको हम अकील नोमानी के नाम से जानते हैं। अब मैं उनसे मुअद्दबाना मुल्तमिस हूँ कि अपने कलाम से हमें महजूज फरमाएं। जनाब अकील नोमानी साहब,
1: बहुत शुक्रिया। मतला अर्ज़ करता हूँ, मुलाहजा कीजिएगा। तमन्नाएं जवां थीं इश्क फरमाने से पहले, तमन्नाएं जवां थीं इश्क फरमाने से पहले, शगुफ्ता थे ये सारे फूल कुमलाने से पहले।
2: वाह
3: वाह,
4: हिफाजत की कोई सूरत निकल आती है अक्सर,
0: हिफाजत की कोई सूरत निकल आती है
4: हिफाजत की कोई सूरत निकल आती है अक्सर।

0: इश्क फरमाने से पहले,
1: तमन्नाएं जवां थीं इश्क फरमाने से पहले, शगुफ्ता थे ये सारे फूल कुमलाने से पहले।
0: वाह
2: वाह
0: वाह,
3: हिफाजत की, हिफाजत की कोई सूरत निकल आती है अक्सर।
0: हिफाजत की कोई सूरत निकल आती है,
3: हिफाजत की कोई सूरत निकल आती है अक्सर। मैं तुमको ढूंढ ही लेता हूँ खो जाने से पहले।
0: अरे वाह वाह वाह वाह,
3: और अर्ज किया है कि भला वो लोग क्या जाने सफर की लज्जतों को,
2: भला वो लोग क्या जाने सफर,
3: भला वो लोग क्या जाने,
0: जी जी,
3: सफर की लज्जतों को
0: क्या कहने, क्या कहने,
3: भला वो लोग क्या जाने सफर की लज्जतों को, जिन्हें मंजिल मिली हो ठोकरें खाने से पहले।
0: वाह वाह वाह वाह,
3: जिन्हें मंजिल मिली हो ठोकरें खाने से पहले। जुनू के रास्ते आसान नहीं ये सोच लेना,
0: जुनू के रास्ते आसान,
3: जुनू के रास्ते आसान नहीं ये सोच लेना, कई गुलशन पड़ेंगे तुमको वीराने से पहले।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने,
3: जुनू के रास्ते आसान नहीं ये सोच लेना,
0: वाह वाह वाह,
3: कई गुलशन पड़ेंगे तुमको
0: वीराने से पहले।
3: मेरी वहशत मेरे सहरा में उनको ढूंढती है,
0: क्या कहने,
2: मेरी
3: वहशत मेरे सहरा में उनको ढूंढती है, जो थे दो चार चेहरे जाने पहचाने से पहले।
0: वाह वाह वाह,
3: जो थे दो चार चेहरे जाने पहचाने से पहले।
0: वाह वाह वाह,
3: और मेरे अपने बबूलों ने भी मेरे रास्ते में,
0: मेरे अपने बबूलों,
3: मेरे अपने बबूलों ने भी मेरे रास्ते में बहुत कांटे बिछाए फूल बरसाने से पहले।
0: वाह वाह वाह,
3: बहुत कांटे बिछाए
2: फूल
3: बरसाने से पहले, तमन्नाएं जमा थीं इश्क फरमाने से पहले, शगुफ्ता थे ये सारे फूल कुमलाने से
0: पहले। वाह,
3: बहुत शुक्रिया। एक और गजल का मतलब पेश करता हूँ।
0: जी अता कीजिए।
3: मुलाहजा फरमाए कि कोई किरदार अब आवाज उठाने का नहीं,
2: कोई किरदार अब आवाज
3: उठाने का नहीं,
0: जी,
3: सच कहानी में कभी सामने आने
0: का नहीं। वाह वाह,
3: कोई किरदार अब आवाज उठाने का नहीं,
0: वाह,
3: सच कहानी में कभी सामने आने का नहीं।
0: क्या कहने, क्या कहने,
3: और अर्ज किया है कि हाथ तो अब भी मिलाता है मुलाकात पे वो,
0: जी जी जी, हाथ तो अब भी,
3: हाथ तो अब भी मिलाता है मुलाकात पे वो, हौसला उसमें मगर आंख मिलाने का।
0: अरे वाह वाह वाह वाह, क्या
3: हौसला उसमें मगर आंख मिलाने का नहीं, हाथ तो अब भी मिलाता है मुलाकात पे।
0: बहुत अच्छा,
3: बहुत शुक्रिया। हाथ तो अब भी मिलाता है मुलाकात पे वो,
0: क्या कहने,
3: हौसला उसमें मगर आंख मिलाने का नहीं।
0: क्या कहने, क्या,
3: और इश्क करते हो तो ऐलान भी करना सीखो,
0: जी जी,
3: इश्क करते हो
0: तो ऐलान,
3: तो ऐलान भी करना सीखो, ये जताने का जमाना है छुपाने का नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह,
3: ये जताने का जमाना है छुपाने का नहीं है। खूब जी भर के जियो पहली मुलाकात का दिन,
0: क्या कहने,
3: खूब जी भर के जियो पहली मुलाकात का दिन, ये जो गुजरा तो कभी लौट के आने का नहीं।
0: वाह वाह वाह,
3: ये जो गुजरा तो कभी लौट के आने का नहीं।
0: वाह वाह,
3: और आखिरी शेर अर्ज करता हूँ कि मेरे दिल से तो चला जाए कभी वो शायद,
0: मेरे दिल से तो चला,
3: मेरे दिल से तो चला जाए कभी वो शायद, उम्र भर फिर भी मेरे जहन से जाने का।
0: अरे वाह वाह वाह वाह,
3: उम्र भर फिर भी मेरे जहन से जाने का नहीं।
0: क्या कहने, क्या कहने,
3: कोई किरदार अब आवाज उठाने का नहीं,
0: वाह वाह,
3: सच कहानी में कभी सामने आने का नहीं।
0: हजरत अकील नोमानी साहब की इस गजल के साथ आज की ये शेरी नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है, और एक मरतबा फिर मैं उन शोराए कराम से आपका तारुफ करा दूं जिन्होंने आज की शेरी नशिस्त में अपना कलाम पेश किया है। सरे फहरिस्त उसमें नाम है जनाब अकील मियां साहब, अकील नोमानी साहब जिनको हम कहते हैं, मोहतरमा आमना बेगम खुशबू रामपुरी साहिबा ने अपना कलाम पेश किया, और मैं खाकसार मोहम्मद असरार खां असरार नसीमी ने भी इस नशिस्त में शिरकत फरमाई।
4: इस शेरी नशिस्त के निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे डॉक्टर मोहम्मद इसरार अहमद खां असरार नसीमी साहब। इस शेरी नशिस्त के साथ आकाशवाणी

0: रामपुर के मरकज से अपने मेजबान फरीदुल्ला खान को दीजिए इजाजत। आदाब।
1: अभी आप सुन रहे
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं प्रीति मिश्रा। पहले सुनते हैं इनसे भजन। रचना है तुलसीदास की।

प्रीति मिश्रा के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: श्री मोदी के वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर CJP की मांगों को ध्यानपूर्वक

0: एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नीट पेपर परीक्षा लीक पर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में 5वें दिन भी कार्यवाही बाधित रही और दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारतीय जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु की खबर है। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रही श्री अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से जारी है। इस बीच आज सुबह 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। प्रशासन ने यात्रियों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के कलाकार हैं भरतलाल और साथी और रीता देवी। पहले सुनते हैं भरतलाल और साथियों से ये लाचारी।
2: कहीं से झोपड़ी

0: भरत लाल और साथियों के गाए अभी आप सुन रहे थे लाचारी। अब आइए सुनते हैं भरत लाल और साथियों से ही गंगा गीत।
1: अरे महिमा तुहार जाने, ए महिमा तुहार जाने,

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। अब आइए सुनते हैं रीता देवी से ये देवी गीत।

0: रीता देवी के गाए इस झूमर के साथ ही कार्यक्रम लोक माधुरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे संग्रहालय से लीजिए सुनिए आकाशवाणी प्रयागराज के पूर्व प्रोड्यूसर केशव चंद्र वर्मा से डॉक्टर जीवन लाल गुप्त की भेंट वार्ता।
1: केशव जी नमस्कार।
2: नमस्कार भैया, नमस्कार।
1: कैसे हैं आप?
2: नहीं, मैं अब ठीक ही ठाक चल रहा हूँ। बस लेकिन चल रहा हूँ।
1: आज देखिए इतना अच्छा लग रहा है और मुझे तो लग रहा है कि आपके सानिध्य का ये वर्तमान क्षण मैं हमेशा के लिए पकड़े रखूं, कभी अतीत न बने। कितना कुछ सारा आपने लिखा रेडियो पे, एक से एक उत्कृष्ट आपने प्रोग्राम किए और आज ये सौभाग्य मिल रहा है हमारे श्रोताओं को कि आपके स्वयं के अनुभव वो आप सुनना चाहते हैं। तो मैं पहली बात ये पूछना चाहूँगा कि केशव जी, जिस समय आपने रेडियो की नौकरी स्वीकार की 1950 के आसपास लगभग, तो उस समय जितने भी साहित्यकार थे, पंत जी थे और भगवती बाबू थे, सर्वेश्वर थे,
2: बहुत लोग थे,
1: केवल निराला को छोड़ के सभी लोग आकाशवाणी के नौकरियों में आए, लेकिन सभी ने धीरे धीरे करके नौकरियां छोड़ दी, लेकिन आप ही एक ऐसे व्यक्ति रहे जो समत लेखन कर्म करने के साथ साथ ये रेडियो की नौकरी भी करते रहे। ये इसका क्या रहस्य है?
2: इसका कोई रहस्य जैसी वस्तु तो है नहीं।

0: सिर्फ ये है कि मैं बचपन से ही रेडियो माध्यम की तरफ मेरा बहुत आकर्षण था, और मैं बराबर ये सोचा करता था कि ये रहस्यमयी जो दुनिया है, क्या मैं इसका एक अंश बन सकता हूँ कि नहीं। फिर वो बात आई गई हो गई, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पंडित सुमित्रानंदन पंत वहाँ जब एडवाइज़र हो करके अपॉइंट हुए रेडियो में,
1: जी
0: तो उन्होंने मुझे फैज़ाबाद, जहाँ कि मैं एक कॉलेज में अध्यापक हो गया था एमए करने के बाद, उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिख करके और बुला लिया कि आओ, तुम्हारा यहाँ काम है और रेडियो में तुम आकर के काम संभालो। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ और फौरन चला आया। इस तरह बिना किसी अर्जी और बिना किसी इंटरव्यू के मैं रेडियो में एक नौकरी पा गया। और यहाँ आकर के, चूंकि मैं उन दिनों बहुत सारी अवधी कविताओं लिखा करता था, कविताएं,
1: हाँ
0: तो मेरी किताब भी एक छपी थी, किताबें मेरी दो तीन थीं उस वक्त।
1: उस वक्त तक
0: तो
1: आ चुकी
0: हाँ,
1: थी।
0: तो पंत जी ने उसके कारण से मुझको
1: हाँ
0: कहा कि तुम देहाती प्रोग्राम चलाओ। तो
1: अच्छा
0: मैंने कहा कि पंत जी, देहाती प्रोग्राम तो मेरा कोई अनुभव नहीं है देहाती प्रोग्राम का। तो उन्होंने कहा, सब अनुभव अनुभव हो जाएगा, कुछ नहीं, चिंता मत करो। तो मैं, एक तो वो प्रोग्राम मेरे जिम्मे आ गया, और एक प्रोग्राम उन्होंने कहा कि दोपहर में एक, हम लोग इतवार के दिन तो चैनिका नाम से एक छोटे छोटे हास्य रस के नाटक, झलकियाँ, ये सब करते थे। वो भी उन्होंने, चूंकि मैं हास्य व्यंग का लेखक तब तक एक मशहूर हो चुका था, तो उन्होंने वो भी मेरे मत्थे लगा
1: लोमड़ी
0: दिया।
1: का मांस तब तक आ
0: हाँ,
1: चुका था,
0: कई कई
1: खिचड़ी के
0: चीज़ें।
1: गुलाम आ
0: हाँ,
1: चुका था।
0: तो हाँ,
1: हाँ
0: तो किताबें मेरी आ ही रही थीं और बराबर आती रहीं। तो पंत जी ने मुझको अपना वो सब सौंप दिया। इस तरह से मैं रेडियो में आ गया।
1: अच्छा, एक
0: तो
1: बात यहीं पे बताइए आप कि पंत जी ने तो आपकी लोक कला की प्रतिभा को भी देखते हुए कहा कि तुम आप ग्रामीण कार्यक्रम संभाल लीजिए किसानों के लिए, लेकिन आपने न कभी हल पकड़ा, न बैल पकड़ा, न खरीफ जानी, न जायद जानी, कब कीड़ों को बीमारियां लगती हैं, खुरहा रोग क्या होता है, और आप सुचारू रूप से वो प्रोग्राम भी चलाते रहे, ये भी तो एक जिज्ञासा की बात है कि नहीं?
0: ये भैया ऐसा है कि जब मैंने एमए में जो पास किया था, उसमें रूरल इकोनॉमिक्स भी मेरा एक सब्जेक्ट था,
1: अच्छा
0: तो उसके कारण मुझे जो बेसिक ज्ञान था गांव का और उत्तर प्रदेश के गांवों का, वो तो मुझे काफ़ी ज्ञात था। उसके साथ साथ मैंने, जब मैं इस प्रोग्राम में आ ही गया, तो मैंने तमाम तरह की जो इसके कृषि संबंधी ज्ञान
1: ज्ञान
0: विज्ञान
1: था।
0: था, उसका एकदम बिल्कुल
1: ये
0: ऐसा ऐसा ज्ञान प्राप्त किया पढ़ लिख करके, कि मैं किसी
1: नहीं
0: भी
1: तो
0: किसान से और या किसी भी उसके अंदर जो नौकरी करने वाले लोग थे, उन सब से काफ़ी आगे था, क्योंकि
1: ये
0: मुझे
1: तो
0: उनकी किताबें और उनकी वार्ताएं मुझे काटनी छाँटनी
1: इसका तो
0: पड़ती
1: मैं
0: थी।
1: साक्षी हूँ केशव जी।
0: हाँ
1: देखिए, मैं भी आपके
0: हाँ
1: साथ
0: हाँ बिल्कुल।
1: कंपेयरिंग में और कार्य करता रहा, और मैं देखता था कि जब पानी बरस रहा होता था तब आप प्लानिंग कर रहे होते थे जाड़े की, और जब जाड़ा चल रहा होता था तो आप ये देखा लिखा देखा करते थे किसानों से, भाइयों लू से कैसे बचा जाए,
0: हाँ
1: हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कैसे सूखे से बचा
0: क्योंकि
1: जाए।
0: हाँ, देखिए, मैंने रेडियो में, जो मैं आया, तो अब जब मैं रेडियो से रिटायर हुए, 15 वर्ष मुझको हो गए, तो मैं बराबर सोचता हूँ, सिंहावलोकन जब जीवन का करता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं एक सही आदमी न बन पाता अगर रेडियो की नौकरी में मैं न आता, क्योंकि
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: ये इस बात को तो आप फिर
0: नहीं,
1: रेखांकित करके बताइए,
0: हाँ, क्योंकि
1: क्योंकि केशव जी कोई भी संस्थान जहाँ पर भी कोई नौकरी करता है, वो संस्थान उसको हमेशा ये गर्व रहता है कि मैंने यहाँ पे अपना खून पसीना दिया, मैंने अपना सारा जितना जीवन था और जितना मेरी ऊर्जा थी युवावस्था की, वो सब मैंने इस संस्थान को दी, लेकिन मुझे इस कार्यालय ने क्या दिया? उसके विपरीत आप ये कह रहे हैं कि आपको रेडियो ने बहुत कुछ दिया, तो इसको
0: ऐसा है कि वो कोई ऐसा इकट्ठा करके मुझे पूंजी नहीं सौंप दी गई कि लीजिए, आप थैली ले जाइए। लेकिन हुआ ऐसा कि मैं रेडियो में आया, तो

0: हिंदी साहित्य के जितने भी बड़े बड़ी विभूतियाँ थीं, कभी पंत जी के नाम पर, कभी इस तरह से कि उनका प्रोग्राम हो रहा है, वो सब लोग आते रहे। और हमारे कमरे में ही जहाँ मैं बैठता था पंत जी के साथ, एक छोटी सी मेज़ हमारी वहाँ लग गई थी, तो वहाँ पंत जी बैठते थे, मानव जी बैठते थे और मैं बैठता था।
1: अच्छा,
0: बाद
1: अच्छा।
0: में जब हरिवंश राय बच्चन जी भी प्रोड्यूसर हुए हिंदी के, तो वो भी वहीं बैठने लगे।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह से, और जो हिंदी के तमाम मूर्धन्य विद्वान लोग थे वो सब आते थे, तो घूम फिर करके उनके पास आते ही थे, पंत जी के पास। मैं भी उनको दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था मुझे भी। तो ये तो एक हुआ हिंदी साहित्य की बात। उसके साथ साथ ये भी हुआ कि म्यूज़िक के, संगीत का मेरा दूसरा जो क्षेत्र था, उसके भी जितनी विभूतियाँ थीं और जितनी प्रतिभाएँ थीं, क्योंकि उन दिनों ऐसा था कि इलाहाबाद रेडियो केंद्र जो था वो लखनऊ केंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन था, कोई था ही नहीं। यानी पटना तक, इधर भोपाल तक, इधर बनारस वनारस सब जितना लेते हुए कोई और दूसरा केंद्र था ही नहीं। तो जहाँ जहाँ रेडियो स्टेशन थे भी, वो सब हमको रिले करते थे। तो इलाहाबाद से जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते थे वो बहुत ही अपने सहज ही रूप में अखिल भारतीय प्रोग्राम हो जाया करते थे। तो ये जो
1: वैसे भी सारी विभूतियां यहाँ,
0: हाँ, वो तो एक बात हुई, लेकिन उसके कारण उसका पूरा जो स्वरूप बनता था वो अखिल भारतीय स्वरूप बनता था। तो ये तो आप समझिए कि लगे हाथ मुझे मिल गया। तो यही मैंने कहा कि अगर साहित्य और संगीत और कलाएं मनुष्य को संपूर्ण बनाती हैं, तो इसका भरपूर फायदा या लाभ मुझे अपने कैरियर में रेडियो स्टेशन ने दिया, इसलिए मैं उसका बहुत ऋणी हूँ।
1: ये हाँ। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई किशोर जी, क्योंकि हर संस्थान देता है किसी न किसी रूप में। अब ये ग्राहित के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको ग्राही कर लेता।
0: हाँ,
1: आपने उसमें से भी ग्राही किया अपने।
0: उसके कई कारण थे। हाँ। असल में मैं अब जो उसकी व्याख्या करता हूँ अकेले में बैठ करके, तो मैं समझ पाता हूँ कि मैंने किस तरह से अपने को संयोजित किया कि उस पूरी घेराबंदी में मैं अपने लिए जगह बना सकूं। क्योंकि रेडियो में एक जो प्रचार का स्वरूप था वो तो था ही था, लेकिन मैंने किस तरह से अपने आप को अलग ऐसी जगह में इकट्ठा करके देखा कि क्या मैं इसमें से अपनी अभिव्यक्ति का कोई माध्यम निकाल सकता हूं कि नहीं। तो ख़ास तौर से देहाती प्रोग्राम को लेकर के, रेडियो का जो रूरल प्रोग्राम था, हैं, जिसका कि नामकरण अब पंचायत घर हो गया था, उसमें मैंने ये देखा जांच पड़ताल करके कि दो माध्यम, दो विधाएं हमारे बहुत अनुकूल पड़ रही हैं। एक तो ये था कि हम रेडियो के माध्यम से बाहर की झांकियां ला ला करके और ध्वनि माध्यम से उसको अपने सारे श्रोताओं को दें, इनको
1: मतलब ओवी रिकॉर्डिंग।
0: हाँ, वो जी हाँ, उसको रेडियो की भाषा में ओबी ही कहते थे, क्योंकि आउटसाइड ब्रॉडकास्ट जो है, ये हमको लगा कि ये बड़ा सशक्त माध्यम है, इससे लोगों का जो रुचि जो है, उनकी अभिरुचि, वो भी बढ़ती है।
1: तो इसकी परंपरा भी आप ही के समय से?
0: हाँ, कहना चाहिए, यानी क्योंकि उन दिनों रिकॉर्डिंग की इतनी सुविधा थी नहीं, बड़ी बड़ी मशीनें होती थीं, उनको ले ले करके जाना और भटकना, ये अपने आप में एक पराक्रम था। और दूसरा माध्यम मुझे ये लगा कि इसी रेडियो के द्वारा जिसका बहुत सशक्त इस्तेमाल किया जा सकता है, वो था संगीत रूपकों का, कहना चाहिए, यद्यपि मैं उसको संगीत रूपक नहीं मानता हूँ, मैं उसको संगीतिका मानता हूँ।
1: अच्छा।
0: क्योंकि इसमें भी बड़ी गुंजाइश थी कि संगीत के द्वारा
1: बादल हम, राग आपने बनाया।
0: हाँ जी हाँ, बादल राग तो बहुत प्रसिद्ध हुआ, निराला की कविताओं पर था। उसके अलावा भी मैंने कई एक ऐसे संगीतिकाएँ की, सीता के ऊपर एक संगीतिका थी बड़ी प्रसिद्ध हुई भोजपुरी में, मोती बीए की लिखी हुई,
1: जन्माष्टमी के ऊपर,
0: हाँ वो भी किया, और नज़ीर अकबर आबादी की रचनाओं पर। इस तरह के हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, अब उनका गिनाना भी संभव।

0: नहीं है, लेकिन ये दोनों माध्यम जो थे इन्होंने हमको बड़ा कहना चाहिए शक्ति दी,
1: जी
0: और अभिव्यक्ति जो है
1: जी
0: मेरी बहुत बढ़िया इसमें
1: अच्छा
0: रही।
1: केशव जी, एक बात और बताइए कि अधिकांशतः ऐसा हुआ कि जो लोग जिस कर्म में भी थे, वो कर्म की वजह से उन्हें नौकरी भी मिली, सांस्कृतिक कर्म से उन्हें नौकरी मिली, चाहे रंगकर्मी हो, लेखक विशेष रूप से, और जैसे ही रेडियो में वो व्यक्ति आया, उसका वो लेखन छूट गया, या उसका वो रंगकर्म छूट गया, या वो उसका संगीत पक्ष छूट गया। आप ही एक ऐसे व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपने रेडियो के दौरान काल में लगभग 50-52 पुस्तकें आपने लिखी, और उसके बाद अभी भी हमारे ख्याल से 10-12 पुस्तकें तो उसके आपके अवकाश ग्रहण करने के पश्चात आ गई हैं। तो ये कैसे संभव हो सका? ओबी भी करते थे आप?
0: ये हाँ, ये
1: हाँ
0: मैं बताता हूँ।
1: हाँ
0: ये देखिए, ऐसा हुआ कि इसमें ही आपको थोड़ी सी मेरे बुद्धि की चतुराई दिखाई पड़ेगी कि मैंने, चूंकि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मैं बहुत एडवांस में काम करता था,
1: प्लानिंग
0: इसलिए मेरे पास यानी तुलनात्मक रूप से और लोगों के बजाय काफ़ी फुर्सत रहती थी, क्योंकि मुझे
1: चूंकि
0: चिंता नहीं होती कि आज क्या
1: आज क्या
0: होगा।
1: होना है,
0: आज जो होना है वो मेरी अलमारी में बंद है,
1: हाँ
0: वो है, सब ठीक
1: वो
0: है।
1: रिकॉर्डिंग
0: हाँ,
1: है
0: द
1: चाहे।
0: रिकॉर्डिंग हो, जो भी है, उसका समस्त सामग्री मेरे पास थी, तो उसकी मुझे चिंता ही नहीं होती थी।
1: लेकिन जो
0: तो
1: लाइव प्रोग्राम होता था आपका, तो
0: हाँ,
1: लाइव
0: तो
1: होता था।
0: लाइव होता था,
1: हाँ
0: लेकिन उसमें जो हमारे सहयोगी लोग थे, तो
1: हाँ
0: उसमें एक तो आप ही थे, जीवन लाल
1: हाँ बताइए
0: युक्तिभर
1: थे।
0: दीक्षित थे, कैलाश गौतम थे, नरेश मिश्र थे,
1: हाँ
0: इन लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग किया, और मैं इन लोगों का बहुत ऋणी भी हूँ कि इन लोगों ने खूब हमारी मदद की प्रोग्रामों को बनाने में।
1: अरे वो
0: लेकिन अब मैं क्यों ऐसा, मुझे फुर्सत का मैं जो समय कह रहा हूँ उसमें
1: हाँ
0: क्या किया,
1: ये बताइए।
0: तो फुर्सत में मैंने ये किया कि ऑल इंडिया रेडियो की जो लाइब्रेरी थी, और
1: अच्छा
0: मेरा ख्याल है कि एक ज़माने में हमारे यहाँ की लाइब्रेरी बहुत प्रसिद्ध थी,
1: बहुत
0: उसमें
1: प्रसिद्ध है
0: तमाम जो रेयर
1: ये।
0: किताबें
1: हाँ
0: हैं
1: हाँ
0: वो थीं।
1: ये तो मैंने भी अनुभव
0: हाँ,
1: किया
0: तो
1: है।
0: मैंने वहीं अपने फुर्सत के वक्त में सारे वेद पढ़ डाले, उपनिषद पढ़ डाले, पुराण पढ़ डाले,
1: वाह
0: हिंदी साहित्य की जितनी भी नई नई किताबें थीं, पुरानी किताबें थीं,
1: हाँ
0: सब पढ़ डाला, और न केवल पढ़ डाला बल्कि उनके नोट्स बना बना के मेरे पास वो डायरियों में अब भी मौजूद हैं। तो
1: ये
0: वो
1: तो
0: सारी किताबें मेरे
1: हाँ
0: पास एक तरह से अब सिमट
1: संजोई
0: आई हैं, मेरी मुट्ठी में हैं। तो
1: वाह
0: मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं किसी उपनिषद का हवाला जब देने लगूँ तो ये बताऊँ कि ये फलाने में
1: हाँ
0: है और ऐसा है,
1: वो
0: उसमें
1: सब
0: ये
1: आपके
0: दिया हुआ
1: पास
0: है।
1: नोट है।
0: हाँ, तो वो उसका इस्तेमाल मैंने ये किया, उसका जो एक परिणाम हुआ, कहना चाहिए दूरगामी परिणाम और दुष्परिणाम कह लीजिए आप, कि मेरे कमरे में और मेरी मेज़ के आसपास ऐसे मेरे तमाम सहयोगियों का जमघट लगने लग गया जो इन विषयों में रुचि रखते थे और मुझसे इसके बारे में जानना चाहते थे कि नया क्या है। जैसे
1: हाँ
0: कि विसंगति का नाटक, एब्सर्ड प्लेस, इसमें बहुत कम लोगों को पता था, जबकि मैं आईनेस्को का पूरा पढ़ चुका था, वहाँ बहुत कम लोगों को मालूम था कि मैंने हेमिंग्वे की क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये नतीजा होता था कि वो लोग इकट्ठा हो जाते थे, अब उसमें चाय वाय ये सब तो चलती
1: ये
0: थी।
1: भी देखिए, एक
0: हाँ,
1: ये बड़ा
0: अच्छा,
1: रहस्य ही है कि जो ठहाके आपके कमरे के बाहर आते थे, तो बड़ी दूर दूर बाउंड्री वाल तक कभी छक्का होता था तो बाहर निकल
0: हाँ,
1: आता था,
0: कभी कभी
1: और सारे साहित्यकार चाहे जिस रिकॉर्डिंग के लिए आए, वो पहुंचेंगे जरूर आपके कमरे।

0: कभी छक्का होता था तो बाहर निकल आता था,
1: कभी कभी।
0: और सारे साहित्यकार चाहे जिस रिकॉर्डिंग के लिए आए वो पहुंचेंगे जरूर आपके कमरे में, कहिए केशव जी क्या हो रहा है।
1: जो है सब उनकी कृपा थी, लेकिन ये था कि वो ठहाके जरूर ऐसे हो जाते थे कि मेरे स्टेशन डायरेक्टर जो उनका कमरा सामने ही था तो वो कभी कभी उनका चपरासी आता था ये कहने के लिए कि जरा धीरे जरा धीरे, तो हम सकुच जाते थे, हम कहते थे कि अब क्या करें, बातें ऐसी होती थी कि वो हो जाता था।
0: एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ही बार आप ही ने बताया था कि सच सच बताऊँ कि झूठ झूठ, कि कोई आपसे पूछा गया कि साहब आप यहीं पे क्यों रहना चाहते हैं, आप तरक्की पा लीजिए, आप प्रोड्यूसर हो जाइए, आप चीफ प्रोड्यूसर हो जाइए, आप कश्मीर चले जाइए और साउथ चले जाइए, तो आपकी कितनी तरक्कियाँ हो जाएंगी, तो आपने वो क्या सच सच झूठ झूठ बताया था वो जरा
1: नहीं बताया। नहीं वो ऐसा था, एक इंटरव्यू हुआ तो हमारे डायरेक्टर जनरल ने हमसे पूछा कि भाई आप तो नाटक में भी रुचि रखते हैं, संगीत में भी रुचि रखते हैं, साहित्य में भी रखते हैं, पर आपने देहाती प्रोग्राम का प्रोड्यूसरी होना क्यों स्वीकार कर लिया है और क्यों आप चिपके हुए हैं, और आपको हमने दो दफ़े दूसरी है पोस्ट किया तो आपने रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि नहीं हम देहाती प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे,
0: ये बात
1: तो क्या कारण है। तो पी वी कृष्णमूर्ति साहब थे तो उन्होंने पूछा मुझको अकेले में बुला, तो मैंने कहा सर मैं झूठ झूठ बताऊँ कि सच सच, तो उन्होंने कहा दोनों बताओ, पहले झूठ झूठ बताओ फिर सच सच बताओ। तो मैंने कहा झूठ झूठ तो ये है कि देहाती प्रोग्राम ही संसार का सर्वोच्च प्रोग्राम है और देहाती प्रोग्राम के ही माध्यम से देश की उन्नति हो सकती है और देहाती प्रोग्राम से ही संसार का उद्भव है। और तो हंसने लगे, कह लेगा अच्छा ठीक है अब सच सच बताओ। हमने कहा सच सच ये है साहब कि मैं इलाहाबाद छोड़ के जाऊँगा नहीं कहीं,
0: ये बात हुई ना।
1: एक बात उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा इसलिए क्योंकि मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, मैं प्रोग्राम में इसलिए आ रेडियो में हूँ कि मेरी रोजी रोटी इससे चलती है और मैं सिंसियरली इसको चलाता हूँ, लेकिन मैं दूसरी जगह आप मेरा तबादला करेंगे तो मैं कह दूँगा मुझे वहाँ की बोली नहीं आती, मुझे वहाँ की भाषा नहीं आती। तो हंसे बड़े दोस्त, कहने यू आर ए नॉटी बॉय बट आई एम हैप्पी यू विल रिमेन हियर, अब तुम यहीं रहोगे। तो मैं ये तो झूठ झूठ और सच सच की बात है। आपको एक दो और चीज़ें मैं बताता हूँ, अब तो ज़रा लंबा है मेरे पास क्योंकि मैं रेडियो का ऐसा एक कार्यकर्ता रहा हूँ कि लगभग मैंने ज़िंदगी के 35 वर्ष पुराने वहाँ गुजारे हैं, तो वो मुझसे पुराना कोई वहाँ का आदमी शायद मुश्किल से मिलेगा। तो ये एक बार हम लोग ओबी की बात मैंने आपसे कही, तो एक ओबी में तो हम गए ऐसी जगह सोन पर, तब कोई पुल नहीं था, मिर्ज़ापुर दुद्धी में, हाँ तो वहाँ जाना था, आदिवासियों की रिकॉर्डिंग हमें करनी थी, तो हमारे साथ का कोई जंगल में फंस गए, सोन नदी बीच में पड़ती थी, उस पार जाने का कोई साधन नहीं था, एक इंजीनियर था मेरे साथ लड़का सा, तो वो इसने कहा कि ये पटरा पटरा दिखाई पड़ रहा है, मैं चला जाऊंगा इस पर पैर रख के उस पार और फिर उस पार से नाव ले आऊँगा। तो हमने उनका जाओ भैया, तो वो गया, तो जब उधर के मल्लाहों ने उसको देखा तो कहा कैसे आए हो तुम इधर, तो उसने कहा यही पटरों पर पैर रख के आ गया, तो उन्होंने माथा पीट लिया, कहा ये पटरे नहीं है बेटा ये घड़ियाल हैं, और घड़ियालों पर वो पैर रखता हुआ उधर चला गया। तो बाद में नाव वाव लेकर के आया और इस प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़े तो हमारी जीप के सामने एक बाघ कूदने लगा। अब बाघ कूदने लगा तो दिल दहलने लगा, लेकिन अब पार कर गए, जीप थी तो ऐसा निकल गए। एक गंगा जी पर हम लोगों ने प्रोग्राम किया तो वहाँ गए, तो वहाँ गए तो जहाँ जाना था वहाँ तक एक छोटी सी पगडंडी थी और बारिश के कारण पहाड़ जो है वो टूट टूट के गिर रहा था, तो अब हम कैसे उसमें पैर रखें क्योंकि एक तरफ तो हिमालय पर्वत और एक तरफ अथाह गंगा जी नीचे, तो सबने कहा सरका, तो फिर जय जय सियाराम है, तो हमने कहा चाहे जौन हो हम जाएंगे उस पार।
0: गए, रोमांचकारी अनुभव भी हुए ओवी में। केशव जी ऐसा बताइए कि सभी को एक बार नौकरी छोड़ने की इच्छा होती है, आपको क्या कभी नहीं हुई?
1: नहीं, मुझे इसलिए नौकरी छोड़ने की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं दिखाई पड़ी क्योंकि मुझे लगा कि जो जो मैं चाहता हूँ वो तो सब मुझे प्राप्त हो रहा है।

0: ये क्या करना है,
1: हाँ
0: नौकरी छोड़ करके भी लिखना है और नौकरी में रहते हुए भी लिखना है, नौकरी छोड़ करके भी मुझे इन्हीं सब विषयों में रहना है, क्या संगीत है क्या है साहित्य। तो जब ये सब मुझे अपने सरीहन प्रत्यक्ष मिल रहा है भगवान की कृपा से, तो मैं क्यों जाऊं?
1: केशव जी सुनिए सुनिए, ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये देखिए, आपका बहुत ही एक जीवंत पक्ष संगीत छूटा जा रहा है, इसमें भी आपने बहुत कुछ काम किया है, आपने पुस्तक भी लिखी है ना, संगीत समझने की कोशिश और मन।
0: हाँ, ऐसा है जीवन,
1: हाँ,
0: कि संगीत पर बहुत काम किया, लेकिन ये सब कहना चाहिए कि ये सब उन विभूतियों का प्रभाव है जो रेडियो स्टेशन आया करते थे। अब उसमें बहुत सारे लोग थे ऐसा जिनसे कि मेरा इतना घरेलू संबंध हो गया था कि वो हमेशा मेरे पास आए, जैसे रसूलन बाई थी, तो उनका मतलब वो गाने के लिए मशहूर थी, बनारस से आती थी, तो वो हमेशा आ करके मेरे कमरे में पर्दा हटाया और झांका और कहें कि कहा बचवा, आपकी अपने देहाती प्रोग्राम में हमका कजरी न गवो बो। तो हमने कहा अरे क्या बात है, आप कर रही, आइए आइए आइए, आज तो श्योर आपका ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। तो ये जो उनका वो था, फिर उसके बाद अपने संस्मरण सुनाना उनको कि कहाँ था क्या था कैसा था, तो मैं उनको ले जाता था, चाय वाय पिलाता था। अच्छा, हम लोगों के साथ सब लोग थे, तो हम लोग यानी इस तरह के कितनी घटनाएं।
1: एक रूप और बस उसके बाद हम विदा देंगे आपको। देखिए, हमारे जो रेडियो के ग्रामीण श्रोता रहे हैं वो आपको बंसी के रूप में जाते हैं, जानते हैं खूब, और मुझे भी परसू लाला के रूप में जाते हैं। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ और आप कृपया वो वाणी भी सुना दीजिए, कहो भैया। अरे वाह बंसी भैया, क्या हाल चाल है।
0: हाँ, ये था इसका तो इसका जो सबसे एक, एक एक सबसे जीवंत उदाहरण हुआ कि मैं पहुंचा गांव में रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उन लोगों ने छूटते ही ये कहा कि हाँ सी के बड़ा स्वागत सत्कार किया। हम लोग सब सूट वूट पहने थे, जाड़े के दिन थे, तो उन्होंने कहा कि सब जने तो आयो, बंसी भैया के नहीं लाओ। तो हमारे साथ जो और लोग थे उन्होंने कहा आए तो हैं, कहीं कहाँ हैं, कहीं कहाँ खड़े, कहीं ना है ये ना, वो जो जो हारमोनिया कहते हैं, जो कहते हैं कि तुहरे कहे पर कही आवत है, वो कहाँ है। तो हम हंस गए, हमने कहा कि मेरी भाषा इनके आड़े आ रही है, क्योंकि भाषा का जो रूप था रेडियो में वो रूप कहीं और साहित्य वाहित्य में मिलता नहीं। तो फिर उन्होंने हमसे कहा,
1: उन्हीं की भाषा में संबोधन किया वो।
0: हाँ, फिर मैंने कहा भैया हम ही हैं बंसी, जौन तुमका कहे को हमसे कह लियो, हम ही तो को तोरे कहे पर हमका कह आवत है कि हमका हिंदी में बोले चाहिए रहा तुमसे, हम अंग्रेजी में बेकारे बोल गए। तो कहीं हंसे, कहीं हाँ हाँ, अब आप बैठो, अब मठा पियो और ये पियो वो पियो। तो ये भाषा का एक बड़ा भारी आकर्षण होता है कि आप खट से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, अगर भाषा नहीं है तो आप कुछ।
1: लीजिए, अब केशव चंद्र वर्मा साहब और हमारे बड़े भाई और हमारे इतने प्रिय स्नेहीजन, अब हम आपको धन्यवाद देते हैं तहे दिल से, और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: चलिए, धन्यवाद।
2: हमारे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पूर्व प्रोड्यूसर केशव चंद वर्मा से डॉक्टर जीवनलाल गुप्ता की भेंटवार्ता। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। फिल्म संगीत एक ही कलाकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में, जिसमें आज बातें होंगी विद्या बालन की।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। विषय खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। सभी सुनने वालों को अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम फिल्म संगीत एक ही कलाकार में। वो कार्यक्रम जहां हम सिर्फ सितारों की चमक ही नहीं बल्कि उनके

संघर्ष की तपिश भी महसूस करते हैं। आज कहानी उस अदाकारा की जिसने हीरो के साये में नहीं बल्कि खुद की अपनी पहचान बनाई, जिसे बार बार कहा गया कि तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन उसने हर ना को अपनी ताकत बना लिया। जी हाँ, वो जो पर्दे पर आई तो कहानी बदल गई, अदाकारी ऐसी कि किरदार जी उठे। ये कहानी है विद्या बालन की।

Dani, Dani, Dani, Dani, Dani.

0: श्रोताओं, 1 जनवरी 1989 की वो तारीख थी जब केरल में विद्या बालन का जन्म हुआ। जन्म तो केरल में हुआ लेकिन परवरिश मुंबई में हुई, जहां से उन्होंने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। स्कूल के दिनों में ही विद्या एक्टिंग से जुड़ गई थी। करियर की शुरुआत में म्यूजिक वीडियोज और कमर्शियल विज्ञापन बनाए, कुछ टीवी शोज भी किए, लेकिन असली सपना था बड़े पर्दे का। लेकिन ये रास्ता उतना आसान नहीं था, क्योंकि विद्या बालन का माइंडसेट अलग था, जो हीरो बेस्ड परंपरा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था।
1: ला ला ला, हे हे हे,
0: और यही वो कारण था जिसका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन विद्या रुकी नहीं, और फिर आया वो मौका जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 2005, फिल्म आई परिणीता, पहली ही फिल्म में विद्या बालन की परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया। उनकी सादगी, उनकी आंखों की गहराई ने हर किसी को अपने आगोश में ले लिया।
2: अब ये सुनो,

ये वो फिल्म थी जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड विद्या बालन को मिला। उनकी पहली सफल कमर्शियल फिल्म थी राजकुमार हिरानी की लगे रहो मुन्ना भाई। विद्या ने लगातार 5 व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में देकर फिल्म इंडस्ट्री में मजबूती से अपने पैर जमा लिए थे। वो कौन सी फिल्में थी हम आगे भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी यह खूबसूरत गाना।

साल 2009 फिल्म पा, 2010 फिल्म इश्किया, 2011 में आई द डर्टी पिक्चर और 2012 नो वन किल्ड जेसिका और फिर कहानी। इनमें से द डर्टी पिक्चर वो फिल्म थी जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया, फिर वो फिल्म जहां कहानी ही हीरो थी। जी हां, फिल्म कहानी जहां एक गर्भवती महिला पूरे शहर को चुनौती देती है। इसके बाद आई फिल्म तुम्हारी सुलु, जहां एक आम गृहिणी की आवाज रेडियो पर गूंजती है।

राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार और सबसे बड़ी बात, दर्शकों का प्यार। विद्या ने साबित कर दिया कि अगर कहानी दमदार हो तो हीरो की जरूरत नहीं है। जी हाँ, साल 2012 में शादी प्रोड्यूसर सिद्धार्थ राय कपूर से, लेकिन शादी के बाद भी करियर के

जी हाँ श्रोताओं, आज के इस फिल्म संगीत एक ही कलाकार में हमने विद्या बालन की जिंदगी के बारे में बातें की, उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों के खूबसूरत गाने भी सुने और अभी गाने और भी सुनवाने हैं। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस संगीत यात्रा में हमने विद्या बालन के अभिनय के कई रंग देखे, उनकी फिल्मों के यादगार गीतों का आनंद लिया और ये देखा कि विद्या बालन ने हर किरदार में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और यही वजह है कि दर्शकों के दिलों में उनका एक खास स्थान है। यूं कह लें कि दिल में अपनी जगह पक्की कर ली है विद्या बालन ने।

तो ये थी कहानी एक ऐसी अदाकारा की जिसने बताया कि खुद पर भरोसा हो तो दुनिया की हर ना को हाँ में बदला जा सकता है। विद्या सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक सोच है। फिर मिलेंगे किसी और कलाकार और उसकी कहानी के साथ। दीजिए इजाजत अतुल यादव को, नमस्कार।

0: फिल्म संगीत एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे विद्या बालन की बातें। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: आकाशवाणी @90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: एहसास की धूप छाओ में, हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत प्रोग्राम फिल्म संकेत। श्रोताओं, फिल्म संगीत प्रोग्राम का सफर आप तय करेंगे अतुल यादव के साथ।

इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे उस साथी की जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है, खुशियों में मुस्कुराया है, दुखों में सहारा दिया है। खेतों से लेकर सीमाओं तक, शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक अपनी आवाज पहुंचाई है। वो है हमारा साथी रेडियो। रेडियो केवल एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि ये भावनाओं का पुल है। कभी दादी नानी की कहानियों के बीच बजते गीत, कभी क्रिकेट की कमेंट्री, कभी समाचार और कभी किसान कार्यक्रम। तो लगता है ना कि कहां से कहां तक हमको लेकर के चला आया हमारा ये प्यारा रेडियो।

श्रोताओं, समय बदल गया है, मोबाइल आ गए, इंटरनेट आ गया, लेकिन रेडियो की आत्मीयता आज भी उसी तरीके से है। रेडियो सुनते समय कल्पना जागती है, आवाज़ चेहरे से नहीं बल्कि दिल से जुड़ती है। यही वजह है कि रेडियो आज भी करोड़ों लोगों का भरोसेमंद साथी है, चाहे वो खेत में काम करता हुआ किसान हो या फिर रात की ड्यूटी पर तैनात जवान हो, लंबी यात्रा करता चालक हो या फिर घर के कामों में व्यस्त गृहिणी। रेडियो हर किसी के साथ चलता है।

श्रोताओं, हर किसी की जिंदगी में रेडियो से जुड़ी कोई ना कोई याद जरूर होती है। कभी किसी गीत को सुनकर पहली मोहब्बत याद आ जाती है, तो कभी बचपन का घर। कई रिश्ते रेडियो के गीतों के साथ और भी खूबसूरत बन जाते हैं। आपकी जिंदगी में रेडियो क्या महत्व रखता है, हमें बताइएगा जरूर। कहाँ बताएंगे ये हम लास्ट में बताएंगे आपको।

बिल्कुल सिर्फ ये गाने की लाइन नहीं है कि पल पल तुम दिल के पास रहती हो, बल्कि हर पल आपके सांसों में, आपकी धड़कनों के साथ रहती है ये रेडियो की तरंग। जी हाँ, रेडियो हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देता, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए रेडियो, नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए रेडियो, एजुकेशन चाहिए रेडियो, इंस्पिरेशन चाहिए रेडियो। आपदा के समय हो या फिर किसी नई सरकारी योजना की जानकारी, आपके पास हर पल है रेडियो। जी हाँ, रेडियो हमेशा सबसे भरोसेमंद माध्यम रहा है जानकारियों का, इसीलिए तो इसे कहते हैं कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करते, बल्कि हम इन्फोटेनमेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, रेडियो सुनने के लिए किसी महंगे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस सुनने वाला दिल चाहिए।

करता हूँ। समय बदलता गया, रेडियो की आवाज़ समय के साथ और भी परिपक्व होती गई। तकनीक बदली, माध्यम बदले, लेकिन आवाज़ का अपनापन कभी नहीं बदला। अगर आपके घर में भी आज कोई पुराना रेडियो रखा है ना, तो उसे फिर से चला कर देखिए, हो सकता है उसके साथ कोई पुरानी याद लौट आए। इसी उम्मीद के साथ कि संगीत और रेडियो हमेशा आपके जीवन में खुशियों के रंग भरते रहें, आइए सुनते हैं आज के प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने उनके नाम हम आपको बता दें। अंदाज, कटी पतंग, ब्लैकमेल, शोर और गोलमाल। और अब दीजिए इजाजत अतुल यादव को, नमस्कार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है। आकाश।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
3: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
2: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी

0: कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफिम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi posted a fresh video message on his Instagram handle last night, thanking everyone for the responses and positive suggestions received to his previous video, where he had announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में यानी 12:15 पर सुनिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का राग भीम पलासी में ख्याल गायन। 12:30 श्रोता सुनेंगे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश।

1:15 पर महिलाओं का अपना कार्यक्रम पनघट होगा, जिसमें ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी बीना सिंह की बातचीत, बचत समूह और आर्थिक आजादी। इसके साथ ही वे आनंद ले सकेंगी सुषमा मौर्य के गाए लोकगीतों का। ढाई बजे लोकगीत कार्यक्रम होगा, जिसमें कलाकार होंगे राम प्रसाद और साथी श्याम बाबू यादव और साथी और बाबूलाल दिवाकर। शादीकालीन सभा का आरंभ हम करेंगे धरती के गीत कार्यक्रम से शाम 5 बजे। कलाकार होंगे बरमदीन यादव और साथी। 5:15 पर रोजाना की तरह युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी होगा, जिसमें आज का आकर्षण आज की शाम आपके नाम, जो केंद्रित होगा शाहरुख खान पर। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर शाम 6:30 बजे, जिसमें आज सुशील चौरसिया से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा तैरना एक जरूरत, एक कला और नए आयाम। साथ ही ग्रामीण भाई आनंद लेंगे रघुराज सिंह यादव और साथियों के गाए लोकगीतों का। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज डॉक्टर चित्रंजन सिंह की वार्ता, डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि। सुगम संगीत कार्यक्रम 7:45 पर, जिसमें आज कौशिकी राय के गाए गीत सुनवाए जाएंगे। रात 8:15 सुनिएगा सेहत की बात, जिसमें आज डॉक्टर जीएस तोमर से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा स्वर्ण प्राशन एक जानकारी। इसके अलावा रात 8:30 सुनिएगा कार्यक्रम सबरस। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के संदर्भ में आपको सूचना दे दें। सबसे पहली सूचना इस प्रकार है, कोमल कुमारी, उम्र 24 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, एकहरा, मजबूत शरीर, सांवला रंग और चेहरा गोल है। ये 1 मई 2026 को शाम 4 बजे के आसपास 195 मालवीय नगर, थाना मुट्ठीगंज से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। श्रीमती शीला, पुत्री बिहारी लाल, निवासी 195 मालवीय नगर। अगली सूचना इस प्रकार है, रंजना तिवारी, पत्नी कुणाल तिवारी, उम्र 22 वर्ष, का 4 फीट 5 इंच, इकहरा बदन, गोरा रंग और लंबा चेहरा है। ये 11 जून 2026 को 2 बजे से 3 बजे के मध्य कोरखान का पूरा ग्राम से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। कुणाल तिवारी, ग्राम कोरखान का पूरा, थाना 12, जनपद प्रतापगढ़। इस वक्त की जो आखिरी सूचना है गुमशुदा व्यक्ति के संदर्भ में, इस प्रकार से है, अर्चना, पुत्री धर्मराज, उम्र 19 वर्ष, का 4 फीट 10 इंच, इकहरा शरीर, गोरा रंग और लंबा चेहरा है। ये 11 मई 2026 को रात 11 बजे अपने घर ग्राम रेहतू से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। धर्मराज, ग्राम रेहतू, थाना उतराव, जनपद प्रयागराज। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खा का राग भीम पलासी में ख्याल गायन।

में अभी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का राग भीम पलासी में ख्याल गायन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूँ मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी
1: मैम, रोशनी बोल रहे हैं। काम होती है।

0: जिला प्रतापगढ़ से।
1: जी, जिला प्रतापगढ़ से रोशनी जी हैं हमारे साथ। तो रोशनी जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं गाने के बोले मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है।
1: बड़ा ही बरसाती आपने गीत चुना है, झमाझम पानी से संबंधित ये गाना है। तो आपको
0: मैम, आप सावन का मौसम भी आ गया है,
1: हाँ,
0: बारिश भी हो रही है, तो हमको
1: बिल्कुल,
0: तो यही
1: बिल्कुल,
0: गाना बोल
1: आपने
0: रहे।
1: सही कहा है। तो भाई, सावन का ये जो गीत है, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, रोशनी जी की पसंद का है। तो रोशनी जी, किसी का नाम तो नहीं लेना आपने?
0: जी मैम, मेरी दीदी है दहिला मऊ प्रतापगढ़ से, शांति दीदी है, जीजा
1: जी
0: सुनील है, उनकी दो बेटी है आशीष सागर, आबिश सागर, और पूरे बेदुआ से है हमारी प्रीति दीदी है, शेखर जीजा है, और हमारे छोटे भाई बहन है सूरज कुमार है, संदीप कुमार है, मनदीप कुमार है, सुशांत कुमार है, छोटी बहन है पूजा, और आप है सभी सुनने वाले मित्र है, और हमारे मम्मी है, पापा है, बड़ी मम्मी है।
1: तो भाई, इतने सारे लोग जो हैं वो सावन का ये गाना सुनना चाहते हैं रोशनी जी, तो आइए सुनवा देते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते आदाब, मोहम्मद अयूब बोल रहा हूँ, चकिया घरारा संघ से प्रयागराज से। मैं जी
0: नमस्कार अयूब जी, वही हमारे बड़े ही पुराने श्रोता हैं और बहुत दिनों के बाद आज आपसे बात हो रही है। अयूब जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, बस रिमझिम बारिश का मौसम चल रहा है, उसी का एंजॉय ले रहे हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो गाना भी आपने खूब अच्छा सा चुना होगा, बताइए कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन, उसमें थी हेमा मालिनी जी,
0: जी जी
1: लता जी ने गाना गाया है
0: जी,
1: टाइटल सॉन्ग ही है गाना,
0: जी जी जी
1: तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं,
0: मेरे नसीब में तू है कि नहीं,
1: हम क्या जाने।
0: नसीब की बातें नसीब ही जाने, हम आप क्या जाने।
1: नसीब ही जानता है, नसीब में क्या
0: जी जी जी
1: बिल्कुल। नसीब में लिखा था कि प्रयागराज चैनल पे मेरा फोन लगने वाला।
0: वाह क्या बात है, तो देखिए लग गया आपके नसीब से लग गया, और हम आपको नसीब फिल्म का सुनवाने जा रहे हैं ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: आकाश मानी का जुनून दिल में रहता है हमारे हर पल, गंगा नदी के पास में घर है मेरा, जहाँ बहता है शीतल जल। नाम है मेरा राजेंद्र, गांव है पोस्ट गुतनी, तहसील कुंडा, जिला है प्रतापगढ़।
0: जिला प्रतापगढ़ से हैं राजेंद्र जी हमारे साथ। बहुत दिनों के बाद राजेंद्र जी की कविता सुनने को मिली है, तो राजेंद्र जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम
0: जी,
1: और गाने के बोल है महबूब मेरे।
0: मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना है
1: जी। मैं बहुत खूबसूरत गीत,
0: बहुत ही अच्छा गीत चुना है राजेंद्र जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी,
1: हम राकेश सिंह भैया मेजा प्रयागराज से बोल रहे हैं।
0: जी राकेश सिंह जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हमको गाना सुनवा दीजिए, अभी बताए जीवन एक संघर्ष।
0: जीवन एक संघर्ष फिल्म का कौन सा गाना? टाइटल सॉन्ग राकेश सिंह जी की फरमाइश है। तो राकेश सिंह जी, नाम तो नहीं लेने आपने?
1: नहीं, सभी श्रोताओं के लिए।
0: अच्छा, सभी श्रोताओं के लिए सुनना चाह रहे हैं, तो आइए सुनते हैं।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कौन से कॉलर हैं? हेलो, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं
0: जी। रोशनी जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम दाग फिल्म का।
0: दाग फिल्म का कौन सा गाना है?
1: अब सह मारू थे या बाबा मैंने तेरी बाह पकड़ ली।
0: राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी के अभिनय से सजी ये फिल्म पुरानी वाली दाग की आप बात कर रही हैं।
1: जी मैम।
0: तो इतनी पुरानी फिल्म का गाना आपने चुना है रोशनी जी, किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती इस पुराने गाने को पसंद करते हो?
1: जी हैं, दहिला मऊ प्रतापगढ़ से शांति जी हैं, जीजा सुनील हैं, उनकी दो बेटी हैं आशीष सागर, आबिश सागर, और पूरे बेदुआ से हैं हमारे पेटी जी हैं, शेखर जीजा हैं, और आप हैं सभी सुनने वाले श्रोता मित्र हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, छोटे भाई हैं सूरज कुमार, संदीप कुमार, मनदीप कुमार, सुशांत कुमार, छोटी बहन है पूजा और हमारी बड़ी मम्मी है।
0: आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: इस वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपाय से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने

0: the occasion. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra resumed today after remaining suspended for 6 days due to inclement weather conditions. The Yatris have been advised to strictly adhere to the advisories issued by the administrations for a safe pilgrimage. India's boxing campaign got off to a strong start at the Commonwealth Games in Scotland, with star pugilist Lovlina Borgohain securing at least a bronze medal after receiving a direct entry into the women's 75 kg semi-finals. Para powerlifter Jhandu Kumar opened India's medal account with a bronze in the men's heavyweight event, marking the country's first podium finish of the Games. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से ज्यादा के 125 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखने की तकरीब के मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि डबल इंजन की हुकूमत तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।
2: आज जब देश के अंदर युवाओं के मन में कुकसक बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वो अभिनंदनीय है और मैं इसका उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूँ। ये डबल इंजन की सरकार पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी, उसको हम जब्त भी करेंगे।
1: इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तहकीन में चाबियां, चेक और स्कूल बैग तकसीम किए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आज जालौन और आगरा में भी मुख्तलिफ असेंबली हलकों में 2105 करोड़ रुपए से ज्यादा के 552 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह संगे बुनियाद रखेंगे और मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के इस्तफादा कुंदगान में सर्टिफिकेट किट्स और चेक तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने कल एक मसौदे बिल को मंजूरी दी जिसमें फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी और पेपर लीक और इम्तिहान में बेजाब्तगियों के लिए सख्त सजा को यकीनी बनाया जाएगा। तवक्को है कि यह बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इस मामले पर पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि बिल की मंजूरी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के लिए कई अहम इकदाम कर रही है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने कल अपने पोस्ट किए गए वीडियो पर नौजवानों से मिल रहे मुस्बत मशवरे भेजने के लिए शुक्रिया अदा किया है। ये 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो है। तकरीबन 3.3 करोड़ अफराद ने ये वीडियो देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल मरकजी हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हिदायत दी है कि वो पेपर लीक के बाद इस्लाहात को लागू करने में होने वाली पेशरफ्त के बारे में तफसीली हलफनामा दाखिल करे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे ने कहा कि वो इस मामले की करीब से निगरानी करेंगे और इसके बाकायदगी से जायजा लेंगे। अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत से यह भी पूछा है कि वो इम्तिहानी अमल को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन मोड में मुंतकिल कराने के लिए क्या इकदाम कर रही है। केस की अगली समाअत 27 जुलाई को होगी। मरकजी वज़रा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के एक वफद से मुलाकात की। मिस्टर नड्डा ने कहा कि मुलाकात मुस्बत रही। उन्होंने कहा कि इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात के मुतालबात को गौर से सुना गया। जनाब नड्डा ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 अहम मुतालबात किए और इम्तिहानी पेपर लीक होने को रोकने के लिए कुछ इस्लाहात का भी मशवरा दिया है। दोनों मरकजी वज़रा आज दोबारा कॉकरोच जनता पार्टी के वफद के साथ बातचीत करेंगे। रियासती बीजेपी सदर और मरकजी वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमेशा नौजवानों को मफादात को जहन में रखा है। उन्होंने कहा कि नीट इम्तिहान के पेपर लीक की वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर बरवक्त कार्रवाई की और दोबारा इम्तिहान भी कराया गया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन सड़कों पर आने के बजाय ऐवान में इस मामले पर बहस करे।
3: युवा हमारा देश का भविष्य और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट और प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं पे फोकस किया है और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद तत्काल उस पर सख्त सख्त कार्रवाई भी की और बच्चों का भविष्य खराब ना हो जल्द से जल्द नीट का अच्छी तरीके से परीक्षा भी कराए लाखों परीक्षार्थियों को बात और हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सतर्क

0: युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत रहा है वैसा जो आपके पास सुझाव हो ताकि उसमें कानून बनावे नया ताकि आगे से फीफा जी ना।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर अपने मन की बात प्रोग्राम में आवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम की 136वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आने वाले कांवड़ यात्रा और दीगर त्यौहारों के सिलसिले में कल देर शाम एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर अकीदतमंद की हिफाजत सहूलत और एहतराम अवलियन तरजीहात है। वज़ीर आला ने कहा कि हम आंगी में खलल डालने अफवाहें फैलाने मिलावट करने हद से तजावुज करने इंतशार फैलाने या अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हिदायत की दी कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में गोश्त और शराब की दुकानें बंद की जाए और हर दुकान पर ऑपरेटर का नाम वाज़े तौर पर जाहिर होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि कांवड़ यात्रा अब रियासत के किसी एक इलाके तक महदूद नहीं रही, इसलिए हर जिले में इंतजामात पर तवज्जो दी जानी चाहिए। रियासत के कई अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से बाराबंकी में दरियाए घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महकमे मौसमियात ने अगले 5 दिनों तक रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों के कई अजला में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशन गोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम पनकट।

0: सरस्वती, अरे ओ सरस्वती, अरे बहनी सुनते नहीं हो, हम तो तोहसे कहा राम राम।
1: सत्या बहनी अपन घट सुने बैठी सब बहनी हरन कभी सत्या सरस्वती के
0: राम राम, राम। सरस्वती

0: तक के लिए टिकिया नहीं रहते, वो बदलत रहते हैं। परिवर्तन जीवन में बहुत अच्छी चीज होता है, ओके सकारात्मक अगर रूप से देखा है तो एक अलग ही रूप से आपके विकास की ओर ले जाता है, बसरते आप समय के अनुसार अपने आप के बदलत रहें, है ना। और एक के लिए देखा समय के हिसाब से जब आप बदलत रहतीन, जह तरीके से हम और आप मौसम के उमन आपन जोन बटे तालमेल बैठा ले थे, ठंडक में ठंडक के हिसाब से, गर्मी में गर्मी के हिसाब से, बरसात में बरसात के हिसाब से,
1: कुल मिलाकर तो देखा कि यह सत्य बहनी, हाँ, कि जीवन में ताल मिलाए बहुत जरूरी,
0: तालमेल बहुत जरूरी है। हाँ, और देखा आजकल के बदलते समय में है ना, तकनीकी का इतना ज्यादा विकास हो रहा है, और देखा जाए तो हर घर में हर सदस्य अब ऐसे इतना जुड़ गवा बटे की ऐसे अपने आप के अलग कर नहीं सकते, कहे की उनका काम प्रभावित हो लगा
1: है ना। बिल्कुल, का कहे चाह तू सत्या बहनी,
0: हमी कहत रहे तो आज अपने पनघटे पर बहनी से कसना यही पे बत कही कर ली जाए कि मोबाइल और सोशल मीडिया का अपने जीवन पर प्रभाव।
1: सत्या बहनी कितनी अच्छी बात तू उठाई हो चर्चा के बदे, है ना। देखा घरे घरे कौन घर ऐसा बा जहाँ मोबाइल नहीं बा, जहाँ सोशल मीडिया नहीं बा, है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो देखा तो आज ही तकनीक के युग में हम सबे ऐसे प्रभावित है, है ना।
0: बिल्कुल,
1: और जहाँ एकर अच्छा प्रभाव देखे के मिलत है वहाँ ही कुछ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे के मिलत है।
0: बिल्कुल सही कहती हो।
1: अब एकर संतुलित उपयोग कैसे करा जाए, यह हम सब के सोचे के है, जीवन में उतारे का है।
0: बिल्कुल सही कहती हो। देखा सरस्वती बहनी, पहले हम लोग उठत रहे तो सबसे पहले उठते मान जैसे बहनी हरे घर गृहस्थी में झाड़ू पोछा में लग जात रहें, हाँ बर्तन में, और जो पुरुष हैं वो उठते मान सबसे पहले अपन खटिया खड़ी के सीधे दुआरे जात रहें, हाँ गैया बछौरी को उठा के नान के पास बांधे, उनकर गोबर उठाओ कूड़ा उठाओ भी सब ये रहत रहा। मुना बदलाव कहाँ देखे के मिलता, आज आदमी सोई को उठाता तो सबसे पहले का करता था
1: वही अपन मोबाइल उठावा
0: मोबाइल उठावा था,
1: और यहाँ वहाँ के 10 संदेश पढ़ा था
0: और संदेश भेजा था,
1: हाँ संदेश भेजा था, और दिमाग जोन उठते एक शरीर में फुर्ती आवे की चाहत रहा, दिन के नया काम के शुरुआत करे बदे जोन ऊर्जा चाहत रहा, अब वो सब ऊर्जा तो यही मोबाइल में खपत हो जाता है।
0: बिल्कुल, है ना। और देखा यही लिए शरीर में थकान हमेशा आलस बना रहता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और देखा मोबाइल और सोशल मीडिया ऐसा चीज है ना सत्या बहनी, कि वो ऐसा पकड़ बनावा था चुंबक के तरह, कि एक चीज देखा तो लगा था एक ठे और देख ली, है ना, एक ठे और देख ला तो लगा था एक ठे और देख ली, बस
0: यही एक एक देखत देखत बहनी समय आपका कितना बीत जाता, समय का दुरुपयोग हो जाता, वो
1: एक घंटा दो घंटा कैसे बीत जाता
0: पता नहीं चलता,
1: तो पता ही नहीं चला था। और हमार समय अगर हम देखे कि एक दो घंटा में हम का संजोय है, का पाए है, तो तू देखबू कि शून्य।
0: बिल्कुल, लेकिन एक बात और है सरस्वती, अगर सकारात्मक रूप से देखा जाए तो सोशल मीडिया जो है कम समय में अधिक से अधिक काम भी कर लिया था, जैसे है ना, जैसे मान लो अगर कहूँ कि कोई बात पहुँचावे के है, संदेश पहुँचावे के है, जाए के कहे उसे अपने फोन से आप तुरंत पहुँचा दियो, कहूँ भैया के अगर मान लो पैसा अपने लड़का बच्चा परदेश में पढ़त है पहुँचावे के है ना, तो देखा एक मिनट में पैसा ट्रांजेक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है,
1: सुविधा है
0: मुना। और एक द्वारा देखा बच्चन के लिए शिक्षा का कितना अच्छा रास्ता खुल गया है कि बच्चे कम लागत में अच्छी शिक्षा उमन प्राप्त, जैसे पढ़ाई के लिए गहरी गहन कैसे
1: अध्ययन
0: अध्ययन कैसे करतीन, ओकरे साथ साथ जैसे स्कूल में कोनो अध्याय पढ़ावा गया है ओमन कोनो अगर आपके दिक्कत है तो वही अध्याय आप डाल के यूट्यूब पे कहो पे पाठ का नाम डाल करके आप पढ़ सकतीन, बच्चे देख सकतीन, तो वो अच्छे समझ में आते। मुना हर चीज का एक लिमिट होता, कहा थी ना, हाँ। कहा कि अधिकता कोनो चीज का बहुत नुकसानदायक होता,
1: कहे कि मतलब यह सत्य बहनी की देखा चाहे तो का व्यापार करे के हो, चाहे मनोरंजन करे के हो, है ना, चाहे आपन देखा जैसे कोनो अभी तू बतायो लेन देन के काम करे के है, तो ये सब चीज में तो देखा बहुत सहयोगी है ये तकनीक जोन बढ़ बाटे, है ना। तो ये जोन सहयोग आजकल के लड़कन बच्चन के देखा सत्य बहनी कितना तथ्यपरक उनकर ज्ञान हो जातवा, है ना, और कितना जल्दी जल्दी वो सब सीखत हैं, है ना। कमी कहाँ आई जात है कि खूब उनके पजरे सूचना तो बहुत है लेकिन सब्र नहीं है।
0: बिल्कुल, है ना। देखा और एक बात और है बहनी,
1: काहे कि देखा सत्य बहनी हम ये कहत रही दोहरों बात हम सुनत ही, लेकिन हम पहले ई बतावे चाहत रहे कि देखा ई जब से सोशल मीडिया और मोबाइल हाथे आए गए है ना तो सब कुछ झट से आए जाते देखा बैठे बैठे हम सब घरे सामान मंगाई लेती है ना तो जो
0: यही से जो बच्चन में संतोष की

0: भावना है,
1: वो खत्म हो
0: सब्र, हाँ,
1: जाती है।
0: धैर्य नहीं रख पाते हम।
1: बिल्कुल सही कहा तू।
0: और एक बात और है कि जैसे कोई भी चीज़ आप बताओ कि मंगाई लेनी चीज़ है, या
1: हाँ
0: देखा है एक गलत प्रभाव यह पड़ा था कि आपका आर्थिक हानि भी होता, मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन पैसा भेज दिन जाता और आ
1: हाँ
0: जाता है। ऐसे देखा, जब आप अपने हाथ से पैसा खर्चा कर रहे थे तो आपके अंदाजा लगा था अरे कितना पैसा
1: पैसा
0: खर्चा हो जाए,
1: खर्चा
0: है
1: होगी।
0: ना,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन वो खटाखट मोबाइल से चला जाता, पता नहीं चलता। जैसे आपका जोन बटे जरूरत से ज़्यादा खर्च भी हो जाता है।
1: हाँ
0: और देखा, सोशल मीडिया का प्रभाव सकारात्मक भी पड़ा था, नकारात्मक भी
1: नकारात्मक
0: पड़ा
1: भी
0: था।
1: पड़त है।
0: जरूरी है कि हम सब अगर अपने बच्चे के सुविधा दिए हैं, हाँ, तो उनके ऊपर नजर भी रखी,
1: बिल्कुल
0: कि दिन भर बच्चे मोबाइल लिए रहते हैं। वैसे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वाकई में दिन भर मोबाइल अपने पास नहीं छोड़ते हैं, एक को
1: नहीं।
0: मिनट के लिए
1: हाँ
0: मोबाइल,
1: अब बहुत
0: हाँ।
1: देखा सत्या बहनी, जैसे आप बतावत रहो कि नजर रखे के चाहिए। कभो कभो लड़कन के इतनी आदत पड़ जात है, इतनी आदत पड़ जात है ओकर कि अगर ओकरे पति उनके डांट दा कुछ बोल दा तो इतना नाराज हो ही जाते हैं उस
0: बिल्कुल
1: पे
0: बिल्कुल
1: कि देखा जो जरूरी काम बाटे वो छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो उनकर शारीरिक सक्रियता कम हो जाता है, खेले कूदे जाते नहीं, वही मोबाइल लेके सोशल मीडिया पे अपन बैठा रहते हैं।
0: और ओकरे साथ साथ देखा उनके आंखों पे भी एक प्रभाव पड़ता
1: प्रभाव
0: है ना।
1: पड़ते हैं।
0: और अगर आप देखा इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई अपने काम के लिए तो ठीक है, लेकिन हर समय करे से देखा बच्चों में चिड़चिड़ाहटपन भी आ जाता है, याददाश्त भी कमजोर हो लगा था बच्चन का, है ना, काहे
1: लड़का
0: कि
1: सुस्त होता है और
0: हाँ
1: मोटापा जैसे बीमारी भी बढ़त है
0: हाँ
1: भाई। देखा शारीरिक रूप से सक्रिय न रही,
0: हाँ
1: एक के जगह बैठी रही हुए, खाए के मिल जाए, हुए पिए के मिल जाए, तो जब हिल ही डुली ने तो का हुए, है ना।
0: बिल्कुल वही चीज़ है। कहे का मतलब हमारी है कि देखा हर चीज़ का अधिकता नुकसानदायक होता,
1: बिल्कुल
0: हर चीज़ का लाभ उठावाएं,
1: लाभ
0: लेकिन जोन बटे एक नियमबद्ध तरीके से।
1: बिल्कुल। और देखें कि कितना इस्तेमाल करब हमरे बदे बहुत ही जरूरी बा और कहाँ हमके रोक लगावे के चाहिए। और देखा सत्या बहनी कई तरह के साइबर अपराध भी सुने के मिलत है ना। जैसे तू पैसा के लेन देन के बात करत रहू तो कई ठगी भी हो जाते सुने के मिलत
0: बिल्कुल
1: है।
0: देखा, अगर जानकारी नहीं ना तो कभी मोबाइल से अगर क्यों ओटीपी आवता या ओटीपी मांगता तो
1: हाँ
0: बिना जानकारी के आप उपलब्ध न करावे उन्हें ओटीपी।
1: अब बहुत जने इतना चालाक होते हैं अपन निजी जानकारी निकलवाए लेते हैं, कौनो लिंक भेज दी ही, तो देखा बहुत संभार संभार के कदम बढ़ावे, है ना। ये सब जागरूकता होवे के चाहिए, ये सब समझ होवे के चाहिए कि देखा एमा बहुत चीज है लेकिन कैसे इस्तेमाल करे के है एका जानकारी बहुत जरूरी बा, है ना।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहती हो। और देखा हम लोग अपने पनघटे पर जब आज यह पर चर्चा कर लिए है ही कि मोबाइल और सोशल मीडिया का हमारे जीवन पे प्रभाव, तो हम तो देखा था ये प्रभाव बहनी अरे सकारात्मक भी है, लेकिन अगर जहाँ ध्यान नहीं दिया जाते तो नकारात्मक
1: नकारात्मक
0: भी
1: प्रभाव भी
0: है ना।
1: है।
0: तो प्रभावन के से प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, अनुकूल प्रभाव पड़े, एके लिए सारा हुनर अपने हाथ में बा। जरूरी बा अपने अंदर जोन बटे एक संयम ले आओ,
1: बिल्कुल
0: उस
1: सही कहा
0: संयम का
1: तू।
0: होना बहुत जरूरी है। ओकरे साथ साथ जब इतनी अच्छी अच्छी बात कही हो गई बा तो हमार मन करता टे कि सुषमा मौर्या से कसना इखनी नीक नीक झूमर सुन लिया जाए और अपने बहनी भरे भी सुन ले।
1: तो चला सुन लीन जाए।

0: गौनई सुन लिंगवा।
1: हाँ सत्यवेनी, बहुत ही बढ़िया गौनई तू सुनाई हो। अब चला हम तुका एक ठे बातचीत सुनाई देती,
0: हाँ
1: बचत समूह और आर्थिक आजादी।
0: अच्छा
1: तो जानकारी दे थी बीना सिंह और उनसे बात करें अभिलाषा श्रीवास्तव। तो चला सुन लीन जाए।
2: बहनी, कहा जात है कि अगर जमा पूंजी पास में रहत है तो एक अलग सी शांति और आत्मविश्वास मन में रहत है। ओके लिए जरूरी है कि बहनी अरे थोड़ा थोड़ा बचत करें। कहा जात है कि है कौड़िया है बुद्धि, नहीं कौड़िया नहीं बुद्धि। कहे के मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है, बचत है, तो आप हर स्थिति के लिए सामना करे के लिए तैयार रहतीन। बचत समूह केवल पैसा जमा करे के माध्यम नहीं होते, बल्कि यह महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सम्मान के आधार बनत है। जब कौनो भी महिला की अचानक पैसे की जरूरत पड़त है तो उस साहूकारन के पास न जाई करके, ब्याज पर ऋण न ले करके, अपने समूह के माध्यम से हर बहनी है

0: जो आज के समय में समूह के अंतर्गत काम करत हिन, जेहमन उनके बचत भी होत है और आत्मशक्ति भी बढ़त है। यही सब बातन पे विचार करत भय आज हमरे पनघटे पर एक बातचीत है, बचत समूह और आर्थिक आज़ादी, यही विषय पर आज अपने पनघटे पर आई हैं बीना सिंह बहनी। तो चले इन्हीं से जाना जाए कि इनकर विचार का है बचत समूह आर्थिक आज़ादी के प्रति, बताओ बहनी।
1: नमस्कार बहनी हरे, आज हम बात करब बचत समूह और आर्थिक आज़ादी के बारे में। हम यह कहावत अपने नानी दादी से सुनत रहे हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरत है। हाँ, आज यही बात आज के दौर में बचत समूह पर पूरा खरा उतरत है। आज वो गांव के लोग जो खासकर किसी समूह और संस्था से जुड़े हैं, उन लोगन मा बचत समूह के बल से आर्थिक आजादी भी देखे का मिलत है।
0: जैसे बहनी,
1: गांव की बहनी हरे बहुत होशियारी के साथ आपन समय और पूंजी के सद उपयोग करती हैं।
0: बिल्कुल सही कहती हूँ बहनी, काहे कि देखा हर व्यक्ति के पास एक कौशल होता है ना, जरूरत होता होकर सजावे निखारे के लिए। और आज जैसे समूह के माध्यम से कुछ बहनी हरे देखा कई तरह से जैसे सिलाई कढ़ाई का सेंटर चलाई रही हैं, या कुछ लोग मिलके मसाला के पैक करके, या डेयरी का काम, अगरबत्ती पापड़ अचार यह तरीके से काम कर रही हैं। तो ये सब एक तरह से समूह का ही तो काम भा बहनी।
1: बिल्कुल सही, वह कहा थी कि आपन थोड़ा थोड़ा पैसा रुपया जोड़कर हर महीना एक बड़ी रकम तैयार करती हैं और अपने परिवार और ऐसन और बहनी हरन का योगदान दे के उनका भी कौनो व्यापार खड़ा करे में मदद करती हैं। बचत समूह से कई बहनी आपन परिवार का गांव के साहूकारन के कर्जा दे वाले व्यापार का कम कर दीन हैं।
0: देखा सही कहती हो बहनी कि नियमित बचत का आदत अगर आप के अंदर है, और हम कही थे कि यही आदत अपने बच्चन में भी थोड़ा थोड़ा डालें, कहे कि जरूरत पड़े पर आसानी से कहीं भी बाहर ऋण न ले से बच जा सके, है ना?
1: हाँ बहनी, आपन मेहनत से बचत समूह में किया गया थोड़ा थोड़ा रुपया जमा कर हम ब्याज दर में रुपया लेकर आपन और आपन जैसन परिवार में पैसा रुपया दे के कई छोट मोट व्यापार और कई समस्या का समाधान अपने आप कर लेते हैं। बचत समूह के ब्याज दर भी कम होते हैं, इसी वजह से ब्याज देने में कोई परेशानी नहीं दिखाई दे, काहे कि ब्याज भी समूह से मिल जात है और काम भी।
0: बहनी देखा, समूह के माध्यम से सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है ना, ये योजना से जब बहनी हरे लाभ लेथिन तो समूह के चलावे में एक आसानी मिल जाता है ना, काहे से कि देखा पैसा कौड़ी जब आर्थिक मदद मिल जाता है तो जो आपका सबसे बड़ी कमजोरी होता है अपने सपने का साकार करे के लिए कि आर्थिक कमजोरी, और आर्थिक कमजोरी जब दूर हो जाता है तो सब बहनी अरे समूह के माध्यम से, कहा जाता है ना अकेले रहे से अच्छा एक से भले दो है, और समूह में तो कई बहनी हरे मिल जाती तो मनोबल भी अच्छे से बढ़ जाता।
1: बिल्कुल सही, यही कहत है कि बचत समूह और संस्था जो हमारे घर गांव से चलत है वह बेरोजगारी को खत्म करे का एक अच्छा रास्ता है, जो बैंक से हमें कम ब्याज दर में पैसा दिलाए के 20-25 बहनी हरेन का आपन आपन व्यापार जैसन डेयरी, पशुपालन, सिलाई बुनाई, अचार पापड़, अगरबत्ती दिया बाती जैसन हाथ के हजारों हुनर सिखाए के या अपने हुनर का जागरूक करके हम रोजगार का रूप दे सके थे।
0: बिल्कुल, देखा बाजार में वैसे पैक जोन बटे अलग से सामान तो हर कोई लेबे करता है, मुना अगर बहनी हरे के समूह के माध्यम से जैसे अचार ली हूँ, पापड़ ली हूँ, है ना, और भी कई तरीके से चीजें हैं, तो उमन एक अपनापन घर का स्वाद आवत है। कहे कि जो हमरे रसोई में हम लोग बनाए रही है या कोई भी रसोई में बहनी बनाई रही है वही बहनी अपने समूह में भी तो बनाई रही है, तो एहमन एक जोन बटे भरोसा भी रहा था कि बहनी हरे बनाए रहे तो अच्छे विधि से बनाओ।
1: बिल्कुल, हम बहनी हरे ऐसन कई संस्था से जुड़ के और जरूरतमंद बहनी हरेन का जोड़ के अपने पैर पर खड़ा करे माँ और आजादी दिलावे माँ बहुत मदद कर सकित हैं।
0: बिल्कुल सही कहते हैं, आजादी का मतलब है कि अपने रूढ़िवादिता सोच से आजादी, है ना, बुरे विचारन से आजादी। इंसान जब नए बाहर निकलत है, चार लोगन से मिलत जुलत है, अपन कारोबार बढ़त है तो आत्मविश्वास बढ़त है, तो

0: सकारात्मक सोच अपने
1: और
0: आप
1: एक
0: आवत
1: अलग
0: है।
1: खुशी भी चेहरे पे
0: हाँ
1: दिखाई
0: बिल्कुल
1: देती
0: बिल्कुल, आत्मविश्वास के साथ आत्मसम्मान भी मिला था समाज में, जो कि हर बहनी हरिन का अधिकार होता। आत्मसम्मान उनके मनोबल के बढ़ावत है ना, और
1: हाँ।
0: एक प्रेरणा के रूप में गांव समाज के लोग उन्हें देखने लगा थीं और खुद भी चेष्टा करा थीं कि उनके घर के बहनी बेटी हरे भी ऐसे निकलें।
1: बिल्कुल सही। तो बहनी, यह सब हमका सरकारी गैर सरकारी संस्था से जुड़ के हाथ के हुनर सीख के तब तो हम ये शुरुआत कर सकी थे। बैंक से लोन लेके या अपने संस्था से कर्जा लेके काम शुरू करके धीरे धीरे कम ब्याज दर में पैसा लेके आपन खुद के रोजगार शुरू करा जा सकत है। आपन और आपन जैसन कई बहनी के जिंदगी बदल जा सकत है और अपने परिवार गांव घर समाज में आपन एक रुतबा कायम हो सकत है।
0: बिल्कुल। और एके साथ हमें तो लगा था कि आपके घर परिवार में, जो कि हमेशा एक अरे घर की बहू है, घर का काम करें, है ना,
1: ये तो
0: एक जो
1: जिंदगी भर
0: हीन भावना,
1: चलत
0: हीन
1: रही।
0: सोच रहा था, अगर आप आगे निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो जो परिवार में लोग एक ई दृष्टि से देखा थी ना, अरे घर में काम है, का है घर का काम करें, का जरूरत है बाहर निकले के। लेकिन अगर आप सफल हो जाती तो वही परिवार वाले आपके सहयोग के रूप में फिर देखे लगा थी और आपके मदद के लिए भी आगे बढ़ा थी।
1: बिल्कुल सही। इससे बढ़िया और का हो सकत है। बोला बहनी सही कहे ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहनी,
1: हम तो यही कहे थे कि आपन हाथ जगन्नाथ, यानी आपन कमाई आपन रुतबा बढ़ाई।
0: बिल्कुल सही कहती हो, अपने हाथ जगन्नाथ होता बहनी। और अगर आप केहू के कुछ दिया लिया चाहत हो, मान लो उदाहरण के लिए आपका खुद का भतीजा आएगा घर पे अपने बुआ से मिले के लिए, तो देखा
1: हाँ
0: एक कहा होता कि आप अगर दूसरे पे आश्रित हो तो आप बंद ही हो कि जितना आपके पास थोड़ा बहुत बा ओहमन से कुछ बचाए कि थोड़ा सा अपने भाई भतीजे की विदाई भी दे या कुछ उपहार भी देवा चाहे।
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: सही।
0: अगर आप स्वयं सक्षम हो, आप अपने घर परिवार के अच्छे से जोन बटे एक तरह के संतुलन बनाए के, आप अगर जोन बटे अपन काम के भी अच्छे से चलाई रही हो, तो आपके पास आर्थिक आमदनी है, तो आप अपने साथ साथ अपने जो आपके खास हैं उनके भी प्रसन्न रख सकत हूँ, उनके भी उनकी इच्छा मुताबिक उपहार दे सकत हूँ।
1: बिल्कुल सही। और अपने आप का आदमी बहुत बड़ा कर सकत है।
0: बिल्कुल सही कहती हो। और बड़ी सोच कोई अचानक नहीं होता, यही छोटे छोटे प्रयास जब इंसान करत है और सफलता पावत है ना, तब जा करके एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करत है।
1: बिल्कुल सही। बचत समूह से जुड़ के हमारे गांव घर की बहनी हरे का न केवल रुपया मिलत है उनका, बल्कि आपस का मेल जोल, भरोसा, हिम्मत, इज्जत, निर्णय लेके आजादी भी मिल जाती। आर्थिक आजादी के मतलब यह है कि हम पूरी तरह से किसी भी समस्या का समाधान अपनी सूझबूझ से कर सकत है।
0: बिल्कुल सही कहती हो। तो हम तो कही थे कि हमें आपके आसपास जितने भी बहनी हरे हैं, इन सब लोगों की एक अपने मन में संकल्प लेवे के चाहिए कि बचत समूह बनावे चाहिए और गांव समाज की हर महिला के आत्मनिर्भर बने के लिए प्रेरित करे के चाहिए। कहा जाता बहनी, छोटी बचत बड़ा बदलाव,
1: बिल्कुल
0: सशक्त
1: सही बात।
0: महिला समृद्ध परिवार, समृद्ध परिवार सशक्त राष्ट्र।
1: बहुत अच्छा।
0: तो बहनी आप हमरे पनघटे पर आई ना, बहनी हरेन के इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दीन, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: सत्या बहनी, देखा इतनी बढ़िया बातचीत तो सुनूं और इतना अच्छा फरियाए फरियाए के हम सब इनके बताई कि देखा अपना हाथ जगन्नाथ है ना, तो और जो आत्मविश्वास और जो निश्चिंतता आवत है आर्थिक रूप से संपन्न रहे पे, ओकर तो कोनो
0: बातें नहीं ना,
2: बात
0: सही
2: नहीं है।
0: कहती हो बहनी। काहे से कि देखा एक बात बताई कि बहनी, देखा कहा जाता ना पैसा भगवान नहीं होते, लेकिन सही बताई तो भगवान से कमो नहीं होते आजकल वर्तमान समय में, है ना।
2: बिल्कुल सही कहा, तो बहुत शक्ति सामर्थ्य और बल धन में हवे, लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता
0: बिल्कुल सही
2: है ना।
0: कहती हो।
2: तो चला अब इतनी बढ़िया बातचीत के बाद में हम तो का एक ठे कहारवा सुनाई दी सुषमा मौर्य जी से, तो चला सुन लीन जाए।
0: काहे नहीं।

0: सत्या बहनी
1: हाँ
0: देखा सारी सारी रतिया जगावे कोयलिया ना।
1: देखा बहनी, कोयल का बोली तो ऐसा नीक लागत है ना। और देखा एक बात बताई कि देखा हर मौसम में जो है कोयल की आवाज भी अलग अलग तरीके से लागत है, भीनी भीनी है ना। कि देखा और इतनी समय चल रहा है बरसात है ना। देखा कितना जहाँ गांव में जहाँ पे ज्यादा देखे हो वो सरपत के झाड़ होता है, सरपत का झाड़ होता है, कुशा का झाड़ होता है। इतनी समय इतने मोर सुंदर सुंदर वहाँ पे आवथिन चुनाथिन और नृत्य करथिन और बोली भी बोलथिन बड़े सुंदर सुंदर। हाँ तो इतनी समय मौसम का वाकई में आनंद तो बहुत अच्छा मिला था
0: बिल्कुल सही
1: है ना।
0: कहा तू। हाँ और मोर वोर के तो देख के कोयल की आवाज सुन ला, मोर के नाच देख ला, है ना, तो मन खुश हो
1: लेकिन
0: जाते एकदम।
1: सरस्वती कितो कुछ देख लो, जब तक चूल्हा का मुंह ना देखा ना तब तक कुछ नहीं अच्छा लगता, पेट भरा रहा था तब है।
0: हाँ लगा था ना सत्या बहनी अब तोरे भूख लगे लगी है
1: हाँ
0: ना।
1: और देखे एक बात और है,
0: हाँ
1: देखा जरूरी नहीं ना भोजन ही होए है ना।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो कभी कदा जैसे चटपटा चीज
0: हल्का
1: कुछ
0: नाश्ता।
1: जल्दी, हाँ नाश्ता वाली चीज चटपटी और कम समय में बनने वाली चीज भी हम लोगन के घर में हर सामान रहबे करत है। और यह मौसम में बहनी तो उत और जानदार लगत है ना। तो कस ना आज अपने बहनी हरेन के पापड़ी भेल के बारे में बतावा जाए।
0: तो चला पापड़ी भेल खियावती तहु के आ सब बहनी हरन के भी। तो पहले हमार सब बहनी हरन कुरकुरी खट्टी मीठी चटपड़ी पापड़ी भेल के लिए सामग्री लिख लें, है ना। तो सबसे पहले एक कप पापड़ी ले लें, है ना, और का तोड़ लें अच्छे से टुकड़ा टुकड़ा में, छोटे छोटे टुकड़ा में, है। एक कप मुरमुरा ले लें, हाँ, और आधा कप बारीक कटा प्याज ले लें, और वैसे आधा कप छोटे छोटे टुकड़े में कटा टमाटर ले लें, एक ठे आलू उबला, और हरी चटनी और इमली और खजूर की चटनी ले लें, चाट का मसाला ले लें, चाट मसाला, अब भुना जीरा पाउडर ले लें, अपने हिसाब से नमक रख ली हैं, और नींबू का रस 1-2 चम्मच, है ना। तब अब क्या करें, एक ठे बड़ा सा बर्तन ले लें, ओमा जोन पापड़ी है तोड़े तोड़े हो छोटी छोटी ओका डाल लें, मुरमुरा के डाल लें, मुरमुरा हल्का थोड़ा भीगा रहे मुलायम हो जाए,
1: नमनमा हो जाए
0: हाँ,
1: तो।
0: और जो आलू रहा ओका छोटा छोटा छोटे छोटे टुकड़ा कर लें, वो उबला आलू हम ओका डाल लें, और जोन प्याज के टुकड़ा करे हो टमाटर के टुकड़ा करे हो वो सबका अच्छे से मिला ले
1: मिला ले।
0: दोनों हाथे से। अब ऊपर से हरी चटनी और जोन तोर मीठी खजूर वाली चटनी है इमली खजूर वाली ओका डाल दें, है ना, और मां ऊपर से चाट मसाला भुना जीरा पाउडर नमक और नींबू के रस डाल के अच्छे से खूब मिला
1: मिला
0: लें,
1: ले।
0: है ना। अब थोड़ा थोड़ा ऊपर से सेव डाल लें, हाँ,
1: हाँ
0: और हरी धनिया छीट
1: नमकीन,
0: लें, है
1: हाँ
0: ना।
1: बिल्कुल। देखा
0: हाँ
1: वाकई में खाए के कई तरीके हैं, आनंद ले के कई तरीके हैं, बसरते होय का चाहिए जांगर शरीर
0: हाँ
1: में
0: अब
1: है ना।
0: बस सत्या बहनी अब बढ़िया से बरसात के मौसम में प्रसाद देखा देखा देखा खाएं, और पौष्टिकता बढ़ावे के होए तो थोड़ा अनार मिलाए दें में,
1: अरे वाह,
0: हाँ, और अगर मैं मूंग भिगोए के रखे हो थोड़ा मूंग के दाना भी डाल देबू तो तू अपने स्वास्थ्य के और बढ़िया कह लेबू।
1: बिल्कुल सही कहती हो। देखा जरूरत है कि बनावे बहनी हरे अच्छे से घर सब घर वालन के खिलावे भी। और देखा एक बात और है, तू बतावत रहू ना, और
0: हाँ
1: जब बतावत रहू तब हमरे जोन बटे मन में मुंह में बार बार पानी आवत रहा है ना।
0: अधिका सत्या बहनी हम सभी तो छोड़ दा।

0: लेकिन बच्चन तो खाए के एकदम खुश हुई जाएगी ये मौसम में, है ना। तो चला अब इतनी तो का बढ़िया बढ़िया रसोई घर में ले जाके खियाए है, अब चला ऐसे ही तो का एक बढ़िया सा गीत सुनवाए देती है ना। तो चला फिल्म मिलन से एक गीत सुनला तो ही समरिया
1: नहीं।

0: सरस्वती
1: हाँ,
0: गौनाई तो
1: सत्यवहिनी।
0: बहिनी बड़ा निक सुनाओ कि मन वाकई में एकदम से झूम उठा है ना। और देखा सावन में अब बहिनी हरे सब घरे नावथिन परदेश से लौट के,
1: बिल्कुल।
0: तो देखा जब अब इतना अच्छा बात बताए हो तो चले अखनी संदेश सुन लें जाए।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी हैं।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमार ईमेल एड्रेस है
5: पनघट program@gmail.com।

0: स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME एट द रेट ऑफ gmail.com, पनघट प्रोग्राम एट द रेट ऑफ gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कौनी बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
2: बेसब्री से इंतजार रही।
3: देखा बहनी, इंतजार तो रहत है ना, कि जब हम लोग अपने बहनी हरिन से बतकही करी था।
4: बिल्कुल सही कहा तू।
3: जैसे हम तो से कुछ कह रहे तू ओकर जवाब दे दे तू, तो हम संतुष्टि है।
4: बिल्कुल
3: ना बहनी हरे, अगर अपन विचार जो न बहन संदेश बताओ गए ईमेल के माध्यम से हम लोगन तक पहुँचाई हैं, तो हम लोगन के भी बहुत अच्छा लगे है ना, और एक मनोबल बढ़त है कि हाँ बहनी हरिन कह तरीके से कहा जाना चाहथिन। सब कुछ सुने के बाद वाकई में लगा था कि पनघटे पर आए के बहनी हरिन से मिल के मन एकदम हल्का हो जाता। मुँह न इस समय कब ठहरे वाला बाटे, अब कह रहा बा कि बहनी हरिन से विदा लेन जाए। राम राम बहनी हरे।

0: दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: जर्व की 32 प्लांटों और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जलभराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया

0: और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर

0: तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGB के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के नाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत। लोकगीत कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राम प्रसाद और साथियों के सुर में ये देवी गीत।

0: इस झूमर के साथ ही लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉनस्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती के गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं बरम दीन यादव और साथियों के गाये लोकगीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए देवी गीत।
1: Mm-hmm.

0: अभी आप सुन रहे थे बरमदीन यादव और साथियों से गंगा गीत, और इसी के साथ ही धरती के गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: चलो जल्दी, तुम्हारी चांस है आज। याद है वो बचपन की शामें जब घर से आवाज आती थी, बस अब घर आ जाओ।
1: लेकिन खेल का वो जोश ऐसा होता था ना कि जवाब मिलता था बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट का 1 घंटे में बदल जाता था साथियों, कि पता ही नहीं चलता था।
0: बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि खेल से जुड़ी बचपन की यादें आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। तो ऐसी ही मुस्कुराती यादों और इस खूबसूरत शाम के साथ नमस्कार आप सभी श्रोताओं को, और हम स्वागत करते हैं आपका आपके फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में।
1: जहाँ आज मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर, आपका रेडियो होस्ट अभिषेक।
0: और मैं हूँ सेजल।
1: और हमारी इस बातचीत को और भी खास बनाता है ये मौसम। तो ऐसे मौसम में बचपन की वो खेलती कूदती खिलखिलाती यादें अपने आप ताज़ा हो जाती हैं। वो मैदान जहाँ जीतने की खुशी किसी ट्रॉफी से कम नहीं होती थी, और शायद तब हमें नहीं पता था कि खेल सिर्फ गोल करने या मैच जीतने का नाम नहीं है। खेल हमें सिखाता है गिर कर उठना, हार कर फिर कोशिश करना, टीम के साथ आगे बढ़ना, और सबसे ज़रूरी हार ना मानना।
0: और आज भी देश के कोने कोने में ऐसे न जाने कितने बच्चे और युवा हैं जिनके भीतर एक खिलाड़ी छिपा है, एक सपना है और उस सपने को पूरा करने का जुनून है। पर दोस्तों, बस जरूरत है तो उस प्रतिभा को पहचानने की और उसे सही मंच तक पहुंचाने की। और इसी सोच के साथ शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है खेलो इंडिया कार्यक्रम।
1: और इस योजना को 2018 में शुरू किया।

0: गया था ताकि देश के अधिक से अधिक युवा खेल से जुड़ सकें। पर अब सवाल यह है कि इसके अंतर्गत किया क्या जाता है? तो साथियों, इस योजना के तहत खेलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर काम किया जाता है, जैसे खेल प्रतिभाओं की पहचान, यानी कि देश के गांवों और छोटे छोटे शहरों में छिपी खेल प्रतियोगिताओं को प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाता है। और इस कार्यक्रम के तहत खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग, योग्य प्रशिक्षक और आवश्यक खेल सुविधाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
1: इस कार्यक्रम में खेल सुविधाओं का तो विकास होता ही है, प्लस युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच भी दिया जाता है, जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया सेंट्रल गेम्स जैसे नेशनल लेवल पर ये खेल आयोजन किए जाते हैं।
0: बिल्कुल सेजल, और खेलो इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि भारत अधिक से अधिक पदक जीत सके,
1: बिल्कुल
0: बल्कि इसका उद्देश्य ये भी है कि हर युवा खेल से जुड़े, स्वस्थ और सक्रिय रहे, हर प्रतिभा को खेलने का अवसर मिले। और इसके अलावा हमारे देश में खेलों की जो संस्कृति है उसको विकसित किया जा सके, बढ़ाया जा सके और भारत को एक फिट और मजबूत खेल राष्ट्र भी बनाया जा सके।
1: बिल्कुल
0: तो सज्जल, हम बात कर रहे हैं जब खेलों की, तो हमें पता है
1: हाँ
0: कि खेल हमें मोटिवेट करते हैं,
1: बिल्कुल
0: हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं और सबसे ज़्यादा ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम हर रोज़ कुछ अलग अलग चीज़ें, अलग अलग अलग बातें लाते हैं अपने प्रोग्राम में, चाहे वो प्रेरणा पुंज का सेगमेंट हो या फिर जैसे कि आज है शनिवार और शनिवार को हम हर बार लाते हैं एक खास सेगमेंट, यानी कि आज की शाम आपके नाम। तो उस सेगमेंट में भी हम किसी एक ऐसी हस्ती, पर्सनैलिटी की बात करते हैं जो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करता है और आगे बढ़ने की दिशा और दशा निर्धारित करता है। तो आज भी हम आज की शाम में एक ऐसे सितारे के बारे में बात करेंगे जो आपको ज़रूर पसंद आएगा और प्रेरित करेगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आज की हम इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी की, जो कि हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। दोस्तों, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। और जब कोई शख्स अपने प्रेजेंट को राष्ट्र के भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित कर देता है तो उसके विचार और कर्म आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है। और आज के प्रेरणापुंज में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्ति की, ऐसे इंसान की, जिन्होंने उस दौर में भारतीयों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया था जब देश अंग्रेजी शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी हमने बात करी और लगातार उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके जीवन की वो चीज़ें जो युवाओं को प्रेरित करती हैं, जिन्होंने शिक्षक बनकर युवाओं को दिशा दी, पत्रकार बनकर अपनी कलम को जनजागरण का माध्यम बनाया और एक ओजस्वी वक्ता के रूप में भारतीयों के भीतर राष्ट्रीय चेतना और आत्मसम्मान की भावना जगाई। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस महान अग्रदूत को जनता ने सम्मान दिया राष्ट्र गुरु की उपाधि से।
1: और आपको बता दें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का जन्म 10 नवंबर 1848 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा हासिल की और आगे चलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य बनाया और साल 1869 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि उनकी सेवा के दौरान किसी कारणवश उन्हें अपनी ये पदवी छोड़नी पड़ी और इसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वे शिक्षा और सार्वजनिक जीवन के माध्यम से भारतीयों में जागरूकता जगाएंगे।
0: और साल 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख उद्देश्य थे कुछ इस तरह से, जैसे कि भारतीयों को राजनीतिक रूप से मजबूत करना, उन्हें जागरूक करना और भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, जैसे तमाम उद्देश्य शामिल थे। और साथ ही लोगों को एकजुट करने में एक जो महत्वपूर्ण कदम था सेजल, उन्होंने उस दौर में उठाया था और उसके बाद एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी उपजे थे और अपने इस देश को अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने में उस समय बहुत ही उसको आगे बढ़ाने में काम किया था।
1: बिल्कुल, और इतना ही नहीं अभिषेक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली समाचार के पत्र के माध्यम से भी जन जागरूकता फैलाई।
0: और बात करें अगर साल 1895 की, तो उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर पुणे अधिवेशन और 1902 को अहमदाबाद अधिवेशन के वो अध्यक्ष रहे, और साल 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके बाद उन्होंने इस विभाजन का पूर्ण

0: जोर विरोध किया था।
1: और इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का समर्थन किया। तो दोस्तों, भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने, उन्हें संगठित करने और राष्ट्रीय भावना जगाने के कारण जनता ने उन्हें सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सम्मान पूर्वक राष्ट्रगुरु की उपाधि दी, जैसा कि अभिषेक ने पहले ही बताया था। और साथियों, उनका जीवन हमें ये बताता है कि राष्ट्र निर्माण केवल हथियार उठाकर नहीं किया जाता। आईसीएस से बर्खास्त किए जाने की व्यक्तिगत पीड़ा को उन्होंने अपने जीवन की हार नहीं बनने दिया। तो कहते हैं ना कि असफलताएं तो हमें मिलती हैं, पर हमें अपने कर्म और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए ताकि हम उस चीज को हासिल कर सकें।
0: बिल्कुल।

0: आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो अभिषेक,
2: आज
1: वैसे सैटरडे है और खास सेगमेंट की तुम बात बता चुके हो, लेकिन उससे भी एक और खास सेगमेंट है।
2: हाँ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ लोग किस्मत से सितारे बनते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने संघर्ष की रोशनी से खुद आसमां जगमगा देते हैं। आज की शाम हम समर्पित करेंगे एक ऐसे ही कलाकार के नाम जिसे दुनिया आज बादशाह के नाम से जानती है। और सेजल, वाकई में वो आज बादशाह कहलाने के काबिल है। लेकिन उस अपने इस खास सेगमेंट में आगे बढ़ने से पहले हम अपने श्रोता साथियों के लिए लेकर आ रहे हैं आज का हेलो युवा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं सुधांशु पांडे। तो आइए आनंद उठाते हैं इस खूबसूरत से सेगमेंट का।
3: सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम हेलो युवा और मैं हूं आपका सुधांशु पांडे। दोस्तों, आज प्रयागराज का मौसम कुछ ऐसा है कि दिल कह रहा है कि बस खिड़की के पास बैठो, हाथ में गर्म चाय का कुल्हड़ हो और कानों में वो गीत जो सीधा दिल में उतर जाए। अल्फ्रेड पार्क की हरी हरी पत्तियों से टपकती बूंदे हो या सिविल लाइन्स की सड़कों पर उड़ती पानी की छींटे, कई दिनों से लगातार पूरा शहर बारिश के रंग में रंगा हुआ है। और जब मौसम इतना खुशनुमा हो तो भला हम और आप चुप कैसे बैठें? इसलिए आज हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो हेलो युवा, जहां बातें होंगी आपकी, मौसम होगा प्रयागराज की बरसात का और गीत होंगे बिल्कुल आपकी पसंद के। तो चलिए उठाते हैं पहला फोन और मिलाते हैं सुर से सुर। हेलो युवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं हमारे साथ? आशीष जी, नैनी पुल से आज यमुना जी का नजारा कैसा दिख रहा है? यहाँ तो बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया है भाई।
4: आज का मौसम तो बड़ा सुहाना लग रहा है, अभी हम लोग बाहर भी निकले हुए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश भी हो रही है।
3: बारिश का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि पढ़ाई से थोड़ी देर की कानूनी छुट्टी। तो आशीष, इस सुहाने मौसम में हेलो युवा के जरिए अपने दोस्तों को कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे?
4: मुझे मुकेश जी का गाना याद आ रहा है, चांद सी महबूबा हो मेरी।

0: आपने हेलो युवा में फोन लगाया है, आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए।
1: तो मेरा नाम श्रेयांश मौर्य।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: तो मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से।
0: श्रेयांश, सयू की तो बात ही अलग है। आर्ट्स फैकल्टी की बरगद की छांव और बारिश की बूंदे, आज तो कैंपस में शेरो शायरी का माहौल होगा एकदम।
1: जी सर, बिल्कुल बढ़िया हवाएं चल रही हैं, अच्छा मौसम है, हम लोग बैठे हैं लाइब्रेरी के सीढ़ियों के पास, क्या करते हैं, अच्छी हवाएं चल रही हैं।
0: तो श्रेयांश, यूनिवर्सिटी के दिनों की बारिश और पूरी जिंदगी याद रहती है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: तो एयू की इस ऐतिहासिक कैंपस से आज क्या फरमाइश आ रही है हमारे लिए?
1: सर, पूरे एयू के स्टूडेंट जो है इसमें एकदम इसको वाला माहौल बना हुआ, रोमांटिक सा गाना सुनने का बस मन कर रहा है, मौसम बहुत प्यार भरा है।
0: तो यूनिवर्सिटी का प्यार और प्रयागराज की बारिश, इससे खूबसूरत तालमेल क्या ही हो सकता है। श्रेयांश और एयू के सभी दोस्तों के नाम ये बेहद रोमांटिक सा नगमा।

0: हेलो, आपने हेलो युवा में फोन लगाया है, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम नीलकांत है, मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ। और युवाणी कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली कंपटीशन की जो तैयारी मैं करता हूँ उसमें मुझे बहुत हेल्प मिलती है। जो भी कार्यक्रम आप लोग करते हैं बड़ा मतलब प्रेरणादायक कार्यक्रम लगता है मुझे, और जो आप लोग गाने सुनवाते हैं वो भी बड़े शानदार रहते हैं।
0: अच्छा, तो आपको नीलकांत जी युवाणी का कौन सा ऐसा कार्यक्रम रहा जो बहुत पसंद आया?
1: कोई पर्टिकुलर एक बात मैं नहीं करना चाहूँगा, जैसे आप लोग किसी व्यक्ति पे विशेष कार्यक्रम करते हैं, किसी कोई दिन विशेष होता है उस पे जो आप लोग कार्यक्रम करते हैं, तो पर्टिकुलर वो लगभग वो कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है।
0: तो नीलकांत जी ये बताइए कि बारिश का माहौल कैसा है प्रयागराज में?
1: बारिश का माहौल तो अच्छा है, और एक दो दिन बारिश हो रही है, फिर दो तीन दिन निकल जा रहा है, धूप हो रही है, अच्छा है मौसम, खुशनुमा है, बारिश की शुरुआत।

0: गई है, किसान लोग भी अपना खेती बाड़ी में जुटे हुए हैं।
1: इलाहाबाद में घूमने लायक मौसम है?
0: हाँ, इलाहाबाद में घूमने लायक मौसम है, संगम पे बढ़िया लोग घूमने का मौसम है, रेल घाट पे मौसम बढ़िया है, लोग अच्छा खासा मौसम है। फिलहाल मैं एक गाना सुनने के लिए फोन किया हूँ आपके पास।
1: हाँ हाँ जी बिल्कुल बताइए।
0: और एक है दम लगा के हैसा फिल्म, उसका है मोह मोह के धागे,
1: तो हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो, आपके हेलो युवा में स्वागत है। आप अपना नाम बताइए।
0: मेरा नाम श्वेता है, इलाहाबाद
1: श्वेता,
0: से हूँ मैं। सर,
1: तो इलाहाबाद का मौसम आपको इस समय कैसा लग रहा है?
0: कभी धूप हो जा रही है, कभी बारिश हो जा रही है। अभी तो देखो, जैसे बारिश हो गई सुबह, बहुत तेज से धूप हो रही थी। कुल मिला अच्छा है, चाय पकौड़े वाला मौसम चल रहा है अभी।
1: अच्छा, तो आपको धूप और बारिश में सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
0: बीच वाला मौसम, जब बारिश ना हो रही हो, बारिश वाला मौसम हो रहा हो बस।
1: तो इस मौसम में आप अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करती हैं?
0: हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग संगम चले जाते हैं या चाय पकोड़े खाने चले जाते हैं।
1: चाय पकौड़े के साथ अगर आपको ये मौका मिले कि इलाहाबाद में आप अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, पढ़ाई को अपने आप ब्रेक दें, तो आप इन दोनों में से क्या चूज़ करेंगे? दोनों को बैलेंस करके कि दोनों में से किसी एक को?
0: नहीं, मतलब मुझे लगता है कि पढ़ाई को थोड़ा सा ब्रेक

0: दे देना चाहिए, और कहीं अगर घूमने का मौका मिल रहा हो, कहीं जाने का मौका मिल रहा हो तो चले जाना चाहिए।
1: आपका कोई ऐसा पसंदीदा गीत है जो आप सुनना चाहें?
0: आप वो बजा दीजिए, गुनगुन गुनारे।
2: गुन गुन गुनारे गुन गुन गुनारे गुन।

0: घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। लेकिन प्रयागराज की ये बारिश, संगम की ये ठंडी हवाएं और आपकी ये मीठी मीठी फरमाइशें पूरे दिन हमारे दिल में ताजा रहेंगी। अगर आज आपका कॉल नहीं लग पाया तो उदास मत होइए, हेलो युवा का ये सफर इसी तरह जारी रहेगा। तब तक प्रयागराज की इस बरसात का मजा लीजिए, गर्म चाय पीजिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो हेलो युवा। मैं आपका दोस्त सुधांशु पांडे अब लेता हूँ विदा। मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।
1: तो दोस्तों, अभी आपने सुना हेलो युवा, और जिसके जिसको प्रस्तुत किया था सुधांशु पांडे ने। तो वैसे अभिषेक, हम लोग बात कर रहे थे आज की शाम आपके नाम में एक ऐसे सितारे की जिन्हें दुनिया किंग खान के नाम से जानती है, यानी कि
2: बादशाह ऑफ बॉलीवुड।
1: और नाम भी रिवील कर दो।
2: और रोमांस के किंग जिन्हें दुनिया शाहरुख खान के नाम से जानती है। तो दोस्तों, 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में जन्मे शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट कोलंबा स्कूल से की। पढ़ाई, खेल और रंगमंच, हर क्षेत्र में वो प्रतिभाशाली थे। आगे उन्होंने हंसराज कॉलेज से स्नातक किया और फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन अभिनय का सपना उन्हें मुंबई ले आया।
1: उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। कम उम्र में माता पिता दोनों का निधन हो गया, ये किसी भी युवा के लिए बहुत बड़ा आघात होता है। लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया।
2: शाहरुख खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टेलीविजन धारावाहिकों फौजी और सर्कस से की। उनकी सहज अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। 1992 में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में कदम रखा और पहली ही फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता यानी कि बेस्ट मेल डेब्यू का पुरस्कार मिला।
1: और इसके बाद मानो सफलता उनका इंतजार ही कर रही थी। बाजीगर, डर, दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, देवदास, स्वदेश, चक दे इंडिया जाने जैसी फिल्में ने उन्हें विश्व भर में लोकप्रिय बना दिया।
2: और साथ ही उनकी खास बात ये रही कि उन्होंने सिर्फ रोमांटिक हीरो ही नहीं बल्कि हर तरह के किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता साबित की।

0: अटैक पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और महिला सशक्तिकरण के लिए सराहनीय कार्य भी करती है।
1: और उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर सपनों पर विश्वास हो और मेहनत ईमानदार हो तो मंजिल जरूर मिलती है।
0: साथियों, शाहरुख खान की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता किसी शॉर्टकट का परिणाम नहीं बल्कि निरंतर संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतिफल होती है। और अगर आपके पास भी साथियों कोई सपना है, उसे पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहला कदम आज से ही उठाइए, क्योंकि सपने से जल वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का साहस हम अपने अंदर रखते हैं और आज से ही उसकी शुरुआत करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों उम्मीद है शाहरुख खान जी के जीवन पर और उनके फिल्मी सफ़र पर आधारित ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। और अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी सेगमेंट की, जो कि है क्वेश्चनेयर। और हमारा कल का सवाल था, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है, उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है।
1: दोस्तों, हमारे आज का प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा और आप अपना उत्तर, अपना फीडबैक, हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये हमें हमारी ईमेल आईडी पर दे सकते हैं, जो कि है yuvvnialt@gmail.com। और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर, जो कि है 8004926250। तो उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे यानी सेजल
0: और मुझे अभिषेक को
1: दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी 3 मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR ना हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजेपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
3: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
1: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
4: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है क्योंकि पूरे जिले में

0: भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। इस सप्ताह संसद में ये कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती आप सुनेंगे रात 9:30 बजे और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे सुशील चौरसिया से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत। परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत इसका विषय होगा तैरना एक जरूरत, एक कला और नया आयाम। 7:31 पर डॉक्टर चितरंजन सिंह की वार्ता सुनवाई जाएगी, डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना। और 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कौशिक राय के गाए गीत प्रसारित होंगे शाम 7:45 पर। रात 8:15 सेहत की बात के अंतर्गत स्वर्ण प्राशन एक जानकारी, डॉक्टर GS तोमर से अभिनव प्रज्ञा पांडे की ये बातचीत सुनिएगा। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष रेडियो प्रसारण मन की बात आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का दैनिक रिपोर्ट सुनाया जाएगा सुबह 7:30। रात 10 बजे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा और सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में सुबह 6:35 पर किसान भाई सुनेंगे शुभंकर सिंह से की गई बातचीत, कृषि उपज मूल्य व गुणवत्ता आश्वासन से किसानों को लाभ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर अजीत चौरसिया की वार्ता होगी प्रमुख वायरस जनित बीमारियां और उनका उपचार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 6:45 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अमीर खां का ख्याल गायन सुनिएगा सुबह 7:45 पर। उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन दोपहर 12:15। 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम का विषय होगा कारगिल विजय दिवस। सुगम संगीत के कार्यक्रम में मेघा के गाए भजन और गीत सुनिए सुबह 9:50 पर। माहेश्वर दयाल के गाए भजन और गीत शाम 7:45 पर प्रसारित किए जाएंगे। आकांक्षा भारती और साथी, त्रिभुवननाथ गौड़ और साथियों के गाए लोकगीत सुनिए सुबह 10:05 पर। अनुराधा श्रीवास्तव, कमलेश चंद्र यादव और साथी, पंचम लाल यादव और साथियों के गाय लोकगीत दिन में 2:30 बजे प्रसारित किए जाएंगे। बाल गोपाल कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे कुंज बिहारी लाल मौर्य की।

बाल कहानी ज्ञानेश की सूझबूझ। शाम 5:15 बजे युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। पंचायत घर कार्यक्रम शाम 6:30 बजे होगा। इसमें श्रोता सुनेंगे कर्नल संतोष मिश्र की वार्ता, हमारा गर्व हमारी शान, कारगिल विजय दिवस। चिट्ठी आई है। इस कार्यक्रम में श्रोता अपने पत्रों और संदेशों के उत्तर सुनेंगे। रात 8 बजे श्रोताओं के पत्रों के उत्तर देंगी नेहा गुप्ता और आपके साथ होंगी वंदना राठौर। रात 8:30 बजे आज इतवार है। इस कार्यक्रम में सुनिएगा कली मुर्फी की लिखी नाटिका दिल मरम्मत डॉक्टर। रात 9:30 बजे गजलों पर आधारित कहकशां कार्यक्रम का प्रसारण होगा। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे देशगान संवेद स्वरों में, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन अद्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने स्वत्यागपत्रं प्रदत्तम्। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयेन परीक्षा प्रश्नपत्र अवैधरीत्या प्रकाशन संबद्ध अनियमितताम आलक्ष्य चतुर्णाम विशिष्ट ट्रैक न्यायालयानाम स्थापना विहिता। जम्मू कश्मीरे वार्षिकी अमरनाथ यात्रा अथ च श्रीमातुः वैष्णोदेव्याः पवित्र यात्रा अद्य 6 दिवसीय स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धा। असम राज्ये जलाप्लावनेन मृतकानां संख्या 1/6 जाता, यत्र 1,00,000+ जनाः साहाय्योद्धार शिविरेषु आश्रयम् अगृह्णन्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना सर्वविध साहाय्यस्य आश्वासनं प्रदत्तम्। भारतीय स्क्वैश क्रीडिका अनाहत सिंहः ऐतिह्यं विरीच्य जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप श्रृंखलायाः महिला एकल निर्णायक द्वन्द्वे स्वीय स्थानं रक्षितवती। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोः मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन अद्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने स्वत्यागपत्रं प्रदत्तम्। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे श्रीप्रधानेन निगदितं यत् गत 10 दिवसेषु प्रचल्यमाणानां स्थितिमालक्ष्य तेन मन्त्रीपदमिदं त्यक्तम्। छात्राणां प्रदर्शनपुरस्सरं सुरक्षास्थितिं च मनसि निधाय शिक्षामन्त्रिणा त्यागपत्रं प्रदत्तम्। तेन प्रतिपादितं यत् नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले अशेषे देशे हि परिस्थितिम् आलक्ष्य त्यागपत्रमिदं प्रदत्तम्। तेन प्रधानेन प्रोक्तं यत् तेन प्रधानमन्त्रिणः विश्वासं सहयोगं च सम्मानितम्। तेन भणितं यत् देशस्य सेवा एव तस्य सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यते। मध्यप्रदेश उच्चन्यायालयेन परीक्षा प्रश्नपत्र अवैधरीत्या प्रकाशन सम्बन्ध अनियमिततां आलक्ष्य चतुर्णां विशिष्ट ट्रैक न्यायालयानां स्थापना विहिता। न्यायालयेन निर्दिष्टं यत् आरोप पत्राणां नामांकनस्य 3 मासाभ्यन्तरे तेषां प्रकरणानां निवारणं भवितव्यमेव। जम्मूकश्मीरे वार्षिकी अमरनाथ यात्रा अथ च श्रीमातुः वैष्णोदेव्याः पवित्र यात्रा अद्य 6 दिवसीय स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धा। कश्मीरस्य संभागीय आयुक्तेन अंशुलगर्गेण आकाशवाण्या सह वार्तालापे सूचितं यत् बाल्टाल पहलगाम मार्गयोः यात्रा पुनः समारब्धास्ति। अत्रान्तरे 79

0: मोती भैया।
1: हाँ भैया घनश्याम।
0: भैया और लगत बा कि धाने का रोपाई उपाई कहके फुर्सत हो गया।
1: यह भाई देखा हो, हम धाने का रोपाई तो बहुत पहले कह चुका रहे। हम भैया ने यह बरसतवा जब शुरू भय हो है
0: हाँ, हाँ।
1: तो हम भैया गर्मिये में पेड़ लगावे बदे गड्ढा खने रहे।
0: बहुत निक भैया, बहुत निक हो। हम कहीं अब चुक जाइबे तो फिर चुक जाइबे।
1: हाँ तो वह पेड़वा भैया ने घरैतिन को गदेलन के मिलाई के भैया घर भर मिलके लगावत रहे।
0: नहीं नहीं भैया, हम तो तोरे देखा वैसे बाग बगीचा बढ़िया बा भैया हो, और तोरा देख के तो हमहू खूब जमाए। हाँ
1: बिल्कुल।
0: लेकिन देखा मोती भैया, ये हमारे तोहरे करे से न होई हो, ये अगर जन जन करी हैं भैया, खूब भैया वृक्षारोपण करें, पौधरोपण करें, धरती के हो अपना पेड़ पालों से भैया ढांके रहें, तोपे रहें, तो ये मोती जैसे पहले भैया हो, बारिश में बारिश हो, जाड़ा में जाड़ा हो, गर्मी में गर्मी हो।
1: बिल्कुल है? बिल्कुल भैया। हाँ।
0: अब तो भाई बुझाते नहीं भाई, कब जो गर्मी आ जाए, कब पानी बरस दे, कब जड़ाए लगे।
1: भैया देखा हो घनश्याम, हम तो जब झीन झीन रहे न हो तो हमारे बाप दादा भैया देखा हो पेड़े लगावे जहाँ भी खाली
0: बिल्कुल,
1: जमीन
0: हाँ।
1: रहा हमारे लोग के सहेज दे कि यहाँ पेड़ लगाई दी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हमारे लोग भाई देखा आज जौन हरियाली बा है वो कहीं न कहीं हमारे दादा बाबा के हमार तोहार देन बा है।
0: देन बा मोती, हमें याद बा हो कि कुड़ी कबड्डी खेलत रहे हमने, अब भैया बाबा बैठल रहे हैं, चरे के उनके शक नहीं बा। अब भैया वो खेलत खेलत एक ठे नया पेड़ पौधा लगाए रहन भाई, हथवा से छुआई गल खाली। अब समझ ला सिटकुनी लेके दौड़ाई लिहन। इतना रक्षा सुरक्षा पे लोग चौकस रहने।
1: तो भाई देखा हो आज हमें तुम्हें समझे की जरूरत बाय
0: बिल्कुल
1: कि हम तू भैया मिलजुल के जहाँ भी जमीन खाली बाय हुआ जरूर पेड़ पौधा लगाए दे, ताकि भाई देखा हम तो किसान मन ही हो घनश्याम भैया, समय से बरसात न हो तो खेती किसानी कैसे हो।
0: कैसे हो कैसे आज

0: खम होती ना, पेड़ भैया पौध लगाइबे, बलिहारी ना बाभा, ओके जियाई के, ओके बचाई के, ओके वृक्ष का रूप दे भी जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी है, देखभाल करब जरूरी है। जैसे कि पुरनिया रहन, पहले के मनई रहन, पेड़ पौधा तनिको नुकसान कह दे तो भैया डपट लेत
0: डपट
1: रहन।
0: लेते रहे, बताओ ते भाई भाई।
1: तो आजो भाई देखा, ई कुल समझे के परी, सोचे के परी। और किसान भैया बहनिन से हम ई अरदास बाय कि जहाँ भी जमीन खाली बाय हुआ पेड़ के रोपण जरूर कह
0: जरूर
1: दें।
0: करें भैया, जरूर करें मोती। कहीं से देखा आप तो भैया, जैसन मन चाहे हो वैसन पौध उपलब्ध बा है।
1: बिल्कुल भैया
0: फल
1: बिल्कुल।
0: वाला चाहे फल वाला लगावा, लकड़ी के चाहे लकड़ी के लगावा, कम छाँव के चाहे कम छाँव के लगावा, यानी भैया खाली जांगर सकिलावे के जरूरत हो।
1: बस इतने जरूरत है। एक बात घनश्याम भैया हम कहे कि देखा अभी जब गर्मी पड़त रही हो है तो भैया तालाब जोन रहन, पोखरा रहन, वहाँ के पानी भैया सूख ही गया रहा। तो देखा जब हम तो भाई कभो कभो अपन गाय भैंस भैया तलैया तालाब में हम कहीं नहवाई दे तो पता लाग पनिए ना है।
0: ए हो देखा भैया ने का भैल कि अब देखा समय समय से भैया विकास भैल, कहो ये बतावा कि एक से कच्चे घर रहे, कच्चे द्वार रहे, पानी बरसे भैया आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट बाद पानी कहीं पता न चले, कुल सही रास्ता पकड़ के गढ़ही तालाब पोखर में चल जात रहन।
1: हाँ भैया हाँ हाँ
0: अब तो भैया हो आपस में इतना ज्यादा टीस एक दूसरे के भैल बा, वो उनकर पानी रोकत, उनकर पानी रोकत, यानी पानी के सही स्थान जहाँ बात जाए कि चाहे वहाँ पानी पहुँच के संरक्षित ना हो पाओ था।
1: यह भाई देखा है हमें तुम्हें। अब फिर सोचे परी कि बरसात के पानी तालाब में पोखरा में ओका भाई नाली बनाए कि गिराए दिया जाए हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, ऐसे बड़ा पुण्य कुछ ना मोती, ये पानी समझ ला धरती के अंदर जाए कि अमृत बन जात है।
1: बिल्कुल भाई यह पनिया भैया रिस रिस के जब अंदरवा जात है तो पिए बदे बढ़िया आवत है।
0: बिल्कुल कहो, पहले भाग कुआं में देखा इतना निर्मल जल होत रहे, भैया गर्मी बीत जाए कुआं का पानी वैसा रहे है। आज तो
1: बिल्कुल
0: भाग गर्मी में ना कुआं सुखाए जाते हैं, बिल्कुल पिटकुनिया में पानी नहीं लौकत बाय। तो भैया अब चिंता का विषय हो, धरती के अंदर अगर पानी का स्तर ना बढ़ी तो आवे वाले समय में मोती ने पानी के बिना जीवन भैया खतरे में आ जाए।
1: भैया बिना पानी के कौन जिंदगानी हो। देखा मनई को चाहिए, पशुअन के चाहिए, पेड़ पौधन के चाहिए, हर
0: बिल्कुल
1: जीव जंतु के
0: बिल्कुल,
1: पानी
0: बिना
1: की जरूरत
0: पानी
1: है।
0: जीवन भैया संभव नहीं हो मोती।
1: तब देखा अबे सचेत हो जाए, अब ही बरसात के समय चलत बा। दयु राजा भाई देखा घनघोर बरसात तो अबहिनों की हन है। और देखा पंचायती में आया तोहरो भाई देखत है कि गमछा झुरा झुरा ना
0: बिल्कुल
1: ही
0: बिल्कुल
1: अबहिन
0: भैया
1: है।
0: बिल्कुल।
1: और भैया हमरे देखा माटी कोटी लाग बहो। एक बात और कहब हो घनश्याम भैया, देखा हो अपने पंचायती में न समय समय पे किसान भैया बहनिन के खेती किसानी से संबंधित जानकारी तो दिया जात है। साथे साथे भैया देखा हो अपने स्वास्थ्य बदे भी बढ़िया बढ़िया बात बतावा जात
0: ए हो
1: है।
0: जब आपन दे आपन जांगर न ठीक रही हो मोती, तो न खेती होई न किसानी होई न गोरु होई न गुरुवारी होई
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: भैया हो जैसे खेत का फसल मजबूत रहे चाहिए, पशु एकदम स्वस्थ रहे, वैसे अपनों भैया स्वास्थ्य अच्छा रहे चाहिए। और स्वास्थ्य अच्छा खाली खाने पान से देखा ना हुई, व्यायाम जरूरी बा भैया, ओकरे बदे योगा जरूरी बा। तो भैया हो हम कहीं कि आपन जवन भी जानकार भैया लोग, वैज्ञानिक भैया लोग सलाह देते हैं, वो तरह से भैया आपन जीवन जीवे तब स्वस्थ रह बा।
1: बिल्कुल हो। देखा ऐसा बात है ना कि गांव में हम तू जब गाय भैंस चरावे जाई तो तालाबे में कूद के नहाई तो वहां तैरे सीख लेते
0: तैरे
1: हैं।
0: भैया वो बहुत बड़ा योगा रहल। हाँ भैया दे फरहर। हाँ
1: फरहर भाई देखा हो आजो भाई देखा फरुहा भाजी तो भैया थकावट नहीं महसूस हो
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो भाई भाई तैर तैरब भी पौड़ब भी जरूरी है।
0: हम तो ये भैया बुढ़ापा में कौन खनत बाई फड़ुआ भाजत बाई ने भैया दम बाय, आज गदेला हो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल पावत बायन, हाँफे लगत हुआ। तो भैया ये वह देन रहे कि सही ढंग से। अब देखा भैया हो कुआं से पानी खिंचात रहे,
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: भैया हो 10-10 ठे 20-20 ठे 15-15 ठे बैल रहे, गाय रहे, भैंस रहे, पानी खिंचाए, अब पूरा भैया हाथ पखुरा मजबूत होत रहल,
1: बिल्कुल भाई, हाँ
0: भैया लंबा लंबा

0: रहे हो सरसों का और अरहर का हरैठा लेके झाड़ू लगे हैं ये हो। अब तो ये कुल लड़िका के निक नहीं लगत बा, कमरा के अंदर मशीन बा ओके जिम कहत हैं अब ओकर शौक पाल लेहन। भैया हम कहीं अपने खेती किसानी गांव गिराव में जौन एक्सरसाइज हो जाला हो वो मशीनी से हो।
1: नहीं होए भाई, देखा हो फरुहा चलेबा और कुदार गोड़ब्या तो निश्चित रूप से भाई देखा शरीर
0: बिल्कुल
1: मजबूत रही और भूखो लागी।
0: हाँ
1: और देखा हो ना जोन परिवार कल्याण के बात के तहत भाई नहीं कि
0: हाँ।
1: तैरना एक जरूरत,
0: बहुत बढ़िया,
1: एक कला
0: वाह,
1: और नए आयाम।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: भाई तैरब काहे जरूरी है, ऐसे का शरीर का लाभ मिली यहाँ पे भाई सुशील चौरसिया से अपने अभिनव प्रज्ञ पांडे भैया बातचीत की है। तो ये तो सुनवावा जाई एकरे पहले कहते भाई कुछ ढोल गवनी हुई।
0: अरे बिल्कुल भैया, देखा रघुराज सिंह यादव उनका संघातिन भैया ढोलक मजीरा लेके मुस्कियात बैन, तो भैया से आवाज सुनल जाए बढ़िया विकास गीत।
1: हाँ भैया तन की सुनावा तो बढ़िया
0: हाँ
1: से।

0: भैया
1: भैया
0: सोने का चिरैया यह देसवा हमार बाटी।
1: ये भैया अपन देसवा तो सोने की चिड़ैया है ये हो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: काहे से
0: भैया।
1: कि भाई देखा हो यहाँ के किसान मजबूत यहाँ के जवान मजबूत है।
0: हाँ या
1: तो देखा हो कोनो चीज बात करे पहले कहते हैं ठीक सनेस भाई
0: बिल्कुल
1: ओका
0: बिल्कुल
1: सुनवाई
0: बिल्कुल
1: दे।
0: बिल्कुल सुना दा।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ
1: हाँ
0: भैया
1: भैया
0: देखा हो, ये तो गौनई सुनिए। अब परिवार कल्याण की बात के तहत तैरना एक जरूरत, एक कला और इसके नए आयाम।
1: वाह
0: तो भैया सुशील चौरसिया से अभिनव प्रज्ञ पांडे भैया बातचीत किए हैं, एक सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल सुनवाता।
2: श्रोताओं नमस्कार, पंचों राम राम। कहा जाता है कि कुछ एक ऐसी स्किल्स होती हैं, कुछ एक ऐसे कौशल होते हैं जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होते हैं और जीवन के अलग-अलग मोड़ पर वो कुछ इस तरह से काम आ जाते हैं कई बार कि आप खुद की और बाकी लोगों की भी जान बचा सकते हैं। उन्हीं में से एक है तैराकी। जी हाँ, स्विमिंग यानी कि तैराकी। कहने में ये एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी अहमियत आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसके परिवार का कोई व्यक्ति कभी कहीं दुर्भाग्यवश कहीं पर डूब गया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो। वो डूबता केवल अकेले नहीं है, वो कई सारे अपने ऐसे सपने

0: ने अपने पूरे परिवार के साथ में लेकर के डूबता है। शायद अगर उसे तैरना आता होता या उसको ये जो लाइफ सेविंग स्किल है जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं, जीवन बचाने का एक कौशल है, ये एक शौक भी है, ये एक खेल भी है, ये एक ज़रूरत भी है और ये एक मजबूरी भी है। आज पूरी तरह से हम बात करेंगे तैराकी के ऊपर, क्योंकि हर साल 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव दिवस मनाया जाता है। और ख़ास तौर से ये इसीलिए मनाया जाता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसलिए भी क्योंकि तैरना केवल एक खेल नहीं है, केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, एक बहुत अच्छा व्यायाम भी है। हम अलग-अलग तरीकों से व्यायाम करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन तैराकी एक ऐसा व्यायाम है शायद जिसमें पूरा शरीर पूरी तरह से व्यस्त होता है, इन्वॉल्व होता है। भूमिका को और अधिक ना बढ़ाते हुए हम आपको बता दें कि हमारे जो आज के मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में, सुशील कुमार चौरसिया जी, ये क्या हैं ये आपको खुद बताएंगे। और सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि इन्हें आम नाम में, आम तौर पर पिंकी सर के रूप में जाना जाता है। पिंकी सर, सरस्वती घाट में सवेरे अगर आप जाएंगे तो आप एक महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, हर वर्ग के, हर उम्र के लोगों का एक हुजूम देखेंगे यमुना के किनारे। वो क्या कर रहे होते हैं, वो या तो तैर रहे होते हैं या वो तैरना सीख रहे होते हैं, और ये काम करने में उनकी जो मदद कर रहा होता है व्यक्ति या जो कोच कर रहा होता है, उस व्यक्ति का नाम है सुशील कुमार चौरसिया या पिंकी सर। सुशील जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार श्रोता।
0: क्यों कोई तैरना सीखे, किसी को तैरना क्यों आना चाहिए?
1: तैरना इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहले मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जिम जाते हैं या तरह तरह की एक्सरसाइज करते हैं, वो सारी एक्सरसाइज आपको स्विमिंग में प्राप्त होगी।
0: अच्छा।
1: अगर आप स्विमिंग करते हैं तो शारीरिक प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और जो उम्र आपकी है वो उम्र वहीं रुक जाएगी अगर स्विमिंग करते हैं तो।
0: उम्र वहीं रुक
1: हाँ
0: जाएगी।
1: जी, 1,000 एक्सरसाइज के बराबर स्विमिंग है,
0: 1,000 एक्सरसाइज,
1: एक्सरसाइज के बराबर स्विमिंग है।
0: ये आप अनुभव किया है आपने।
1: जी
0: अच्छा, अपना एक छोटा संक्षेप में अनुभव बताइए कि कैसे आप इस तैराकी से कैसे जुड़े, कैसे दिमाग में ये आया कि नहीं हम इस क्षेत्र में जाएंगे।
1: मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ और अधिकतर स्विमिंग से। हमारे नाना जी हैं श्रीमान हीरालाल चौरसिया जी, जो वर्ल्ड चैंपियन है, विश्वविख्यात तैराक,
0: अरे वाह।
1: और उनका रिकॉर्ड है 88 घंटा 56 मिनट पैरों हाथ में बेड़ियां लगा के पानी में तैरते,
0: 88
1: एक घंटा
0: घंटे
1: छप्पन
0: छप्पन
1: मिनट
0: मिनट हाथ पैरों में बेड़िया लगा करके।
1: जी।
0: अच्छा।
1: और उन्हीं को देखते हुए हमको ये प्रेरणा मिली कि इसको लोगों तक पहुंचाया जाए और सिखाया जाए, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक बहुत ही जरूरी और लाभदेह है, इसको हर व्यक्ति को आना चाहिए।
0: तो तैराकी क्या सिर्फ एक खेल है या उससे भी आगे कुछ है?
1: तैराकी सबसे पहले तो जीवन रक्षक है, उसके बाद आप इसको चाहे खेल के रूप में लीजिए, चाहे टैलेंट के रूप में लीजिए, चाहे स्किल के रूप में, इसमें आप फ्यूचर भी ब्राइट कर सकते हैं, अपना भविष्य भी बना सकते हैं।
0: अच्छा।
1: जी
0: भारत जो है सबसे युवा देश है पूरे विश्व का, सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। ये भी देखने में आ रहा है कि युवा इस समय तनाव, अवसाद, डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, उनको दवाइयाँ तक लेनी पड़ जाती हैं डिप्रेशन की, तो क्या तैरना ये भी कम कर सकता है अवसाद, डिप्रेशन?
1: तैरना तो बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप तैरते हैं तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ ये सब तो आपके करीब ही नहीं आएंगे,
0: अच्छा।
1: और जो रोग हो रहा है वो भी ठीक हो जाएंगे स्विमिंग करने से।
0: कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जन्म से ही पानी से डर लगता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, वो कैसे सीखें?
1: वो एक बार पिंकी सर से मिले और पिंकी सर गारंटी के रूप में 1 हफ्ते में उनको सिखा देंगे और डर सारा खत्म कर देंगे। हमारे पास ऐसे ही एक जन आए हुए थे जिनके परिवार के अधिकतर लोग पानी में डूब के मर गए थे, ख़त्म हो चुके थे, तो उनका एक ही वारिस बचा था। ये बोला गया था कि पानी पास मत जाना, तो हमें लगा कि यार हमारे अंदर जो कला है हम इसके अंदर डाल दें तो वो डर ही ख़त्म हो जाए, तो हम उसको चुप्पे से ले गए, चुपके चुपके 1 हफ्ते में उसको सिखा दी। जब उसके घर वालों को पता चला तो वो लाठी डंडा लेके आए हमें मारने के लिए कि क्यों
0: अच्छा।
1: लेके गया, मेरा बेटा मर जाएगा, ये है सारे लोग गए एक ही बचा है। तो जब उन्होंने पूछा कि पिंकी सर कौन है, तो वहाँ के जो लोग सीख रहे थे तो उन्होंने बताया वो सर वो हैं। हमको बुलाया, पहले तो ऊट पटांग बोला, फिर जब बोला मेरा बेटा कहाँ है, हमने कहा आपका बेटा वो सिखा रहा है स्विमिंग। इतना सुनते में उनके हाथ से डंडे ही छूट गया और एकदम नज़ारा बदल गया। जहाँ हमको मारने को आ रहे थे वहाँ हमको प्यार करने लगे, अरे बेटा ये तो चमत्कार।

0: कार हो गया, तो हमको वो करके बहुत ही खुशी हुई, ये लगा कि हम आगे और अच्छा कर सकते हैं।
1: भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे हर गांव में तालाब होते हैं, फिर भी डूबने की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कारण इसका क्या हो सकता है?
0: सबसे ज्यादा कारण तो वही डर है, पानी
1: डर।
0: पास मत जा, वहां डूब जाएंगे, इस डर को दूर किया जा सकता है।
1: अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग महत्व देते हैं कि वो स्विमिंग पूल में जाकर के तैरना सीखें, लेकिन आप सीधे यमुना में तैराते हैं, ऐसा क्यों? डर नहीं लगता कि कहाँ पैर स्लिप हो गया, गहरे पानी में चले गए?
0: स्विमिंग पूल और जमुना जी दोनों अलग है। स्विमिंग पूल एक शौक है, वहाँ शौक के लिए लोग तैरते हैं, और जमुना जी क्या एक जरूरत है, वो वहाँ जरूरत के लिए लोग आते हैं। स्विमिंग पूल में हर व्यक्ति नहीं जा पाता, क्योंकि हर व्यक्ति उतना पैसे वाला नहीं होता कि वहाँ तक पहुँच सके। इसीलिए मैंने ये प्रेरणा लेके एक मुहिम चालू किया है कि हम सभी को स्विमिंग सिखाएंगे, फ्री में सिखाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग सीख सकें, अपनी भी जान बचाएं, दूसरे की भी जान बचा सकें।

0: क्या एक ज़रूरत है, वो वहाँ ज़रूरत के लिए लोग आते हैं। स्विमिंग पूल में हर व्यक्ति नहीं जा पाता, क्योंकि हर व्यक्ति उतना पैसे वाला नहीं होता कि वहाँ तक पहुँच सके। इसीलिए मैंने ये प्रेरणा लेके एक मुहिम चालू किया है कि हम सभी को स्विमिंग सिखाएंगे, फ्री में सिखाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग सीख सकें, अपनी भी जान बचाएं, दूसरे की भी जान बचा सकें।
1: कितनी उम्र से अगर बच्चों को सीखना है तो वो तैरना सीखना शुरू कर सकते हैं?
0: 5 साल
1: 5 साल।
0: जी
1: 5 साल का बच्चा पानी में यमुना में उतार देंगे?
0: जी उसको समझ आनी चाहिए हम कर क्या रहे हैं,
1: मतलब जो मुख्य ध्येय है वो है डर खत्म करना।
0: खत्म करना।
1: ठीक है। और कहा जाता है कि बचपने में आदमी जल्दी सीखता है चीज़ें। कोई अगर बचपने में नहीं सीख पाया, वयस्क या प्रौढ़ होने के बाद सीख रहा है, तो क्या वो भी उतनी ही आसानी से सीख लेगा?
0: जी बचपन में काफ़ी कठिनाई होता है सिखाने में और सीखने में, और बड़ों में ऐसा नहीं है। बड़ों में हम जो कहेंगे वो आप सुनेंगे, बचपन में जो हम कहेंगे वो आप सुनेंगे नहीं, करेंगे अपने मन की, तो ये परेशानी हो जाती है।
1: सबसे पहले तो जिनको तैरना नहीं आता है, उनका सबसे पहला जो दिमाग में डर रहता है वो ये रहता है कि हम सांस कैसे लेंगे। जब हम पानी में रहेंगे, हाथ पैर तो चल रहे हैं मगर हम नीचे जा रहे हैं, हम सांस कैसे लेंगे? इसका कोई क्या विशेष प्रक्रिया होती है
0: जी
1: क्या?
0: इसका सबसे पहले तो हम ले जाते हैं जो स्विमिंग का फर्स्ट स्टेप होता है वो सिखाते हैं कि आप मुंह से सांस लीजिए और नीचे नाक से छोड़िए, इसे कहते हैं बबलिंग।
1: बबलिंग।
0: हाँ जी
1: ओके।
0: वो कराते हैं 100-200, तो इससे एनर्जी प्राप्त होती है, तो उस एनर्जी को हम स्विमिंग में बदल देते हैं,
1: उस एनर्जी को आप स्विमिंग में
0: स्विमिंग में
1: बदल
0: बदल
1: देते हैं।
0: देते
1: मतलब
0: हैं।
1: केवल हाथ पैर चलाना ही स्विमिंग नहीं
0: नहीं
1: है,
0: है,
1: सांसों को नियंत्रित
0: बिल्कुल
1: करना भी बहुत ज़रूरी है।
0: सांस को काबू करना बहुत ज़रूरी है, सारा खेल सांस का है।
1: यमुना और स्विमिंग पूल में या किसी नदी और स्विमिंग पूल में एक ये भी अंतर होता है धारा का।
0: जी
1: स्विमिंग पूल में कोई धारा नहीं
0: जी
1: होती। अगर आपको डूबना है, आप डूब सकते हैं, तो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर ही डूबते हैं जैसे नदियाँ हो गई या खुले जो प्राकृतिक स्रोत हैं पानी के, वहाँ पर। आपको क्या लगता है, जो व्यक्ति ऐसी जगहों पर तैरना सीखता है नदी में, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पुख्ता रूप से तैरने में माहिर हो जाता है?
0: जी नदी में जो तैरता है वो ज़्यादा अच्छा तैर लेता है, और जो
1: अच्छा।
0: स्विमिंग में तैरता है वो ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो एक जगह बंधा हुआ है, वो इतना ओपन माइंड नहीं हो पाता कि हम तैर पाएंगे। क्योंकि अधिकतर मैं सिखाता हूँ, हर साल हम 5 साल से 50 साल तक जो बच्चों को सिखाते हैं उनकी संख्या 600 से 700 है, और सबको गारंटी 1 हफ्ते में सिखा देते हैं।
1: एक हफ्ते में।
0: लोग कहते सर ये कला आई कहाँ से, तो हमें भी नहीं पता। हमने कहा ये तो हम सिखाते हो गया, हमारे शंकर भगवान भोले बाबा जाने।
1: आपकी
0: हम
1: शुरुआत कहाँ से हुई तैरने की?
0: मैं जब 14 साल का था तो श्रीमान हीरालाल चौरसिया के साथ में जाता था, वो ट्रेनिंग देते थे, उनके साथ में जाता था, लेके जाते थे। उन्होंने ही हमें सिखाया, उन्होंने ये प्रेरणा दी, सीखो और सिखाओ
1: सीखो और सिखाओ।
0: सिखाओ।
1: आपको क्या लगता है कि जैसे जो शारीरिक शिक्षाओं के क्लासेस होते हैं स्कूलों में, उसमें एक तैराकी को भी अनिवार्य विषय के, कंपलसरी विषय के रूप में होना चाहिए, क्योंकि एक लाइफ सेविंग स्किल है ये?
0: ये बहुत ज़रूरी है, इसको होना चाहिए, इससे बच्चों में एक एनर्जी प्राप्त होती है, और स्विमिंग लगभग सभी को करनी चाहिए क्योंकि शारीरिक प्रॉब्लम जो है वो होएगी नहीं अगर आप स्विमिंग करते हैं। एग्जाम्पल आप रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, ये पिछले 25 साल से कंटिन्यू 1 घंटा स्विमिंग करते हैं। उन्होंने खुद इंटरव्यू दिया था कि मेरे फिट होने का राज ये है, रोज़ 1 घंटा स्विमिंग करना। अभी जो पाकिस्तान में भारत ने अटैक किया तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो भी स्विमिंग ही कर रहे थे, तो उन्हें बाद में पता चला कि ऐसा हुआ तो वो निकल के आए। तो ये स्विमिंग का ये है महत्व।
1: हम ये कहते हैं कि हमें यातायात जो ट्रैफिक रूल्स हैं
0: हाँ जी
1: उनका पता होना चाहिए, हमको जो फर्स्ट एड है वो आना चाहिए, कैसे किसी को प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है वो आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो जल सुरक्षा के जो प्राथमिक नियम हैं उनकी भी जानकारी हर व्यक्ति को होनी ही चाहिए?
0: जी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे दर्दनाक मौत पानी में ही होता है। हर व्यक्ति चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, बातें कर रहा है, एक जो डूबता है उसके दिल से पूछे, महसूस करिए, इसलिए सबको आनी चाहिए। इसीलिए मैं वहाँ पे इतना सरल बना दिया हूँ ताकि सब लोग आ सकें, इसको सीख सकें, और बदले में हम खाली आशीर्वाद ही लेते हैं, और कहीं मिलो अच्छे से बात करो, ये मेरी फीस है।
1: इतने सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, आपको ये नहीं लगता कहीं पर कोई गलती से गहरे पानी में निकल गया, डूब गया, तो कैसे बचाएंगे?
0: ये तो एक कला है जो वो लोग कह रहे हैं कि गॉड गिफ्ट आपको मिला है। वहाँ पे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार हमें बुलाया, बोला कि कुछ अद्भुत शक्ति आपके हाथ में लग गई है। तो मैंने कहा महाराज जी इसको हम जान के करेंगे क्या। उस पार दो लोग डूब रहे थे, जमुना जी के उस पार,

0: मुझे बताया गया कि उस पार को डूब रहे हैं। तो मैं बस विथ इन ये ड्राइव मारा, 7 मिनट के अंदर जमुना जी पार गए, दोनों को बचा लाए, दोनों आज हैं।
1: क्या बात है।
0: तो
1: अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि किसी को तैरना नहीं आता है, मान लीजिए दुर्भाग्यवश या कोई ऐसी आपदा आ गई जिसमें कोई व्यक्ति पानी में या बाढ़ के बीच में नदी में फंस गया, ऐसे में वो क्या कर सकता है अगर उसको तैरना नहीं आता है? तो उसके हाथ में कुछ है या अपने आप को नियति के भरोसे छोड़
0: नहीं
1: दें?
0: नहीं अगर वो तैरना नहीं जानता तो वो हाथ पैर चला के कुछ देर ऊपर रह सकता है, आवाज़ दे सकता है, इसमें जो अगल बगल जो लोग हों सुविधा पहुंचाना चाहे पहुंचा सकते हैं, इसमें 1 और 2 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता।
1: तैरने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, प्रकार होते हैं, कोई केवल पैर से भी तैर लेता है, कोई केवल हाथ से तैर लेता है। अच्छा, एक प्रश्न इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जो व्यक्ति दिव्यांग हैं
0: हाँ जी,
1: तो क्या वो उनके नियति में तैरना नहीं लिखा है
0: नहीं
1: विधा
0: लिखा है, हमने सिखाया है।
1: कैसे?
0: एक बार मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने ही पूछा कि आप विकलांग को सिखा सकते हैं, हमने कहा, तो वो स्वयं थे, एक पैर उनका नहीं था,
1: अच्छा,
0: वो लगा के नकली आए थे,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ हाँ हाँ
0: बोला वो मैं ही हूँ। तो मैंने कहा सर आइए, तो कहा सिखा देंगे हम, कहा सर अगर बोला है तो सिखाएंगे। तो उनको हमने हफ्ते भर में तो नहीं 10 दिन में सिखाया, तो ये गलत सोच है कि विकलांग लोग नहीं सीखते थे, वो मेरे पास आए मैं उन्हें सिखाऊंगा।
1: अच्छा, तैराकी को अगर हम युवाओं की बात करें तो हमने ये देखा है कि अलग अलग खेलों में भारत कुछ ही खेलों में बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन रहता है, लेकिन अगर इस तरह के खेलों की बात करें जैसे तैराकी है, उसमें भारत कभी भी बहुत आगे दिखा नहीं, इसके क्या कारण हैं? और इसी से जुड़ा एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूँगा पिंकी सर, कि कोई युवा अगर करियर बनाना चाहता है तैराकी को, तो
0: जी
1: वो क्या इस बारे में आश्वस्त हो सकता है कि वो आगे बढ़ सकता है भारत जैसे देश में?
0: बिल्कुल बढ़ सकता
1: और
0: है।
1: अगर करियर बनाना है तो उसके लिए क्या कुछ विशेष एक ज़रूरतें खान पान से जुड़ी हुई उसके पूरे करियर के लिहाज से आप बताइए।
0: वो इसमें फ्यूचर ब्राइट है, फर्क इतना है थोड़ा हार्डवर्क है, और अगर सरकार ध्यान देती है तो आपका भविष्य बन सकता है स्विमिंग में, क्योंकि प्रयागराज वगैरह छोटे शहरों में इस तरह कोई सुविधा नहीं है। जितने भी सरकारी स्विमिंग पूल है लगभग सब बंद है, और खुलने के लिए प्रयास किया जा रहा है, खुलता है तो यहाँ के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं।
1: अभी कुछ सालों पहले एक समाचार आया था कि एक छोटी सी बच्ची शायद प्रयागराज की ही
0: हाँ
1: थी,
0: जी
1: उसने इंग्लिश चैनल पार किया
0: हाँ
1: था।
0: जी
1: आपको क्या लगता है कि ये जो जुनून है, ये उत्साह है, ये भी अंदर से ही आता है, उसके लिए बहुत अधिक मेहनत, बहुत अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है?
0: प्रैक्टिस की ज़रूरत तो होती है, प्लस कुछ खानदानी भी होते हैं।
1: कोई अगर तैराकी ना सीखना चाहता हो, उसका कहना है कि हम पानी के पास जाना ही नहीं है हमको, हम क्यों सीखें, क्यों इतनी मेहनत करें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों सीखे वो, कैसे सीखे, आप उसको कैसे प्रेरित करेंगे?
0: हम उससे यही कहेंगे आप तैराकी सीखिए और खुश भी होंगे, औरों को खुश रखेंगे, और कोशिश यही रहेगा अगर आप सीख जाते हैं तो आपके जो जीवन है बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि आप अगर हिंदू धर्म के या कोई भी धर्म के, गंगा जमुना सरस्वती या कोई नदी वगैरह हम जाएंगे ना, तो कम से कम डर तो नहीं लगेगा कि हम डूब जाएंगे। आप अगर सीखे रहेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस जगह का मज़ा ले सकते हैं, उस जगह को घूम सकते हैं। अब अगर नहीं सीखा है तो डर लगेगा, अरे पानी में नहीं जाएंगे, और अगर सीखते हैं तो आपको शारीरिक मानसिक दिमागी सब रूप से आप फिट रहेंगे, जैसे बच्चे खेलते हैं हंसते बोलते खाते वैसे आप करेंगे, इसलिए सीखना चाहिए।
1: अगर किसी को सांस की बीमारी है वो भी सीख सकता है,
0: हाँ जी
1: कोई समस्या नहीं होगी
0: नहीं
1: तैरने
0: होगी,
1: में?
0: मैंने सिखाया, दमा वालों को सिखाया है, मतलब कई तरह के, और उनको गारंटी भी देता हूँ अगर मैं आपको सिखाता हूँ हफ्ते 10 दिन में ये रोग ख़त्म हो जाएंगे। और जब ख़त्म होता तो आप बड़ा आश्चर्य से हमसे देखते हैं, कहते सर आप वास्तव में भगवान हैं क्या, क्यों इतनी इलाज किया हमने नहीं ठीक हुए।
1: कोई विशेष एक मौसम होता है जिसमें, मतलब अगर किसी को सीखना हो तो वो उसी मौसम में ही उसको सीखना शुरू करना चाहिए?
0: ये अधिकतर गर्मी में होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ जी ये मार्च से जून तक अच्छे से सीख सकते हैं।
1: जी, मार्च से जून
0: जी
1: तक
0: जी
1: अच्छे से सीख
0: जी
1: सकते हैं। बाकी और कुछ जो आप हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या उनको संदेश देना चाहें, विशेषकर तैराकी को लेकर के?
0: हम श्रोता से यही कहेंगे अधिक से अधिक संख्या में आप लोग स्विमिंग सीखिए, जो डिप्रेशन का शिकार, जो गठिए का है, तरह तरह की जो बीमारी है, स्विमिंग से ऐसा नहीं होगा। आप इस चीज़ को डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, और स्विमिंग सीखने से ये लाभ होगा आप हर तरह से फिट रहेंगे, हर काम बहुत अच्छे से करेंगे, और जो आपके ऊपर चिड़चिड़ापन या बड़े कुछ कहते हैं गुस्सा जाना वो भी सब खत्म हो जाएगा, और जो भी आप खाएंगे पियेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, पानी भी पियेंगे तो मीठा लगेगा।

0: खाना भी रूखी सूखी भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में आके स्विमिंग सीखिए, हमें खुशी होगी और आप लोग को कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: तो श्रोताओं, ये थे सुशील कुमार चौरसिया या पिंकी सर, जो कि अपने स्तर से, अपने व्यक्तिगत स्तर पर बहुत सारे लोगों को तैरना सिखा रहे हैं, तैराकी सिखा रहे हैं, ताकि वो खुद की और उन लोगों की जान बचा सकें जो कभी ऐसी आपदा में, ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं। तैरना ज़रूर सीखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, कब काम आ जाए किस तरीके से कोई नहीं कह सकता। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: हाँ भैया,
3: देखा हो सुशील चौरसिया भैया से कितना बढ़िया
2: तरीके
3: बढ़िया,
2: से बढ़िया, भैया
3: अभिनव प्रज्ञ पांडे भैया बातचीत की है कि भाई तैरब काहे जरूरी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखा बातचीत से ये बिल्कुल जानकारी में आयल है भैया, तैरब बहुत अच्छा व्यायाम है, शरीर के हर अंग के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद चीज है।
3: बिल्कुल भाई, देखा हो बेरामी भैया दूर भागा था, तो निश्चित रूप से हर भैया बहनी के अपने गदेलन के भाई उत्साहित करे के चाहिए कि तैराक जरूर बने।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: अब देखा हो कहते हैं कि चलत चलाओ कुछ गाँव नहीं एकठी भाई मन कहत बाय।
2: बिल्कुल भैया,
3: तो राम सुरेमन और संघातिन के भाई बिरहा हो।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: तनी ढोल भैया बजिया तनी गमाई हो।
2: बिल्कुल बजा दा।

0: हाँ भैया,
1: देखा हो भाई राम सुरेमन और संघातिन का जो विरह सुन के ना
0: खूब
1: हो
0: खूब भैया, खूब
1: यार
0: भैया,
1: भाई, मन तो हरियर हो गया हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखा हो हम कहते हैं कि जब बरसात का मौसम चलत है और खेते में भाई धान के फसल लहलहात रहा है, तो ये जान ला कि किसान का नया जीवन मिल जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मोती भैया, देखा रुपाई के बाद ना, देखा बहुत सारे किसान भैया भैया देखा घास वास का तो दवाई शुरू में डाल देना, लेकिन हो एकरे बाद दो भाई नहीं कि रुपाई कई के घरे में बैठ जाए,
1: नहीं
0: हाँ
1: नहीं
0: डांडे मेड़े भैया घूमत रहें टहलत रहें, अगर उनके कौनो तल बेतल दिखाए तो भैया हो दो चार जगह से पौध निकाल लें ओकर। अब भैया देखा कृषि रक्षा इकाई केंद्र जौन हो वहाँ बड़े बड़े जानकार वैज्ञानिक भैया लोग रहते हैं, हाँ अब वहाँ लेके जा भा ओके दिखा के ओके भैया समझें,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आ जौन भैया सलाह दें वही अनुसार भैया आकर के ओकर उपचार भी करें।
1: बिल्कुल भाई, देखा हो मेड़े डाड़े रोज जाए से न हो घनश्याम भैया, ये पता लागत रहा।

0: कि खेते के जरूरत का
1: जरूरत
0: भा।
1: का हो,
0: तो
1: जरूरत
0: ऐसे
1: का
0: भाई देखा समय पे अगर कोनो रोग बेरामी लागत बा तो उपचारों भी हो जात है। एक
1: बिल्कुल।
0: बात और कही, जौन हमरे लोग भैया देखा बतियाई थे न और जानकारियां दी थे, वो भैया बहनिन के कैसन लागत बाटे एकरे बारे में भाई सुझाव चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हो तो देखा अपन भैया ना आकाशवाणी के व्हाट्सएप नंबर भी हो,
0: हाँ
1: ये पर
0: हाँ
1: भैया वो अपन कार्यक्रम से संबंधित अपन विचार दे सकत हैं, और भैया कार्यक्रम के बदे में का बदलाव का तरह का चाहत बहन यहू के संदर्भ में बता सकत हैं मोती भैया। आ किसान भैया देखा उठायला पेंसिल और कॉपी, अब मोती भैया बताओ थे नंबर, ओके लिख ला।
0: ये भैया नंबरवा बाटन हो, 800-4926-2500।
1: वाह वाह भैया, 8004926250।
0: हाँ तो भैया ये नंबर बाटे, यह नंबर पे भाई जानकारी दे सकत हैं कि कार्यक्रम में का बदलाव लावे के चाहिए, का सुझाव बाय।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: देखा हो अब घड़ी कहत बा कि घर इतनो तोहार भाई राह लखत हैं, तो पंचन से राम जोहारी किया जाए, तो पंचो
1: राम
0: राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।

गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता में सीजेपी ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में जारी प्रदर्शन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की चर्चा में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से संबंधित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने सीजेपी की इस मांग को मान लिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई एफआईआर दर्ज की गई है तो उसे वापस ले लिया जाएगा और एफआईआर की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: आत्महत्या करने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेजने के बाद कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में आज जालौन विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए अपनी गौरवशाली और नई पहचान को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है।
2: बुंदेलखंड में कभी

0: सूखे की मार झेलनी पड़ती थी। ये क्षेत्र बीहड़ था, अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक ओर करते हुए आज इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है। देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनपद फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 12 वर्षों में छात्रों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
0: आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के दिन, आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां 342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आगरा पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है, जिनके ज्ञान, करुणा और सद्भाव के शाश्वत संदेश से विश्व प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मान्यता देश की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है। श्री मोदी ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर वाराणसी के निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ये काशीवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
2: सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना हम सभी काशीवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। भगवान बुद्ध की प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन स्थली को मिली यह वैश्विक पहचान भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है। हम इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त करते हैं।
1: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद कल पीलीभीत के पूरनपुर में ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा बदायूं में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री वर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस सेवा के शुरू होने से बदायूं और उजहानी क्षेत्र के यात्रियों को राजधानी लखनऊ के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी।
3: उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य भी मिलेगा। हरी झंडी में अपने जो गृह नगर है, होम टाउन है उजहानी, उस रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उजहानी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में सबसे पहली योजना में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था।
1: प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर वर्षा जारी है। कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में 25 मिली

0: मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 27 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है।
1: मानसूनी प्रवाह बढ़ने के दृष्टिगत 27 जुलाई से पुनः प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ने से प्रदेश में व्यापक वर्षा के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ की प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता की वार्ता, डॉक्टर कुबेर नाथ राय का रचना संसार।
3: नमस्कार साथियों, आज मैं लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता आप सभी के समक्ष कुबेर नाथ राय का रचना संसार इस पर अपनी बातचीत रखूंगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित निबंधकार कुबेरनाथ राय का जन्म 26 मार्च 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मत्सा ग्राम में हुआ। काशी से अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने अंग्रेजी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA किया। कलकत्ता में 1959 तक अध्यापन कार्य करने के बाद नलबारी महाविद्यालय असम में 28 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। असम में जब स्थितियां प्रतिकूल हो गईं, तब उन्होंने अपने गृह जनपद में आकर स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में अपने निधन यानी 5 जून 1996 तक सेवा दी। बचपन से मेधावी रहे कुबेरनाथ राय जी ने कम उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने लेखन का आरंभ माधुरी तथा विशाल भारत, जो क्रमशः लखनऊ और कोलकाता से प्रकाशित होते थे, में छात्र जीवन से लिखना आरंभ किया। किंतु पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी की प्रेरणा से सरस्वती में वर्ष 1962 से वे कहते हैं कि उन्होंने सचेत रूप से लिखना आरंभ किया। उनका पहला ललित निबंध वर्ष 1964 में धर्मयुग में उसके तत्कालीन संपादक डॉ. धर्मवीर भारती ने प्रकाशित किया। जब उनकी पहली कृति प्रिय नीलकंठी 1968 में प्रकाशित हुई, वे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा निबंध के चिरपरिचित हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने निबंध में भी अपना क्षेत्र ललित निबंध को ही बनाया और अंत तक इसी विधा में लिखते रहे। उनके निधन से पहले प्रिया नीलकंठी से लेकर उत्तर कुरु तक 16 ललित निबंधों के संकलन प्रकाशित हुए। निधन के बाद मोहम्मद हारून रशीद खान के सहयोग से 5 निबंध संकलन और एक आलोचनात्मक किताब स्वामी सहजानंद पर प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त उनका एक काव्य संग्रह कथामणि भी प्रकाशित हुआ है, जिससे उनके कवि हृदय होने का पता चलता है। वैसे उनके निबंधों में उनके कवि मन की झलक हर कहीं दिखाई पड़ती है। उनका समग्र लेखन कुबेर नाथ राय रचनावली शीर्षक से 13 खंडों में प्रकाशित है, जिसका संपादन नर्मदा प्रसाद उपाध्याय और मोहम्मद हारून रशीद खान ने किया है। ये वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कभी कहा था कि गद्य कवियों की कसौटी है और निबंध गद्य की कसौटी है। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निबंध लेखन अपने आप में कठिन विधा है और उसमें अपनी उपस्थिति, बल्कि महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाना आसान काम नहीं। लेकिन कुबेरनाथ राय ने इसे जितनी सहजता के साथ साधा है, वह आश्चर्यचकित करता है। इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र की

परंपरा में रखा जाता है। रचनावली संपादक ने इस संदर्भ में लिखा है, अपने अनेक निबंध संग्रहों में अपने लेखन को लेकर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं तथा ललित निबंध की अवधारणा को लेकर भी अपने विचार स्पष्ट करते रहे हैं। अपनी कृति दृष्टि अभिसार में उन्होंने ललित निबंध को केंद्र में रखकर उस विधा के बारे में चर्चा की है। वे कहते हैं, ललित निबंध एक महत्वपूर्ण एवं संपूर्ण वांग्मय है। इसमें व्यक्त दृष्टिकोण की युक्ति युक्तता इसी के अंतर्गत निहित रहती है, यही इसकी संपूर्णता एवं स्वयं पूर्णता है। इस तरह वे ललित निबंध को क्षितिज की तरह विस्तार देते हैं। राजशेखर के हवाले से वे कहते हैं कि वांग्मय दो प्रकार का होता है, शास्त्र और काव्य। ललित निबंध की विधा में शास्त्र भी है और काव्य भी है। वे ललित निबंध की तुलना महाकाव्य से करते हैं और उनका मानना है कि ललित निबंध कोई शुद्ध मौज शौकिया मात्र आनंद से जुड़ी विधा नहीं है। इसमें एक व्यक्त या अव्यक्त जीवन दृष्टि रहती है। यह एक दृष्टि संपन्न विधा है, शुद्ध काव्य विधा नहीं है, और इसी कारण इसमें शास्त्र भी है और काव्य भी। हम पढ़ते पढ़ाते हुए निबंध को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, विषय प्रधान निबंध और विषयी प्रधान निबंध। विषय प्रधान निबंध मूल रूप से वैचारिक होते हैं और उनके केंद्र में विषय ही होता है, जबकि विषयी प्रधान निबंध ललित निबंध होते हैं, लालित्य से भरे हुए होते हैं और उसके बहाने एक विस्तृत दुनिया को रचते हैं। पाठक को मनोभावों के ऐसे संसार में ले जाते हैं जिसकी उसने कल्पना भी न की होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको आकाशवाणी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना है तो विषय प्रधान निबंध में निबंध लेखन आकाशवाणी से सीधे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यात्रा करेगा और उसमें विचार होगा, इसी के आसपास चक्कर लगाएंगे। लेकिन विषयी प्रधान निबंध में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होगा कि निबंधकार आकाशवाणी से शुरू करेगा, वह आकाशवाणी के आरंभ की ओर जाएगा, आगे बढ़ते हुए इंदिरा चौराहे पर हो सकता है वह रुके और इंदिरा गांधी के जीवन में प्रवेश कर जाए। यदि वह दाहिनी ओर मुड़ गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर के सौंदर्य पर बात कर सकता है, न्यायतंत्र पर बात कर सकता है, लोगों की इकट्ठी भीड़ को भी वह अपना विषय बना सकता है। यदि वह सीधे चल पड़ा तो हर चौराहे से गुजरते हुए उसके इतिहास भूगोल को खंगाल सकता है, मनुष्यता की टोह ले सकता है। लोक सेवा आयोग, हिंदू हॉस्टल, चंद्रशेखर पार्क, इंडियन प्रेस, बालसन चौराहा, भारद्वाज आश्रम, आनंद भवन, स्वराज भवन से होते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। इस तरह यह पूरी यात्रा जितनी ऐतिहासिक होगी उतनी ही सांस्कृतिक। इसमें समाज का व्यापक रूप और व्यक्ति के मानस का सौंदर्य सहज ही उद्घाटित होगा। कुबेरनाथ राय अपने निबंधों में बहुत कुछ ऐसा ही करते हैं। उनके निबंध पुराणों से, मिथकों से, लोक गाथाओं से आकार लेते हैं, जहाँ प्रवेश करते हुए हम लगातार अपने को समृद्ध कर रहे होते हैं। जब वे किसी पात्र को विषय बनाते हैं तो उसको देखने की प्रचलित दृष्टि को भी पूरी तरह से बदल देते हैं। भारतीय लोक और संस्कृति के विरल गायक के रूप में वे हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। जब वे दूसरी सभ्यताओं और भाषाओं के महानायकों और परंपराओं के महान लेखकों को अपना विषय बनाते हैं तो भी उसे अपनी मिट्टी और अपने समय से जोड़ देते हैं। उनके ऊपर की गई टिप्पणी ललित मनोहर शैली में पुराणों, मिथकों और अन्य ग्रंथों की सामग्री पर उनकी समसामयिक प्रसंग की टिप्पणी उन्हें एक विशिष्ट निबंधकार बनाती है, जहां उनकी दृष्टि इतिहास बोध या तर्क के बजाय सौंदर्य पर अधिक टिकी रहती है। सौंदर्य की अकुंठ अभिव्यक्ति को उनके निबंधों का प्राण कहा गया है। कुबेरनाथ राय के मैंने कहा है कि 16 जो है निबंध संकलन है जो उनके रहते प्रकाशित हुए, और बाद में 5 संग्रह और आए जो मोहम्मद हारून रशीद खान की देखरेख में प्रकाशित हुए। पहला निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी 1968 में प्रकाशित हुआ था, फिर रसाकेटक 1970 में, गंधमादन 1972 में, विषाद योग 1974 में, निषाद बासुरी 1974 में, पर्णमुकुट 1978 में, महाकवि की तर्जनी 1979 में, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980 में, किरात नदी में चंद्र मधु 1989 में, मन पवन की नौका 82 में, दृष्टि अभिसार 82 में, त्रेता का वृहत साम 86 में, चिन्मय भारत 86 में, कामधेनु 1990 में, मराल 1983 में और उत्तर कुरु 1994 में। इसके बाद कुछ संकलन और आए। आप इसमें से देखेंगे कि वे प्रिया नीलकंठी से ही वे चर्चित हो जाते हैं और उसके बाद रस आकेटक, गंधमाधन, निषाद बासुरी, महाकवि की तर्जनी जो है, मराल, ये तो इतने चर्चित हुए कि कुछ पूछना ही नहीं।

जब आप उनके निबंधों में प्रवेश करते हैं तो फिर वो चाहे बात प्रकृति की हो, चाहे नायकों की हो, चाहे वो कवियों की हो, चाहे वो व्यंग की धार हो या उनका चुटीला अंदाज हो, सब कुछ जैसे कि आपको खींच लेता है। कुछ निबंधों के दृष्टांत भी हम देख सकते हैं। जैसे कुबेरनाथ राय के निबंधों में, जैसा कि मैंने कहा था, एक अलग ही यात्रा होती है, लेकिन यह सिर्फ कोरा गप नहीं होता, बल्कि जीवन और दर्शन से भरा होता है। अपने पहले निबंध संग्रह के पहले निबंध गुलर का फूल में वे गुलर की प्रकृति को उसी के हवाले से स्पष्ट करते हैं। अब ये दिलचस्प है जानना कि गुलर क्या कह रहा है। गुलर कहता है कि असुर का वध करने के पश्चात उनके नखों में भयंकर जलन होने लगी। उनके नखों में मतलब नरसिंह अवतार की बात कर रहे हैं वो, भयंकर जलन होने लगी। यह जलन जब किसी उपाय से शांत न हो पाई तो नारायण पीड़ित होकर हमारे पास आए। तीनों लोकों के त्राता जनार्दन को अपने दरिद्र द्वार पर खड़ा याचना की मुद्रा में देखकर मैं धन्य धन्य हो गया और उन्हें अपना शरीर समर्पित कर दिया। उनकी नख ज्वाला तो मेरे शरीर में नखों के धसाने से शांत हो गई, परंतु उस दाह को खींचकर मेरा शरीर विषाक्त हो गया। तभी से फोड़े की तरह फल व्रण ही मुझमें लगता है, पुष्प मुझमें नहीं लगता। फल भी रसहीन और कीटपूर्ण होते हैं। तो नरसी अवतार की जो है कहानी में, उसकी कथा में अगर आप इस कथा को जोड़ देते हैं तो आप ये पाएंगे कि यह जो है उस स्वरूप की उत्तर कथा मालूम पड़ती है, जिसमें गुलर के योगदान को समझा जा सकता है, उसकी पीड़ा को और उसके वर्तमान के स्वरूप को महसूस किया जा सकता है। इसी तरह सनातन नीम शीर्षक निबंध में निबंधकार ने नीम की चर्चा करते करते जॉर्ज आरविल के उपन्यास 1984 तक को इसमें शामिल कर लिया है। वे कहते हैं, साहित्य में हमारे बाद ही प्रलय का नारा बहुत चल रहा है। सबसे अधिक बुलंद आवाज जॉर्ज ऑरवेल के प्रसिद्ध उपन्यास 1984 में व्यक्त हुई है। 1984 का घटनाकाल आने में 20 वर्ष की देर है। तब तक मनुष्य की आत्मा का प्रकाश दुर्वह अधिनायकवाद की लौह प्राचीर छेद कर बाहर आ जाएगा। ऐसे लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं। आत्मा का लोहा सबसे कोमल और सबसे कठोर होता है। इसी से सारी विकृतियों के बावजूद कुछ मामूली धीमी सस्ती जीवन की बूंदे प्रत्येक विकृत युग में बच रहती हैं। नीम का फूल उसी मामूली धीमी सस्ते परंतु अमर स्नेह का संकेत करता है। इस तरह निर्वासन और नीलकंठी प्रिया निबंध में कुबेरनाथ जी बसंत से होते हुए निर्वासन तक पहुंचते हैं और गुरुदेव रविन्द्रनाथ को याद करते हैं। रविन्द्रनाथ निर्वासन रस के कवि नहीं थे। साहित्य में निर्वासन को स्वतंत्र रस के रूप में नवलेखन के अंदर देखा जाने लगा है। रविन्द्रनाथ अकेलापन के कवि हैं। नित्य अकेलापन में कवि अपने एकांत में, अपने चरम क्षणों में अकेले जीता है। परंतु उन्होंने यक्षपुरी का राज्य बनना इसलिए हे और विकृत माना है कि वह अकेला ही नहीं, निर्वासित कोटरबद्ध जीव है। अकेलेपन में आवश्यक नहीं कि निर्वासन ही हो। इस तरह कवियों की दुनिया पर निबंधकार ने बार बार विचार किया है, जैसे वह अपने समय के कवि को सचेत कर रहे हों। अपने पढ़े लिखे समाज पर भी वे चुटकी लेते हुए विचार करते हैं। यह जरूर है कि यह सब विसंगतियों को उजागर करते हैं और उनसे बाहर निकलने की छटपटाहट पाठक में पैदा करते हैं। वे रस आखेटक में होमर, वर्जिल और शेक्सपियर पर मोनोलॉग लिखते हैं। ये तीनों मोनोलॉग उनकी लेखनी का कमाल दिखाते हैं। इन्हें पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि पाठक इन लेखकों के समय में प्रवेश कर गया है, या ये लेखक पाठक के समय में प्रवेश कर गए हैं। वे वर्जिल पर लिखते हुए अंत में कहते हैं, होमर यदि यूरोपीय साहित्य का कवि पितामह एवं कवि व्याघ्र है तो कवि गुरु कवि सुपर्ण यानी राजपक्षी हूँ मैं, जो रोमन ध्वज पर निरंतर सवार होकर चलता है। हमारे बाद आता है दाते, जो यूरोपीय साहित्य के महाकांतर का मनियारा सांप है। शेक्सपियर पर लिखते हुए उन्होंने उनकी रचनाओं और समय की सटीक ढंग से व्याख्या की है। रचनावली के संपादक ने भूमिका में लिखा भी है कि शेक्सपियर ने जो प्रेम केंद्रित ग्रंथ लिखे उनके शीर्षकों के संबंध में कुबेर जी ने इस निबंध में उनका हिंदी रूपांतरण भी किया है, जैसे एकांत समर्पण रोमियो एंड जूलियट, बासंती विदग्धता एज यू लाइक इट, अबोध सुकुमारिता टेम्पेस्ट, तीव्र वासना एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, वाग विदग्धता लव्स लेबर लॉस्ट, अबोध करुणा ओथेलो, हेमंती वासना हैमलेट, रिक्त प्रवंचना ट्रायल्स एंड क्रिसिडा इत्यादि। अपने आलोचकों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संबंध में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। शेक्सपियर पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके पात्रों में सजीवता वहीं पर आई है जहां विकृत

0: संदर्भ है। इसके संबंध में शेक्सपियर कहता है कि मैं जिस युग में पैदा हुआ था उसके प्रति अनुभूति की ईमानदारी मुझे बरतनी ही चाहिए। मेरा युग ही विकृत था, मैं तो अनुभूतियों का दर्पण मात्र हूँ। शेक्सपियर ने अपने युग का वर्णन करते हुए कहा कि उनका युग मुक्त मदिरापान था तथा मुक्त वासना का युग था। वह कैथोलिकों पर होने वाले अमानुषिक अत्याचारों का युग था। शेक्सपियर कहता है कि मैंने प्रत्येक पृष्ठ अपने हृदय के रक्त से लिखा है। जैसे तुम्हारे तुलसीदास ने मुगलों के अत्याचारों की व्यंजना के लिए वक्रोक्ति का आश्रय लिया, वैसे ही मैं भी जब सड़े हुए डेनमार्क की चर्चा करता हूँ तो मेरा संकेत अपने ही रक्त प्लावित देश से है। हैमलेट की आलोचना करने वालों के बारे में उसने लिखा कि यह मुझे ही नहीं मालूम था कि मैं अनेक तहों में से कौन सी तह को व्यंजित करना चाहता हूँ। शेक्सपियर ने अपने आलोचकों के तीन दलों के संबंध में भी विवरण दिया है और निबंध के अंत में जब पूरब दिशा पर लालिमा का आभास शेक्सपियर के प्रेत को मिलता है तो वह कहता है कि अंधकार रहते रहते यह धरती छोड़कर मुझे प्रेत लोक में लौट जाना चाहिए। कुबेरनाथ राय का लेखन बहुत विस्तृत और बहुआयामी है। ऐसे में इतनी छोटी अवधि में उन पर समग्र रूप से बात नहीं हो सकती। एक दृष्टांत ही दिया जा सकता है, पाठकों में जिज्ञासा ही उत्पन्न की जा सकती है। यह जरूर है कि उनके लेखन में प्रवेश करने के बाद पाठक उन्हें छोड़ नहीं सकता। मन कहता है जो भी उन्होंने लिखा है सबकी यात्रा कर ली जाए। यह पूरी यात्रा पाठक को बेहद समृद्ध करने वाली है। यह जरूर है कि जिस तरह के विषय उन्होंने उठाए हैं वे तत्समिष्ट भाषा में ही सुरुचि संपन्न बनते हैं। नए पढ़ने वालों के लिए कुबेरनाथ जी थोड़े जटिल हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान का अमृत भी इसी बहाने मिलता है। उम्मीद है कि हमारे पाठक कुबेरनाथ राय जी को पढ़ेंगे, समृद्ध होंगे और यह पूरी यात्रा इतनी दिलचस्प है उनके यहाँ कि भारतीय लोक, भारतीय ऋतुओं का, नक्षत्रों का और यहाँ के देवी देवताओं का, वैदिक और पौराणिक संदर्भों का जो संदर्भ लेते हैं उसकी इतनी विराटता है, इतनी तहें हैं, इतने आयाम है कि आप जब उनसे गुजरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुबेरनाथ राय का लेखन हमारे अध्ययन का एक तरह से अनिवार्य अंग है, उससे गुजरना चाहिए, उसे देखना चाहिए। तो आपने मुझसे सुना कुबेरनाथ राय के रचना संसार के बारे में। उम्मीद है कि आप कुबेरनाथ राय जी की रचनाओं से गुजरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता की वार्ता डॉक्टर कुबेरनाथ राय का रचना संसार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। लीजिए सुनिए कौशिकी राय के गाए भजन। सबसे पहले मीराबाई की भक्ति रचना।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मानसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए।

अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्ह 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने 1 ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेट्टी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेट्टी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्ह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने

की चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के 4थे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सेहत की बात इसके अंतर्गत लीजिए सुनिए डॉक्टर जीएस तोमर से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत। स्वर्ण प्राचीन एक जानकारी।
1: श्रोतो नमस्कार, सेहत की बात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेहत जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा धन आज के दौर में अगर कुछ है तो वो सेहत ही है, और ये हमने कोरोना काल में देख लिया है। ऐसे लोग जिनके पास लगभग सारी सुविधाएं थी, वो भी सेहत खराब होने के बाद वो सारी सुविधाएं, वो सारे संसाधन, कई लोग ऐसे भी थे जिनके काम नहीं आ पाए। अंत में प्रश्न ये उठता है, सेहत से बढ़कर भी कुछ है क्या, खासकर तब जब वो हमारे बच्चों की हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो प्राचीन इतिहास है हमारा, जिस तरह से हमारी जीवन शैली प्राच्य काल से चली आ रही है, जब वैद्य हुआ करते थे तब ये एक संस्कार के साथ साथ एक जीवन का अंग हुआ करता था बच्चों के लिए। आज हम बात करेंगे स्वर्ण प्राशन की। स्वर्ण प्राशन क्या है, क्यों जरूरी है, आज के दौर में इसकी क्या महत्ता है, बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज के प्रख्यात आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर जीएस तोमर। डॉक्टर तोमर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का चयन किया है। वेद विश्व वाङ्मय के प्राचीनतम ग्रंथों के रूप में स्वीकार्य है, और ये अथर्ववेद का उपांग होने के नाते आयुर्वेद की प्राचीनता स्वयमेव स्वीकार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन काल से मनुष्य में लंबे समय तक जीवित रहने की आकांक्षा रही, इसी के चलते दीर्घन जीवितीय मध्यायम व्याख्या से हमारे आयुर्वेद में पहला अध्याय जो दिया गया, किस प्रकार से हम बिना किसी रोग के लंबे समय तक जीवित रह सकें। इसी परंपरा में स्वर्ण प्राशन को हमारे महर्षियों ने हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके किस प्रकार से हम रोगों से शरीर की रक्षा कर सकें इसके बारे में उल्लेख किया। महर्षि कश्यप, उसके संदर्भ में उन्होंने लेहन अध्याय में स्वर्ण प्राशन का उल्लेख किया कि स्वर्ण प्राशन को यदि हम बच्चों में कराते हैं तो ये निश्चित रूप से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के यहाँ जब बच्चा पैदा होता था तो स्वर्ण भस्म को चटाया जाता था, यही स्वर्ण प्राशन की प्रारंभिक परंपरा थी। और आपको प्रसन्नता इस बात की होगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अमूर्त अंग है जिसके आधार पर 16 संस्कार किए जाते हैं। इस 16 संस्कारों में स्वर्ण प्राशन भी एक संस्कार है। हम स्वर्ण प्राशन से लेकर के अन्य इस प्रकार की चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों की जीवनचर्या को, जीवन शैली को किस प्रकार से जीवन काल मर्यादा बढ़ा सकें, उनको स्वस्थ रख सकें।
1: बीच में ऐसी भी कई सारी न्यूज आई थी या देखने पढ़ने सुनने को मिला था कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको भी स्वर्ण प्राशन दिया जा सकता है, ऐसा है क्या?
2: मेरा अनुभव ये है कि स्वर्ण प्राशन न केवल बालकों को, इवन कि हमने जीरेटेड प्रॉब्लम में वृद्धावस्था के लोगों को भी दिया, गर्भावस्था में स्त्रियों को भी दिया जा सकता है। निश्चित रूप से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक मूल उपाय है।
1: रिसर्च के दौरान हमको एक श्लोक मिला कि सुवर्ण प्राशनम, ये कश्यप संहिता का ही है, सुवर्ण प्राशनम हेतन मेधाग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृषम वर्ण्यम ग्रहापहम। इसमें लगभग हर तरह के लाभ बता दिए गए हैं। स्वर्ण प्राशन, हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को संक्षेप में बताएं कि ये है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों है, खासकर आज के समय में।
2: देखिए कि आज हम देख रहे हैं कि हमारी जीवन शैली में बड़ा बदलाव हुआ है, और उस जीवन शैली में मूल रूप से हमारे खान पान में, आज की संस्कृति हमारी माँ का बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, खान पान का प्रभाव पड़ता है। पिज्जा नूडल्स बर्गर की संस्कृति हमारे घर में जड़ों तक प्रवेश कर गई है, और हमारी जो ट्रेडिशनल फूड कल्चर थी उस फूड कल्चर से हम बहुत दूर हो गए हैं। नतीजा ये हो रहा है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बड़े धीरे धीरे गिरावट आ रही है, और क्षमता कम होने के कारण छोटी छोटी बीमारियों के बच्चे शिकार हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्वर्ण प्राशन कराने की परंपरा है, जो कि 24 कैरेट गोल्ड की भस्म होती है। इस भस्म को 2 मिलीग्राम की मात्रा में, मैक्सिमम 2 मिलीग्राम्स की मात्रा में हम लोग शहद और साथ साथ में हम घृत को विषम मात्रा में मिला करके इसका हम लिक्विड बनाते हैं, तैयार करते हैं, और इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो है एक तरह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता

0: बढ़ाने का एक बहुत अच्छा उत्कृष्ट उपाय है। हमारे पास इसे कहते हैं कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ आयुर्वेद। ये हमारा जो है बाल्यम वृद्धिर छबिर मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमऊ और बुद्धि कर्मेंद्रियश्चेतो जीवितम दस्तो वर्षेत। इस शारंगधर संहिता में 16वीं सदी में बताया गया कि जीवन के 10 दशकों में बांटा गया 100 वर्ष तक की आयु को, और पहले दशक में बाल्य का ह्रास होता है चाइल्डहुड का, तो उसमें स्वर्ण प्राशन को सर्वोत्तम उपाय बताया गया उस समय होने वाले रोगों से रक्षा करने के लिए।
1: आपने रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात की, तो आजकल बहुत सारे टीकाकरण पर कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इसके बावजूद भी क्या स्वर्ण प्राशन आवश्यक है या इसको हम विकल्प के तौर पर देख सकते हैं क्या?
0: आप एक इसे कहना चाहिए कि वाइड स्प्रेड, जैसे कहता है कि आपका एक एंटीबायोटिक होता है एक छोटे से एरिया में काम करने वाला, एक बड़ा विशद कार्य। स्वर्ण प्राशन इज नॉट एक विशेष रूप से किसी अंग विशेष पर कार्य नहीं करता। इसके अंदर जो स्वर्ण होता है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, क्योंकि शरीर के संगठन में अगर आप देखेंगे स्वर्ण नहीं है। स्वर्ण जब शरीर में पहुंचता है तो हमारे माइक्रो सर्कुलेशन को एग्जेगरेट करके उसको बढ़ा करके शरीर की अंग प्रत्यंग की क्षमता को बढ़ाने में वृद्धि करता है। तो ये जो वैक्सीन दिए जाते हैं, एक विशेष डीपीटी है, 3 चीजों के लिए दिया जाएगा, खसरा की वैक्सीन है वो अलग दिया जाएगा, लेकिन ये सभी रोगों से रक्षा करने के साथ साथ में हमारे सभी अंगों की वृद्धि करता है। जैसे हमारा सबसे बड़ी बात होती है बुद्धिमत्ता की वृद्धि, इंटेलिजेंस वांटेड, इसको बढ़ाता है, वर्ण में निखार लाता है, और साथ साथ में हमारी वाकेंद्री की वृद्धि करता है, बोलने की क्षमता बच्चों की बढ़ती है।
1: डॉक्टर साहब, अगर ये इतना आवश्यक है तो एक लंबा समय हो गया हम लगभग इसको भूल गए, ऐसा क्यों?
0: कारण ये था कि देखिए बहुत लंबे समय तक हम गुलामी के जंजीरों में लिपटे रहे, और एक मैकाली की शिक्षा पद्धति के आने के साथ हमारी जो परंपरा थी उस परंपराओं को लुप्त प्राय करने का कार्य किया गया। और जब हम देखते हैं कि आज साउथ इंडिया में तो प्रारंभ से ही चल रहा था, काफी दिनों से चल रहा था, आज नॉर्थ इंडिया में भी इस पे काम हो रहा है। और एक आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि हमारे गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र में जापानी इंसेफेलाइटिस हुआ करती थी,
1: बिल्कुल,
0: और हमारे महाराज जी यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके मार्गदर्शन में तत्कालीन वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी MLB भट्ट साहब के निर्देशन में कुछ गांवों को अडॉप्ट करके जहां के जापानी इंसेफेलाइटिस अधिक होती थी वहां पर इसको स्वर्ण प्राशन कराया गया। सारे के सारे बच्चे जापानीज इंसेफेलाइटिस के चंगुल में आने से बच गए, और ये वहीं से प्रारंभ हुआ। और इसका जो मानकीकरण था ये वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के साइंटिस्ट ने किया, और ये प्रमाणित किया कि स्वर्ण प्राशन कराने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि स्वर्ण प्राशन क्या होता है, कैसे तैयार होता है, आज भी बहुत सारे लोग जानने तो लगे हैं, लेकिन इसका सही तरीका क्या है, इसको कैसे दिया जाए, क्या कोई विशेष आयु वर्ग होता है कि उन बच्चों को ही दिया जा सकता है?
0: इसको जो है जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये प्रयोज्य है। मात्रा हम निर्धारण करते हैं आयु के अनुसार, और इसमें हम 24 कैरेट की गोल्ड को भस्म को लेते हैं, और उसमें एक भाग मिलाते हैं हम ब्राह्मी घृत। ब्राह्मी तो आप सभी जानते हैं कि बुद्धिवर्धक सर्वोत्तम औषधि है, उसके द्वारा तैयार किया हुआ घृत होता है, तो घृत की मात्रा रहती है 1 और 3 मात्रा में 3 गुनी मात्रा में हम शहद मिलाते हैं, और साथ साथ में 2 मिलीग्राम की मात्रा के हिसाब से 125 मिलीग्राम स्वर्ण की भस्म मिलाते हैं। ये नियर अबाउट करीब करीब 100 बच्चों के लिए प्रयोज्य हो जाता है।
1: कैसे देना होता है?
0: इसको हम ड्रॉपर में डाल करके 2 बूंद से लेके बच्चा जन्म से तुरंत पैदा जो होता है उसको हम 1 बूंद चटा देते हैं, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसी हिसाब से 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद 6 बूंद 10 बूंद तक की मात्रा हम जो है बच्चों को देते हैं।
1: पैदा होने के तुरंत बाद दिया जा सकता है?
0: यस, बच्चों को चटाते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि उस समय हमारे बारसियों ने कहा कि जिस समय बच्चा माँ का दूध नहीं पी पा रहा है उस समय उसके न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए और उसके अंदर क्षमता के बढ़ाने के लिए उस समय ही उसको पिलाने का विधान है, स्वर्ण भस्म चटाया जाता है। तो स्वर्ण प्राशन जन्म के तुरंत बाद प्रारंभ कर दिया जाता है। मैंने अभी यहाँ तमाम बच्चों को शुरू किया।
1: तो ये रोज देना होता है 16 साल तक या कोई विशेष समय होता है?
0: इसकी परंपरा में महर्षि कश्यप कहते हैं कि इसका प्रयोग 1 माह तक निरंतर करने पर तमाम प्रकार के रोगों से बच्चों की रक्षा हो जाती है, और अगर 6 मास तक लगातार आप करा देते हैं तो बच्चे के लिए बाघ सिद्धि हो जाती है और उसको विभिन्न प्रकार की क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है, अभूतपूर्व योगदान होता है। तो हम तो जो है इसको प्रतिदिन भी करा सकते हैं, लेकिन इसको हम निःशुल्क कराते हैं। तमाम कंपनियां जो है निःशुल्क कराने के लिए स्वर्ण भस्म देती हैं। तो ये जो है पुष्य नक्षत्र के दिन हम कराते हैं, उसका भी एक मूल कारण है कि पुष्य नक्षत्र का मतलब होता है पोषण देने वाला। अगर हमको प्रारंभ करना है आज तो अच्छा होगा हम पुष्य नक्षत्र के दिन प्रारंभ करें, और नियमित रूप से ले सकते हैं, प्रतिदिन ले सकते हैं। 6 माह तक की अवधि है, 6 माह तक हम निरंतर दे सकते हैं, और जो 6 माह तक बच्चे लेते हैं उनकी आप बुद्धिमत्ता में देखेंगे, इंटेलिजेंट कंटेंट में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलता है।
1: इसका कोई वैज्ञानिक आधार या कुछ एक ऐसा

0: केस स्टडी आपके पास है क्या?
1: हमने उन बच्चों को दिया जिनके कि रेमिडियल क्लासेस लिए जाते थे स्कूल्स में, बिना बच्चे अपने आप से क्लास के उसको क्यूरिकुलम को मेंटेन नहीं कर पाते थे। उन बच्चों को
0: मतलब
1: मैंने प्रयोग
0: रेमेडियल
1: करके,
0: क्लासेस, मतलब उनको विशेष
1: विशेष क्लास उनके लेना पड़ता था टीचर्स
0: जी
1: को उस लेवल तक आने के लिए, जिन बच्चों को मैंने स्वर्ण प्राशन कराया रेमिडियल क्लास छूट गया, वह मेरिट पाना प्रारंभ कर दिया।
0: क्या कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिनमें स्वर्ण प्राशन नहीं देना चाहिए या डिसकंटिन्यू करना चाहिए?
1: नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा अगर जोरार्थ है, माने उसको बुखार आ रहा है,
0: जी
1: खांसी की ज़्यादा परेशानी हो रही है, तीव्र अवस्था में है कि ज़्यादा परेशानी में है, तो उस समय हम इसको जो है देना उचित नहीं समझते। यद्यपि इसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन देना हम उसको रोक देते हैं कि इस बीच में रोक करके तब इसका प्रयोग करें।
0: जी
1: लेकिन मैंने ये देखा है व्यक्तिगत रूप से कि बच्चों में सर्दी, जुकाम, बुखार, अतिसार, ये सारी समस्याएं कॉमन होती हैं, और इसके लिए हम बाल चातुर्भद्र चूर्ण, चौहद्दी गुट्टी जो गांव में कहलाती थी,
0: जी
1: उसका
0: जी
1: हम प्रयोग करते थे। तो मैंने कहा कि चौहद्दी गुट्टी की तरह इसको साथ में प्रयोग करिए आप, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 6,234 बच्चों का मैं करा चुका हूँ अभी तक। 6,234 में से 97% बच्चे ऐसे हैं जो कि कोरोना के समय से न तो कोरोना से पीड़ित हुए और न ही किसी प्रकार के मौसमी रोगों का प्रभाव उनके ऊपर हुआ, और
0: क्या
1: 3%
0: बात।
1: ऐसे थे जिनके कि अगर कोई बीमार होते भी थे, एलर्जी की समस्या थी, सांस फूलने की समस्या हो जाती थी, पसली चलती थी, तो पता लगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई और तीव्रता भी कम हो गई।
0: डॉक्टर साहब, आजकल के जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, जो नई पीढ़ी के माता पिता हैं खासकर, वो रिसर्च बहुत करते हैं, कई सारी भ्रांतियां भी इसको लेकर के हैं, क्योंकि आखिरकार स्वर्ण है तो एक धातु ही। ये भी मन में आता है माता पिता के विचार कि इनटेक जो एक धातु का आप कर रहे हैं बच्चे के शरीर में, क्या इसका कोई किसी प्रकार का लंबे समय बाद या किसी भी प्रकार से कोई कभी दुष्प्रभाव या हानियां होती हैं?
1: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। ये बड़ी भ्रांति पैदा भी की जाती है कि हम गोल्ड को दे रहे हैं, हैवी मेटल का प्रयोग कर रहे हैं,
0: जी
1: हैवी मेटल बचता ही नहीं है। स्वर्ण की जब हम भस्म बनाते हैं तो भस्म बनाने के पहले शोधन है, मारण है, अमृतीकरण है, इसके बाद इसकी हम परीक्षा करते हैं। वारितर पानी में तैर जाएगी, रेखा
0: अच्छा
1: पूर्ति रेखाओं में भर जाएगी, निश्चंद्र चमक खत्म हो जाएगी और अपुनरुद्भव, ये पुनः स्वर्ण नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से स्वर्ण की भस्म बनती है, वो निश्चित रूप से गोल्ड का ऐसा क्लोराइड बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है कि वो पुनः जो है धातु के रूप में रहता ही नहीं है, और ये शरीर में बिल्कुल किसी प्रकार की साइड इफेक्ट्स पैदा करने के प्रश्न ही पैदा नहीं होता।
0: बाजार में डॉक्टर साहब आजकल बहुत सारे स्वर्ण प्राशन अलग अलग कंपनियों के अलग अलग पैकिंग्स में आते हैं, कैसे कोई अभिभावक सही चयन करे कि ये स्वर्ण प्राशन ठीक है या क्या सही तरीका है उसको लेने का?
1: मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा कि मेरा अपना शोध है,
0: जी
1: शोध के आधार पर जो मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, WHO सर्टिफाइड कंपनी है, उनका आप स्वर्ण भस्म लें और साथ साथ में ब्राह्म रसायन और उसको मिला करके आप प्रयोग करें। आजकल जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इसके रूप से व्यक्तिगत रूप से मैंने अनुभव किया है।
0: प्राचीन काल में तो आपने बता दिया कश्यप संहिता, और कश्यप ऋषि ने कहा था, मुनि कश्यप ने। इस समय क्या कोई आधुनिक शोध इसके ऊपर हुआ है आपकी नज़र में, आपकी स्मृति में ऐसा कुछ है?
1: हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार, पीडियाट्रिशियन, जिन्होंने इस पर शोध किया, और तमाम आपको गूगल पर शोध भी उपलब्ध है, और एक अभयकांत तिवारी, ये आपके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी MLB भट्ट साहब के निर्देशन में गोरखपुर के जिन बच्चों का प्रयोग हुआ वो किया गया, उनके भी हम शोध का प्रमाण जो है पब्लिकेशन के लिए भेजे हुए हैं, शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगा। तो ये वैज्ञानिक शोध के आधार पर ये पूर्ण सेफ, जैसे कहना चाहिए आपका, निरापद है,
0: जी
1: किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, बोलने की क्षमता में वृद्धि होती है, बुद्धि में वर्धन होता है, वर्ण में निखार आता है, ये सारी चीज़ें वो उपयुक्त हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आज के युग का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के दृष्टिकोण से भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य देन है स्वर्ण प्राशन।
0: डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न, मैं दो प्रश्नों को संयुक्त करके ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहला तो ये कि सभी बच्चों के लिए ये समान रूप से लाभकारी होता है या कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके लिए ये विशेष रूप से अनुशंसित होता है। दूसरा, इसी में मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, चूंकि इसमें स्वर्ण है, बहुत महंगी धातु है, सभी माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते इसको, क्या वो किसी प्रकार से इसको अपने बच्चों को, कोई ऐसी सरकारी योजना है, किस प्रकार से अपने बच्चों को दिला सकते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से वो उतने सक्षम नहीं है?
1: देखिए, आपका पहला प्रश्न जो है कि रोग विशेष के हिसाब से आपने दो तरह का होता है, एक तो हम करते हैं स्वास्थ्य संवर्धन और स्वास्थ्य रक्षण के लिए, जो कि हमने कहा कि हम

0: प्रतिदिन बच्चों को करा सकते हैं। और विशिष्ट रूप से जैसे ट्यूबरकुलोसिस के बच्चे हैं जिनको टीबी हो गई है,
1: जी,
0: तो उन बच्चों को हम मात्रा बढ़ाते हैं, मात्रा बढ़ा कर देंगे, स्वर्ण प्रासन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते, हमारी औषधि यही रहती है, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी करते हैं कि आपको एक मात्रा बढ़ा करके देंगे और साथ साथ में आयुर्वेदिक औषधियों का हम समायोजन करते हैं, उससे लाभ होता है। और दूसरा प्रश्न जो आपका था कि
1: जो आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से
0: बच्चे हैं, तो आजकल हमारे जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी निःशुल्क किया जा रहा है, हर पुष्य नक्षत्र को किया जाता है, लोग लाभ ले सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत उपयोगी और लाभकारी जानकारी दी स्वर्ण प्राशन के ऊपर। अंत में अगर चलते चलते हमसे कुछ बचा रह गया हो, या आप हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं को, अभिभावकों को कुछ संदेश देना चाहें या कुछ अपील करना चाहें उनसे।
0: मेरा व्यक्तिगत अपील ये है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं, इस भारत भूमि में हम पैदा हुए, और ये भारतीय ज्ञान परंपरा की इस अमूल्य धरोहर का प्रयोग घर घर में हो, हर बच्चे में हो, इसमें मैं निरंतर कार्य कर रहा हूँ। प्रति माह निःशुल्क स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र के दिन हम करते हैं, बच्चों का कार्ड बनाते हैं, बच्चों को इंटीमेट करते हैं, वो आए इसका प्रयोग करें और ये निश्चित रूप से लाभान्वित इससे हों। अब हम नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं बुजुर्गों के लिए, जो कि 60 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, उनको भी हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों को डिमेंशिया भूलने की शिकायत हो जाती है, बहुत से लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, इन सारे रोगों की चिकित्सा के साथ यदि उनका हम स्वर्ण प्राशन कराएं तो निश्चित रूप से उन लोगों को अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। ये योजना भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अगले महीने से।
1: तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर जी एस तोमर, जो कि प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेद के चिकित्सक हैं प्रयागराज के। आज का हमारा ये कार्यक्रम सेहत की बात आधारित था स्वर्ण प्राशन के ऊपर, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। अगली बार इसी कार्यक्रम में किसी और हस्ती के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञा पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: सेहत की बात, इसके अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जी एस तोमर से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत, स्वर्ण प्राशन एक जानकारी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति रचना।

तक ऐब मेरे उत्ते पाई पर्दा तैनु तेरी करीमी दा वास्ता जी जिस दे सदके थी सानू तू बख्शना है ओस नूरे कदीमी दा वास्ता जी दिन महशर ना बरी दी पुछ होवे मुस्तफा दी यतीमी दा वास्ता जी जिस दिया अखियां चों ओदी याद अंदर वगदा दिने राती नीर होवे ओनू किधरे गरीब ना आख बैना ओदे जेड ना कोई अमीर होवे ओदे दर्दे गदावां दी की दसा करके नजर इको दुनिया बदल दिंदे ओनी मंगदा तख्त ते

और इसी गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या

0: करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
2: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
3: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश

0: के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना

0: बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी में ग्रांड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Bana bir gam. मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी ने एहतजाज खत्म कर दिया है क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुजाकरात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया का तीन मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे T20 बैन अलावामी मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सौंपा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब प्रधान ने कहा कि तलबा के एहतजाज के बाद गुज़िश्ता 10 दिन से जारी सूरत हाल से उन्हें दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह अना का मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली जंतर मंतर और पूरे मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की खिदमत उनकी जिंदगी की अव्वलीन तरजीह रही है और वह हमेशा इस बात पर अहद बस्ता रहेंगे। जनाब प्रधान ने कहा कि 16 जुलाई को ऐलान किए गए नीट यूजी नतायज इत्मीनान बख्श थे। इनमें कमजोर तबकों से वाबस्ता कई तलबा ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। जनाब प्रधान ने कहा कि अलबत्ता ऐसे वक्त में भी जिम्मेदार ओहदों पर फायज अफराद ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश की और तलबा को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि इन बातों से उन्हें गहरी तकलीफ पहुंची है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे। जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के साथ साथ वजारत तालीम का चार्ज सौंपा गया है। जनाब जोशी इस वक्त सारेफीन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम नेज नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने वुजरा की मरकजी कौंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सीजेपी ने हुकूमत के जरिए अपने मुतालबात पूरे किए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सीजेपी के वफ्द के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें इम्तहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक को रोकने के इकदामात के लिए उसके मुतालबात पर तवज्जो मरकूज की गई। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी के वफ्द के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग के दौरान हुकूमत ने सीजेपी के इन मुतालबात से इत्तेफाक किया है कि एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई और न ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: सीजेपी के चीफ तर्जुमान सौरभ दास ने इस उम्मीद का इजहार करते हुए एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया कि जिन उमूर पर इत्तेफाक हुआ है उन पर मुतफक्का वक्त की मुद्दत में अमल दरामद किया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वालों के कुनबों को मुआवजे देने के मामले पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस जिम्न में हुकूमत को पूरी हमदर्दी है और वो उसूल और जवाबित के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मुआवजा फराहम करने को यकीनी बनाएगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: इस दौरान सीजेपी के कौमी तर्जुमान आशुतोष रांका ने तमाम एहतजाज करने वालों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर एहतजाज खत्म करें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: लोक

0: दोस्तों विज्ञान भारती के आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंट वार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाए जाने के अवसर पर IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है IVF तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताजा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था, तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है, जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है, जिससे EV उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है, जिसे एक एग्जोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को DNA राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल DNA सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक DNA में स्टोर किया जा सके। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को

0: हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
1: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
2: आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
1: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है, बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में, आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या।
3: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन एक सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहां बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं, मतलब इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था, वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है, जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
1: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं।
3: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनेमो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं और उस एनर्जी का उपयोग करके, जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन चली सोनीपत के लिए, तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशन भी तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही साइड में ही रेलवे स्टेशन के बगल में ही वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 kg उसकी क्षमता है और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है और पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ट्रेन में उनको रिफ्यूल करने में इस्तेमाल किया और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहाँ पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलके वापस वो पानी बना गए, यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
1: दोस्तों, भारत में हाल

0: फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। आईआईटी कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों है।
1: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। कम इस सेंस में है कि ये हैं धरती में बहुत सारे, बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पर बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
0: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
1: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स से नहीं बनते हैं। उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे एनडी, एफईबी, बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो एनडी जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो एनडी की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी बजाय कि ये जब हम एनडी और एफई को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्युमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
0: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
1: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी। कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
0: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं,
1: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
0: दोस्तों, स्टेम सेल और IVF तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से IVF तकनीक क्या है।
2: तो बेसिकली जो IVF है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले, तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपीयरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स की कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन जो की एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो

0: डेवलप हुआ था एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली. तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए, मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है, तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था. उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया, तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट उनका विजन कोई समझ नहीं पाया. फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक आईसीएमआर की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स, एंड देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऐसे करके प्लान हुआ. तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से. तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए, जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमेट, एक फीमेल और मेल गेमेट को हम फर्टिलाइज करते हैं. नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं. वो उसको आपस में जोड़ते हैं. एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं. लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर, तो उसे हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है. तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली. तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है, फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन बाद डे टू एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे थ्री होता है, फिर डे फोर होता है, फिर डे फाइव होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब 0 डे है, और फिर स्लोली स्लोली 5वें दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है, और फिर चिपकता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं. तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं 5वें दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है. तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं.
1: दोस्तों IVF तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं.
0: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं. आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है, जहां की पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे 5 दिन में 2 बार. अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम इन्वायरमेंट है बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती है. देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है, क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते. तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से, और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एब्सेंट है, तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा. तो इस सेंस में जो चांसेस हैं, अटेम्प्ट्स हैं IVF के, वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा. देन AI सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया है, तो मतलब आजकल लैब्स में AI विटनेसिंग हो गई है. ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर 4 मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो AI के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है, ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे.
1: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है. लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों, और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से.
2: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है. जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई. इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग वहां पर आयोजित की गई 2010 में. जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने, और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा. इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए. अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता. तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया. आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते. इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण. इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसमें 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया. आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं. इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहाँ पर है.
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं.
2: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो है वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है. प्रोटेक्शन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त

0: सुनिश्चित करना। इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक M-Stripe ऐप बनाया है। अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो M-Stripe ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है। यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए हुए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पे निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
1: दोस्तों जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से।
2: देखिए जब हम साइंस की बात करते हैं तो कोई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि एक कहीं संस्थान है, एक कोई लैब है जहां कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है। हम भी सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी तो जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार हैं, फ्रुगल नवाचार हैं, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गाँव से जोड़ना, ये STI है। क्योंकि ये उन्हीं से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए STI इम्पोर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
1: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
2: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला, देखा, बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तो वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस्ड, इसलिए हमने STEM की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में थोड़ी, एक साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़ें, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सूंघें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही हैं बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा, मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं कर रहा, वो कैसे बदलेगा, सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली वो सोलर के, तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हो, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
1: दोस्तों कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
3: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारे लेकर नहीं आता बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुरानी DC प्रणाली होती तो बिजली को इतनी

तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित

से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीढ़ी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

श्रोताओं, इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: बाय आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट श्रीमती अदिति बैनर्जी।
1: श्रीमती अदिति बैनर्जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वर्गीय श्री नीलमाधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सान्निध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूर्व अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती अदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूर्व अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
0: श्रीमती अदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। सब्सिक्वेंटली शी अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग इन खयाल एंड टप्पा सिंगिंग अंडर द एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द ग्वालियर घराना पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित अंडर द गाइडेंस ऑफ पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू फॉर नियरली 14 ईयर्स शी मास्टर्ड द ऑथेंटिक पूरब अंग गायकी परफॉर्मिंग ठुमरी, दादरा, होरी एंड कजरी एंड ऑल्सो एकम्पनीड हर गुरु ऑन न्यूमरस प्रेस्टीजियस ओकेजन्स। इन एडिशन टू टॉपिंग हर एम ए एंड एम फिल डिग्रीज इन म्यूजिक फ्रॉम डेली यूनिवर्सिटी विथ गोल्ड मेडल्स, श्रीमती अदिति बैनर्जी वॉज स्पेशली ऑनर्ड बाय पद्म विभूषण गिरिजा देवी ड्यूरिंग द पूरब अंग गायकी उत्सव।
1: आइए सुनते हैं श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल हैं बैरन रतिया कैसे आऊं।
0: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। She is accompanied on tabla by Shri Bharat Kamat and on harmonium by Shri Saumitra Kshirsagar. She begins her recital with Thumri composed in Rag Mishra Tilak Kamud, set to Deep Chandi Tal. Bairan Ratiya Kaise Aaun.

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी की एक ग्रेड गायिका श्रीमती अदिति बैनर्जी का सुमधुर उपशास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टूडेज ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग टू यू अ डिलाइटफुल सेमी क्लासिकल वोकल रिसाइटल

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामोद ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी इन मिश्र तिलक कामोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी, सेट टू कहरवा ताल, छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: That was Dadra set in मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे एंड ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3। प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10

0: साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।